0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
1: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
0: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

के दरबार में विभीषण ने ताना मारा, हे बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और सीना फाड़ डाला।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपियो जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: BMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
3: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
4: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, A moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
4: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विकास नापा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
6: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है, वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
7: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंद्र के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खप

0: तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address SCO summit in

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों कहते हैं कभी कभी जब आपके मन का नहीं होता है या फिर आप किसी चीज का इंतजार करते हैं बेसब्री से और वो चीज आपको उस वक्त नहीं मिलती है तो यकीन मानिए ऊपर वाला आपकी उस स्टोरी को उस कहानी को और भी खूबसूरत लिख रहा है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन वो कहानी और वो चीज आपकी जरूर आपको मिलेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी। हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात कैसे हाल चाल है आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आज एक तारीख है जी। हाँ जी देखिए 2026 का सितंबर शुरू हो गया है। आज खुश है जमाना आज पहली तारीख है आज मीठा है खाना आज पहली तारीख है।

एक सितंबर की सुबह आप सुन रहे हैं आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग। ये है आपके शहर का अपना अमेजिंग रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:20 हो रहे हैं और आज पहली तारीख है, तो सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। देखो बॉस, आज कोई स्ट्रेस मत लो, कोई टेंशन मत लो, मतलब सारी बातें छोड़ दो। आज एक नई तारीख शुरू हो रही है, एक नया महीना शुरू हो रहा है, तो यही सोच के कुछ अच्छा ट्राई करो यार। आज की सुबह शायद लक कुछ अच्छा काम कर जाए, है ना? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आज पहली तारीख है, इसको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। सुबह उठ रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं आप, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896 पर व्हाट्सएप के जरिए। और आज के सफर की शुरुआत एक बेहतरीन गाने के साथ में करने वाला हूँ। थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो आपसे और बात करेंगे। एंड आज बहुत कुछ है मेरे पास, एक तारीख है तो बहुत कुछ बताना है अभी आपको। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: सुबह सुबह रेडियो ऑन न करने से पहले
6: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
5: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
6: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
5: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

क्या बात है, व्हाट अ सॉन्ग, मतलब इतना बढ़िया गाना, जीत फिल्म का ये ट्रैक था, इसको एंजॉय कर रहे हैं आपने और मैंने साथ में, बहुत मजा आया। और सच में इतने बढ़िया गाने सुबह सुबह सुनने को मिल जाए, सुबह अच्छी हो जाती है जी। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6। तमाम सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए, जरूर हम इनको शामिल करेंगे। बाकी जरा आगे बढ़ जाते हैं और अभी बात करते हैं वक्त की, तो 8:35 हो रहे हैं। और एक और खास चीज आपको बताता चलूं, आज 1 सितंबर है, जन्माष्टमी का पर्व बहुत करीब है, उसकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है, इस पे हम बात करेंगे जरा सी देर में। फिलहाल बात करते हैं आज 1 सितंबर की तारीख को क्या कुछ खास है इतिहास के पन्नों में, क्या स्पेशल रहा आज की तारीख में, जो आज के इतिहास के पन्ने इतने ज्यादा स्पेशल हो गए, यानी कि 1 सितंबर का इतिहास क्यों है खास। चलिए एक नजर डालेंगे आज के इतिहास के पन्नों पर और आपको बताएंगे आज की तारीख के बारे में, कौन कौन से महान कलाकारों को हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और आज की तारीख को क्यों इतना स्पेशल माना जाता है। आपको बता दें, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था श्रोताओं, आज के दिन 1939 में, जी हाँ दोस्तों। और आपको बताते चले, आज के दिन 1947 में भारतीय मानक समय को अपनाया गया था श्रोताओं, और आज के दिन जो है एक बहुत बड़ी बीमा कंपनी की स्थापना हुई थी, जी हाँ, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी 1956 में, आज के दिन 1 सितंबर को हुई थी श्रोताओं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1962 में, 1 सितंबर को आज ही के दिन। तो श्रोताओं, ये कुछ स्पेशल बातें जो आज के दिन को थोड़ा सा स्पेशल बना रही थी, और क्या कुछ खास रहा आज इतिहास के पन्नों में, ये मैं आपको बता रहा था। और बाकी आज के दिन कुछ खास कलाकारों का भी हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, कुछ खास महान खिलाड़ियों का भी जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें से नाम आता है नंदबाल, जो भारतीय टेनिस कोच और पूर्व खिलाड़ी हैं श्रोताओं। 1959 में 1 सितंबर को इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। और बाकी कुछ और नाम है जो धीरे धीरे हम आपको बताते चलेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत, आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, आप ऐसे ही ट्यून इन रहेंगे आरजे आनंद के साथ। अभी लौट कर आएंगे तो आपसे और भी बातचीत करेंगे, और कौन कौन से महान खास कलाकारों को हम याद करते हैं, और आज के दिन क्या कुछ खास रहा है इतिहास के पन्नों में, और आज के दिन कौन कौन से और विशेष दिवस सप्ताह मनाए जाते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ, आप कहीं मत जाइए। बाकी कुछ अगर आप भी कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं ना मेरे साथ 9837896896 के माध्यम से। जैसे अभी हमारे साथ ये कोमल जी जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, लिखती हैं, आनंद जी सुप्रभात नमस्कारम, गुड मॉर्निंग, आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, काफी टाइम के बाद हम आपको रेडियो पे सुन रहे हैं, आई होप सब बढ़िया होगा। डेफिनेटली जी, सब एकदम फर्स्ट क्लास है, सब बहुत ही बढ़िया है, सब मजे में है, एंड आई एम श्योर आप भी एकदम मजे में होंगे, आने वाला गाना भी बहुत ही जबरदस्त है। इसी बीच एक और संदेश मेरे पास पहुंचा है रिंकू यादव जी का, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप, कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत, क्या बात है गुरु। दोस्तों आप भी अपने संदेश पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9837896896 पर, वक्त हुआ है 8:38, गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। जी कैसे हालचाल है, चलिए जरा मैडम की बात सुनकर वापस आता हूँ, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
4: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
5: आरजे आनंद इज बैक।

हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग जी, आप आनंद के साथ हैं। जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। वक्त हुआ है 8:45। आप ऐसी घड़िया मिलाते रहिए, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे फटाफट व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे 9837896896 पे। अभी लौट कर आएंगे तो आपके जो भी संदेश आए हैं इनको फटाफट शामिल करेंगे इसी स्टेशन पे। तो इसीलिए कह रहा हूँ फटाफट से जल्दी से मैसेज कर दो, अगर अभी तक आपने नहीं किया है फिर आप क्या कर रहे हो, फटाफट व्हाट्सएप करो मुझे 9837896896 पर। ठीक है जी, फिलहाल ही आने वाला गाना

भाई दिल लगाना जरूरी है, मैं कह रहा हूँ किसी चीज से लगाओ या मत लगाओ, अपनी चाय से ही लगा लो। भाई मैं चाय को लेके बड़ा वाला मतलब जो है क्रेजी टाई हार्ट फैन हूँ, बिकॉज अगर आधी रात में मुझे कोई उठ के बोल दे मतलब उठा दे आनंद भाई चाय पियोगे तो मैं खुशी खुशी हाँ बोल दूंगा, और उसके बाद ना मुझे सच बताऊं नींद आ भी जाती है। मतलब मैं उनमें से तो बिल्कुल नहीं हूँ कि भैया मुझे आधी रात को उठाए तो मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं भाई मैं चाय का बहुत बड़ा फैन हूँ। वेलकम बैक है, 8:51 हो गए स्टेशन क्लॉक में, यानी कि 8:51 हो रहे हैं। लगातार समय हम आपको बताते रहते हैं। भाई कहते हैं ना जो समय के साथ चलते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा जीत होती है, तो भैया समय के साथ चलते रहिए, और समय का जो चक्र है ना वो हमेशा एक जैसा तो कभी नहीं होता है ना, तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। जिंदगी में अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा समय आ गया जहां पर आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या फिर पड़ रहा है, तो आप यकीन मानिए बस एक चीज है जो आपको थोड़ा सा रिलीफ फील करा सकती है, कंफर्टेबल फील करा सकती है, वो है ऊपर वाले पे भरोसा। आप जिस भी चीज को आप मानते हैं, अल्लाह वाहेगुरु खुदा यूनिवर्स जिसे भी आप मानते हैं, उसके ऊपर जरा कुछ चीजें छोड़कर तो देखिए, क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता है ना तो उसके मन का होता है, और जब उसके मन का हो रहा होता है तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, यकीन मानिए दोस्तों। श्रोताओं ढेर सारे मैसेज मेरे पास आए हैं, लेजी जी हमारे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह। आपका तो नाम ही लेजी है भाई, कैसा ही नाम है मतलब, बट अच्छा नाम है यार, दिस इज वेरी डिफरेंट नेम, मैं मतलब कुछ कह नहीं रहा हूँ। लेजी मुझे लिखती है, गुड मॉर्निंग आनंद, आपकी आवाज अच्छी लग रही है सुबह सुबह। अरे बापरे थैंक यू सो मच यार। एक व्हाट्सएप और पहुंचा है लेजी जी के अलावा, ये हमारे पास डिम्पल जी मैसेज करती है, गुड मॉर्निंग, इस वक्त मैं आपको लाइन पार से मैसेज कर रही हूँ एंड आपका शो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, थैंक यू वेरी मच जी। एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर, हेलो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है, माय नेम इज दीपक एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आनंद। हाँ बिल्कुल जी, मैं काफी टाइम के बाद वापस आया हूँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। एक और व्हाट्सएप आया है, आनंद जी आप आते रहिएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं डेफिनेटली आता रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अगर यहां नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे जी, कैसी बातें कर रहे हो आप, इधर ही तो हूं मैं आपके साथ। बेहतरीन गानों का सिलसिला लगातार आपके रेडियो पर मैं यहां पर भेज रहा हूं, अच्छे अच्छे गाने आप इंजॉय कर रहे हैं आनंद के साथ, साथ में अच्छी बातें भी हो रही है।

देखो यार, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली रही है ना, लेकिन थोड़ा सा ना म्यूजिक से प्यार करो यार। म्यूजिक इतनी अच्छी थेरेपी है ना, जब आप इसे दिल से सुनते हो तो यकीन मानना भाई, सारे गम ना आपके जो सो कॉल्ड वाले गम है वो भी थोड़ी सी देर के लिए ना छू मंतर हो जाते हैं। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब दिल से बता रहा हूँ, ऐसा तो मेरे साथ अक्सर डेफिनेटली हो ही जाता है यार। कुछ और व्हाट्सएप पहुंचे। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आनंद जी? जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। हाय माय नेम इज पल्लवी, गुड मॉर्निंग पल्लवी जी। एक मैसेज आया है मेरे पास मुरादाबाद यूपी से, रणवीर सिंह जेठालाल का, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मुरादाबाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंगलवार की शुभकामनाएं। कश्मीर से मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूं जी। चलो जी, ये तो मैसेजेस का सिलसिला चलता ही रहेगा, अभी लौट कर आता हूँ, बताता हूँ आज 1 सितंबर को क्या कुछ चीजों में बदलाव हो रहा है। मतलब कुछ चीजें महंगी भी हो रही हैं, सस्ती भी हो रही हैं, उस पर बात करेंगे, है ना। और चीनी, प्याज, टमाटर, इन सब के रेट तो बढ़ ही गए थे, अभी इनके रेट कम हुए हैं, यानी इस पे भी हम चर्चा करेंगे आज से। और किस किस प्रोडक्ट पे थोड़ी सी प्राइस बढ़ रहे हैं, ये कैसे हमारे लिए थोड़ी सी आफत खड़ी कर सकते हैं बॉस, इस पे हम बात करेंगे। सोल्यूशन भी है मेरे पास, डोंट वरी। फिलहाल के लिए आने वाला गाना वॉल्यूम बढ़ा लो यार।

0: क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
1: नलायक बेटा।
2: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग,
4: बिंदास मॉर्निंग।
5: हे, यू आर ट्यून इन टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

0: सेट करो।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
4: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: था मेरी कसम,
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय,
4: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
7: मॉर्निंग। हाँ जी बिल्कुल, बिंदास मॉर्निंग आप सुन रहे हैं आनंद के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन। और आज की सुबह तो है ही खास, यहाँ पर आपके प्यारे प्यारे मैसेज जो आ गए हैं हमारी सुबह को और भी खास बनाने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफकोर्स बिल्कुल आपने सही सुना, अभी 9:02 हो गए और आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है नहीं मेरे दोस्त, ये बताना भी जरूरी था। ये ट्यूसडे की सुबह है और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, आज 1 सितंबर है तो बहुत सारी चीजों में जो है बदलाव हो रहे हैं। आपको बताया थोड़े दिन पहले हम चीनी के दाम सुन रहे थे, भाई बहुत महंगे हो गए हैं, प्याज के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन अभी दूध के रेट भी बढ़ रहे हैं। हाँ जी, आज 1 सितंबर को कुछ चीजों में जो है बदलाव हो रहे हैं। कौन कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं इस पे बात करूंगा। एंड जो लोग स्मार्टफोन से पेमेंट करते हैं UPI वगैरह, उनके लिए तो ठीक अच्छी बात है ही, ठीक है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो भी अब पेमेंट कर पाएंगे। हाँ जी, फोन पे के थ्रू पेमेंट कर सकेंगे। एक नया फीचर लॉन्च हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, है ना, आपके पास छोटा वाला कीपैड फोन है, तो भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, यही तो बताऊंगा मेरे दोस्त। और भी बहुत सारी बातें जो आपको होले होले पता लगेंगी, अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त। आप कहाँ जा रहे हो? आपको कहीं नहीं जाने दूंगा मैं, इसी स्टेशन पे यहीं पर आपको अपने साथ चिपका के रखना है। मैंने अभी थोड़ी देर में जब लौट कर आएंगे तो आपसे कुछ और खास और झकास बातें करने वाला हूं, बस आप ऐसे ही ट्यूरिन रहिएगा। बाकी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज मैं एक छोटा सा सवाल भी लेकर आया हूं, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बस थोड़ी सी देर में आपसे पूछूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही ट्यूनिन रहिए और आरजे आनंद को सुनते रहिए। बाकी आप भी अपनी प्यारी प्यारी थॉट्स, अपनी वॉइस नोट जो भी आपको पहुंचाना है डेफिनेटली पहुंचा सकते हो 9837896896 पर व्हाट्सएप के माध्यम से। आने वाला गाना
8: ओ मेरे सनम, दो प्यार वाली बातें,
7: ओए होए होए होए,
8: करेंगे हम।
7: विकी विद्या का वो वाला वीडियो से गाना,
8: दिल से तुमको।
7: इस वक्त क्या थिएटर में कमाल मचा रही है हनुमान अंश, इस मूवी के बारे में बात करूंगा।
8: कि तुम जो मिले हो,
7: लेकिन उससे पहले
8: ओ मेरे सनम, दो प्यार वाली बातें।
7: जरा सी देर में इस गाने को सुनेंगे आप इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। आई विल बी राइट बैक।

यार एक टाइम होता था जब अपन ना हाथों से खत लिख के किसी के लिए पहुंचाते थे, है ना। मतलब उस टाइम की बात ही अलग थी, वो जो वाइब थी ना वो वाइब ही अलग होती थी। मतलब इतना टाइम तो हम पहले लिखने में लगाते थे, फिर इतना ही टाइम उसको पहुंचने में लगता था। नौ बज के 12 मिनट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग ट्यूजडे की सुबह आप सुन रहे हैं आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छी बातों के साथ अच्छे गाने भी चल रहे हैं, नो डाउट। आज की सुबह ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, हैप्पी हैप्पी से, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर तनीषा जुड़ी है, लिखती है, हाय हाउ आर यू, मैं इस टाइम ऑफिस निकल रही हूँ एंड आपका रेडियो सुन रही हूँ आनंद, यू आर डूइंग ग्रेट। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम, मजा आ गया। चलो बात कर लेते हैं आज 1 सितंबर 2026 के, तो राष्ट्रीय क्षमा दिवस जो है आज मनाया जाता है। मतलब भैया माफ करना कमजोरी नहीं है, दिल की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप किसी को माफ कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है यार, जरूर कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि माफी, सॉरी जो है ना, एक बहुत ही प्यारा शब्द है। माफी मुझे लगता है कि मांगना और माफ कर देना दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत सही बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मम्मी ने कोई अच्छा सा काम बताया और आपने वो नहीं किया, फिर आप कह रहे हो मम्मी माफ कर दो, तो वो तो नहीं होगा भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, चपेड़े पड़ी जानी है, सच बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ खास जो है आज सेलिब्रेट होता है? जी हाँ, मतलब जो चालक होते हैं ना, जो देश की को, मतलब देश को गति देने वाले सभी चालकों को सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस की बधाइयां। जी बधाइयां, जो लोग बेचारे ड्राइव करके हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, आज का दिन उनके लिए है। सो जोरदार तालियां एंड बिग शाउट आउट यार उन लोगों के लिए जो बेचारे सुबह ही निकल जाते हैं आप सभी को आपकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए। चाहे मैं बात करूं उन किड्स की जो बेचारे स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह वेट करते हैं ड्राइवर भैया की, कब वो गाड़ी लेकर आएंगे और कब हम अपने स्कूल पहुंचेंगे, है ना। पेरेंट्स भी वेट करते हैं कब बस वाले भैया आएंगे, कब वैन वाले भैया आएंगे। तो आज उनको शाउट आउट देने का दिन है जो ड्राइव करते करते बेचारे आपके घर तक आपको छोड़ते हैं और आपके घर से आपको स्कूल, जहां भी आप जाना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनी पर पहुंचाते हैं। तो बहुत जरूरी है ऐसी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना एंड कभी कभी रेडियो के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। और जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महाउत्सव आने वाला है जिसको लेकर ढेर सारी तैयारियां चल रही हैं एंड हमारी सीएम साहब की भी एक स्पेशल पार्टी आई है हमारे सभी उत्तर प्रदेश वासियों के नाम, बहुत ही कमाल की। डेफिनेटली इस पे भी बात करूंगा अभी एंड यहाँ पर ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं। सवाल के लिए मेरे पास मैसेज आया, गुड मॉर्निंग आनंद जी, एक सवाल आप पूछ ही लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली पूछूंगा। और आज विश्व पत्र लेखन दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो हम अभी मैं लेटर की बात कर रहा था ना, ये थोड़ी देर पहले, क्या रहा, एक जमाना होता था जब खतवत लिखते थे और हाथों से लिख के जो वाइब होती है ना भाई, उसकी बात ही अलग होती है। आज भी बहुत सारे लोग हैं मैं देखता हूँ जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो आज भी उनके लिए अच्छे अच्छे नोट्स लिखकर पहुंचाते हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है यार। जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत

यार देखो खत की बात हो रही है तो मैंने सोचा एक गाना ऐसा होना चाहिए जो रिलेटेबल हो आज की सुबह, और उसी का ये थोड़ा सा मुखला मैंने सोचा आपके लिए प्ले कर दूं।

मैं जाओ रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, मैं जल्दी से लौट कर आता हूँ कुछ और खास बातों के साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए, आनंद को सुनते रहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो इमीडिएटली मैसेज करिए मुझे 9837896896 पे। इंतजार कर रहा हूँ आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का।

0: You're tuning to FM Moradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर

0: साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
2: जी आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग 89.6, मेरा नाम है आरजे आनंद। 5 सेकंड रूल, दिस इज वेरी इजी गेम, अगर आप खेलना चाहते हो तो इमीडिएटली मुझे कॉल कर सकते हो 9837896896, दिस इज माय नंबर राइट हियर। मेरे साथ कॉल पे कौन जुड़ी है? आई हैव विद मी शिवी इन द फोन लाइन। हेलो हेलो मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग।
4: बढ़िया
2: जी, बस बढ़िया ही है या फिर फर्स्ट क्लास है ये बताइए पहले आप। अरे वाह बहुत बढ़िया, कहाँ रहती हैं आप? मुरादाबाद में।
4: बुद्धि विहार।
2: बुद्धि विहार, फिर तो आपके अंदर पक्का बहुत एक्स्ट्रा बुद्धि होगी आई एम श्योर। एग्जैक्टली, क्या बात है। सो मुझे आपके साथ एक बहुत छोटी सी गेम खेलनी है, 5 सेकंड रूल। इसके अंदर आपको 5 सेकंड देंगे और आपको 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। तो आई होप आप रेडी होंगे।
4: yes.
2: वैसे आप करते क्या है ये तो पूछना भूल गया मैं।
4: होममेकर।
2: अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मैम।
5: 5 सेकंड रोल।
6: ओह यस।
2: आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको 5 सेकंड के अंदर मुझे 3 ऐसी चीजें बतानी है जो दूध से बनती हैं।
4: ओके। दूध के लड्डू बन जाते हैं, दूध से घी निकलता है।
2: टाइम खत्म हो गया है, घी मैं भी निकाल लूंगा, आपको जरूर भेजूंगा। अगली तीन अब आपको 5 सेकंड के अंदर 3 फिल्में बतानी है जिसमें प्यार आता है।
4: DDLJ, हम आपके हैं कौन।
2: देखिए मैंने बोला था जिसमें प्यार आता है, आपने पिक्चरों के नाम बता दिए, इसमें प्यार प्यार से जैसे मैंने प्यार किया, समझ गए आप।
4: पिक्चरों पे प्यार आता है।
2: बहुत बढ़िया। अच्छा 3 ऐसी चीजें बताइए जो आपको लगता है मुरादाबाद में बहुत इजीली मिल जाती हैं।
4: मुरादाबाद में इजीली मिल जाती हैं।
2: 5 सेकंड फिनिश। अच्छा 3 ऐसी फेवरेट चीजें जो आपको लगता है मुरादाबाद में बहुत पॉपुलर हैं, आपकी फेवरेट हैं।
4: मूंग की दाल, जलेबी। 5 सेकंड
2: खत्म हो गए मैम, मैं बर्तन लेकर आऊंगा, आपको जरूर फोटो भेजूंगा। अगला आप मुझे 3 चीजें ऐसी बताइए जो आपको लगता है कि आपके हसबैंड में डेफिनेटली होनी चाहिए थी बट है नहीं अभी।
4: सब कुछ है वैसे तो।
2: अरे वाह क्या बात है, मतलब ही इज परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। 3 ऐसी आदतें जो आपके अंदर है और आप बदलना चाहती हैं लेकिन।
4: मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वो चेंज करनी चाहिए।
2: टाइम खत्म। बहुत अच्छी, ये भी एक आदत थी, इसे भी चेंज कर लीजिएगा आप। ओके आगे बढ़ते हैं। आप मुझे 3 ऐसे सॉन्ग बताइए जो आपके फेवरेट हैं।
4: तिनका तिनका।
2: 5 सेकंड खत्म हो गए, मैं तिनका तिनका उठा रहा। वेल शिवी जी आपसे बात करके बहुत मजा आया, लवली टॉकिंग टू यू। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा इस कॉन्वर्सेशन को, इस गेम को।
4: थैंक यू। गेम खेला मुझे बहुत अच्छा लगा।
2: थैंक यू सो मच। तो आप रेडियो जरूर सुनिएगा, आपकी आवाज आपको बहुत मजेदार लगेगी रेडियो पर।
4: मैंने भी बहुत एंजॉय किया।
2: थैंक यू सो मच मैम। हम आपके हैं कौन में, माधुरी दीक्षित का नाम क्या था। इसीलिए कहते हैं ना भैया पिक्चर में प्यार आ रहा है लेकिन एक्ट्रेस पे भी प्यार बरसाओ यार। उनका भी नाम याद रखो, निशा नाम था। सलमान खान का क्या नाम था? मैं तन्ने प्रेम करू छू। प्रेम प्रेम और निशा। थैंक यू सो मच सीवी जी, बहुत मजा आया आपसे। हैव अ ग्रेट डे। और लड्डू बनाए तो हमें भी भिजवाएं, अगर आप दूध के लड्डू बनाए तो हमें भी भिजवाएं।
4: बिल्कुल।
2: चलिए मैम थैंक यू सो मच, बाय बाय।
4: ओके बाय बाय।

सनमपुरी की आवाज में भी आपने एंजॉय किया लिखे जो खत तुझे, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक। और सच बताऊं ऐसे गाने सुन के बड़ा मजा आता है यार। एक तो इतने बढ़िया गाने ही गाते हैं, इनको सुन के सच में मजा आ जाता है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। हाय वेलकम बैक है वंस अगेन गाइस, कैसे हालचाल है। 9:27 हो गए स्टेशन की घड़ी में, यानी कि 9:27 हुए भाई। 1 सितंबर की सुबह, मंगलवार की मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आनंद को। ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। ढेर सारे मैसेज आ गए यार। भारती मेरे साथ जुड़ गई, हेलो आनंद जी, वेलकम बैक, हाउ आर यू आफ्टर सो लॉन्ग, ओह माय गॉड। लिखती है फीलिंग सो बिंदास, फीलिंग गुड होनी चाहिए भारती जी। थैंक यू सो मच, आप जुड़ी मेरे साथ, मुझे अच्छा लगा। हाय गुड मॉर्निंग मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी जुड़ चुके हैं आज की सुबह। इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया था निष्का का, लिखते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, मैं बढ़िया हूँ। कुंदनपुर से मैसेज आया मेरे पास नीलाक्षी का, हाय हाउ यू, मैं बढ़िया हूँ जी, मैं बढ़िया। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, अलीशा बात कर रही हूँ, कैसे हाल चाल है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आपके गाने एंड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया मेरे पास करण जीत का, लिखते हैं हाय जी की हाल चाल है थोड़े, वधिया जी वधिया, तुसे दसोपा जी की हाल चाल है। एक और व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचा है, आनंद जी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए कुछ बड़ा सोचना होता है, और जब आप बड़ा सोचते हैं तो उसके लिए आप बड़ा करते भी हैं। एग्जैक्टली मेरे भाई। अलका वर्मा बुद्धि बिहार से जुड़ी है, राधे राधे आनंद जी, कैसे हालचाल, बहुत ही बढ़िया। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर सुमन जी का, इन्होंने एक बहुत ही प्यारा कोट शेयर किया है। ये लिखती है कि जिंदगी में अगर आप जब कुछ सोच के किसी काम की शुरुआत करते हो ना, और अच्छी सोच के साथ किसी काम की शुरुआत करते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है, इसलिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रांग। ऑलराइट चलो जी, ये तो थी आपके व्हाट्सएप की बात, अभी बात कर लेते हैं आज के बारे में, उस खास चीज के बारे में जो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग बेचारे स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी छोटे फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैसे कैसे मतलब यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अब बिना इंटरनेट के भी होगा यूपीआई पेमेंट। फोन पे ने लॉन्च किया है एक नया फीचर। एग्जैक्टली, इस फीचर का नाम क्या है चलिए आपको बताता हूँ। फोन पे ने एक फीचर यूजर्स के लिए जो है लॉन्च कर दिया, यूपीआई 123 पे सर्विस लॉन्च की है, जिसके जरिए बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी यूपीआई से आप पैसे भेजेंगे और आपके पेमेंट जो है वो बहुत ईजिली हो सकेंगे। ये सर्विस जो है एसएमएस आधारित सिस्टम पर काम करती है बेसिकली, और सीमित 2G कनेक्टिविटी वाले इलाकों में भी इसे उपयोग किया जा सकता है। यूजर्स बैलेंस और ट्रांजेक्शन की भी चेक कर सकेंगे, और जबकि कैमरे वाले फीचर फोन में क्यूआर कोड स्कैन करने की फैसिलिटी भी मिलेगी। एंड इसके अलावा ये पहल भारत के 20 करोड़ से ज्यादा फीचर फोन यूजर्स को जो है मिलने वाली है, और डिजिटल पेमेंट पहुंचाने का उद्देश्य से जो है ये बेसिकली किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब इस चीज का इस्तेमाल कर सके, यानी कि ये जो फोन पे वगैरह है, यूपीआई वगैरह है, वो लोग इस्तेमाल कर सकेंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, वो भी अब यूपीआई से पेमेंट बेसिकली कर पाएंगे। और ये किस चीज के माध्यम से हो रहा है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई साहब, फोन पे ने नया एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है यूपीआई 123 पे फीचर, जिसके थ्रू जो है वो कर पाएंगे अब पेमेंट। एग्जैक्टली, एक अच्छी बात हो गई है। जब ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है ना, तो मजा आ जाता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मन अंदर से खुश हो जाता है और डांस करने का मन करता है।

0: ये बात जरा सी देर में ही गाना आप तक पहुंचेगा। 9:31 हो रहे हैं, एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, इमीडिएटली इसका आंसर मुझे आप पहुंचाइएगा। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस लेडीज एंड जेंटलमैन। फटाफट आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। ये स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे फटाफट से बताएंगे मेरे क्वेश्चन का आंसर। आज की सुबह मैं बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, एंड अगर आप इसका जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो यार, ये आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ा सकता है, अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पता है तो फिर आप सर्च कर लो। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? यू कैन टेल मी 9837896896। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा जो कॉफी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, क्या आपको पता है? तो बस देरी किस बात की है, मैसेज करो मुझे 9837896896 पर। इंतजार कर रहा हूँ आपके राइट मैसेजेस का। अभी कुछ राइट गाने और कुछ राइट एड ब्रेक, उसके बाद मेरी एंट्री होगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। सो डोंट गो एनीवेयर। कुछ कहना चाहते हैं तो इमीडिएटली व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद, ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल बी राइट बैक।
1: तेरे आगे पीछे लगे सुने दो ना छोरी का, हर रंग तेरे गिल मैच होवे गोरा छोरी का।
0: एक छोटू सा लिटिल एट ब्रेक, उसके बाद ये अच्छा सा गाना धाकड़ वाला आप तक पहुंचेगा इस स्टेशन पर। सो डोंट गो एनीवेयर यार।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120+ रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स 9258253081।
4: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: यार डैडी को मनाओ या मनाओ, लेकिन ये जो आजकल रोड पे ट्रैफिक की समस्या आज दिन बढ़ती जा रही है ना मुरादाबाद में, इसके बारे में जरूर कोई बात करो यार, बिकॉज ये जो ट्रैफिक है ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है मुरादाबाद शहर में। वेलकम बैक, 9:41 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आनंद को सुन रहे हैं आप, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6। बिल्कुल यार, आप चाहे दिल्ली रोड जाओ, कांठ रोड जाओ, स्टेशन रोड पे तो भाई बहुत भसड़ मची होती है। मतलब सबसे ज्यादा ट्रैफिक अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो स्टेशन रोड पर मिलता है, और जिस दिन आपको बहुत ज्यादा जल्दी हो रही होती है उसी दिन आपको बहुत भयंकर ट्रैफिक मिलता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनफैक्ट ये मेरे साथ नहीं, दुनिया के हर दूसरे इंसान के साथ होता है, जब उसे कहीं जाना होता है और कोई चीज उसे बहुत जल्दी करनी होती है ना उसी दिन सबसे ज्यादा लेट होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस ट्रैफिक की समस्या का सलूशन आपके पास ही है। अगर आपको लगता है भाई साहब कि आज वीकेंड है और आज जो है आनंद हमें ना अपनी गाड़ी निकालनी नहीं है, आज हमने सिर्फ ऐसे ही हैंग आउट करने जाना है, अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो यकीन मानो भाई ट्रैफिक सड़क का अपने आप गायब हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। लेकिन भाई साहब सुनना सब चाहते हैं, करना कोई नहीं चाहता है, सच बात तो यही है। लेकिन अभी बता देता हूँ सितंबर में कब कब बंद रहेंगे बैंक एग्जैक्टली। आज एक तारीख हो गई 2026, ये है ट्यूसडे की सुबह, फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए अभी सितंबर 2026 में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और कर्मा पूजा जो है मतलब जो अब सेलिब्रेट की जाएगी, इसको लेकर विभिन्न विभिन्न राज्यों में जो है बैंक की हॉलीडे रहने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें 4 सितंबर को जन्माष्टमी है जिसको लेकर बैंक बंद रहेगा, एंड इसके अलावा आपको बताते चलें 12 सितंबर को बैंक ऑफ रहेगी क्योंकि सितंबर का दूसरा शनिवार है, ठीक है। 13 सितंबर को ऑफकोर्स संडे है तो इसलिए बैंक बंद होगी। 6 सितंबर को भी बैंक बंद रहेगी क्योंकि इस दिन संडे पड़ रहा है, ठीक है जी। 14 सितंबर को भी बताया जा रहा है भाई साहब बैंक ऑफ रहेगी, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल है, अब अपने यहाँ पर होगी या नहीं ये डेफिनेटली पता करना पड़ेगा। इसके अलावा 26 सितंबर को बैंक ऑफ रहेगी क्योंकि चौथा शनिवार है और ऑफकोर्स संडे है 27 को, तो इस दिन भी बैंक ऑफ रहेगी। 20 सितंबर को भी बैंक बंद होगी क्योंकि 20 को भी संडे पड़ रहा है। तो चलो ये तो मैंने आपको बता दी कब कब बैंक जो है ऑफ रहने वाले, फेस्टिविटी का टाइम है ऑफकोर्स, ऐसे में हर इंसान को पता होना चाहिए भाई मतलब कि कब हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बिकॉज अगर आप चले गए बैंक और बैंक हुई गलती से बंद तो बहुत दूर होता है, फिर आपको पछताना पड़ता है, अरे यार काश हमें पहले ही पता होता, राइट। इसलिए मैंने आपको फटाफट बता दिया। और अभी आपको एक और अपडेट बता दूं, अमेरिका में बच्चों की सोशल मीडिया लत पर जो है मीटा का एक बड़ा समझौता सामने आया है। यस, यूएस की इन्फॉर्मेशन आई है, यूएसए 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रोजाना सिर्फ 2 घंटे के लिए जो है एक समय सीमा तय हो गई है। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ऐप जो है ब्लॉक किए जाएंगे ताकि बच्चों की नींद सही से हो सके और उन्हें सोशल मीडिया पर जो है ये एक बेसिकली एडिक्शन लगी हुई है ना बच्चों की, ये भी इससे भी थोड़ा सा छुटकारा मिल सके, बेसिकली एक नाइट कर्फ्यू लगने वाला है। तो ये तो एक अच्छी चीज हो रही है यार, कहीं ना कहीं ये एडिक्शन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी होनी चाहिए भाई, ये जो एडिक्शन है ना ये सिर्फ बच्चों को नहीं है, मेरा कहने का मतलब बड़ों को भी है। तो ये जो रूल्स सेट हो रहे हैं ना मुझे लगता है कि सिर्फ बच्चों के लिए ना हो, पेरेंट्स के लिए भी हो, वो भी तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता देता हूँ एक और खास अपडेट, वैसे मैंने एक सवाल भी आपसे पूछा था जिसके मेरे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा हनुमान अंश मूवी की बात कर लेता हूँ। देखिए टॉक्सिस चल रही थी सिनेमाघरों में जिसको लेकर बड़ी हाइप बनी हुई थी, उसके बाद हनुमान अंश रिलीज हुई एंड ये 2 करोड़ के बजट में फिल्म बनी है जिसमें कोई खास हीरो नहीं है, लेकिन मूवी ने जो है पहले हफ्ते कुछ खास कमाल नहीं किया, दूसरे हफ्ते भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा बेटर था, लेकिन उसके धीरे धीरे जैसे ये रिस्पॉन्स आगे बढ़ा अचानक से फिर एकदम से ऐसा मोड आया, हनुमान अंश जो है अभी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल होगी, 2 करोड़ के बजट में फिल्म बनी थी और आज 40 करोड़ ये जो है 40 करोड़ की कमाई कर चुकी। इमेजिन यार कि मतलब एक फिल्म जो बहुत ही नॉर्मल मूवी लग रही थी लोगों को एंड उसके बाद अचानक से इस मूवी का ऐसा टाइम बदला कि अचानक 2 करोड़ के बजट की फिल्म ये 40 करोड़ का बजट पार कर गई बॉस। अगर अभी तक आपने हनुमान अंश देखने का प्लान नहीं बनाया तो मैं कह रहा हूँ इस वीकेंड डेफिनेटली जाओ, हनुमान अंश डेफिनेटली देखकर आओ यार, एकदम से जो है ये जो बदलाव आया है ना ये मतलब मुझे लगता है कि काबिले तारीफ है यार, मतलब 2 करोड़ के बजट में मूवी बन रही है, 40 करोड़ की कमाई कर रही है, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी जीत है। चलिए 9:46 हो गए, कुछ हेड ब्रेक आ रहे हैं इस आपके रेडियो पर, उसके बाद एक अच्छा सा गाना आपका इंतजार कर रहा है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाउसफुल से एक ट्रैक आपके लिए निकाल रहा हूँ. आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. कुछ कहना चाहते हैं तो इमीडिएटली मैसेज कर सकते हैं, अभी भी आपके साथ हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जहाँ बातें हो रही है दिल से दिल तक. हाँ जी, आनंद के साथ सुन रहे हैं आप ट्यूजडे की सुबह, यह है बिंदास मॉर्निंग. ऐसे ही आप ट्यून इन रहिए, हाउसफुल 3 का ही गाना है, जरा सी देर में आप तक पहुंचेगा. डोंट गो एनीवेयर.
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: करो।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
3: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है आरजे आनंद। 5 सेकंड रूल खेलने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9837896896। एंड अभी मेरे साथ फोन लाइन पे कौन है आज की सुबह? हेलो, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आपके नाम बताएं।
1: मेरा नाम नीति है।
0: हेलो नीति जी, कैसे हाल चाल है और कहाँ से हैं आप?
1: मैं मुरादाबाद से ही हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं नीति जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, मतलब घर की जिम्मेदारी आपके पास है।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
1: मुझे बहुत शौक है।
0: क्या बात है। नीति मैम, 5 सेकंड रूल खेलने के लिए आप तैयार है ना?
1: जी बिल्कुल तैयार।
0: सिंपल सा काम करना है आपको, बस हम आपको 5 सेकंड देंगे और 3 चीजें पूछेंगे। 5 सेकंड के अंदर 3 चीजें बतानी है, ठीक है?
1: जी ठीक।
0: चलो, आर यू रेडी?
1: रेडी।
2: 5 सेकंड रूल। ओह यस।
0: तो भाभी जी, 3 बातें बताइए जो हर इंडियन पापा बोलते हैं।
1: जी, पहली हमारे जमाने में ऐसा होता, तुम नलायक हो।
0: इसी बात का टाइम खत्म हो गया है, मुझे पता नहीं था मैं नलायक हूँ, थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऐसी चीजें बतानी है जो दूध से फटाफट बनती हैं।
1: मावा, खीर और
0: टाइम खत्म। टाइम खत्म। ओके, सो 3 ऐसी फिल्में बतानी है जो आपकी फेवरेट है।
1: प्यार तो होना ही था, प्यार चुपका नहीं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच। 3 ऐसी चीजें आपको बतानी है जो आपको फ्री में लगता है डेफिनेटली मिल जाएंगी मुरादाबाद में।
1: पॉल्यूशन, जाम।
0: खत्म, टाइम खत्म। सीरियसली, ये तो बहुत ही फैबुलस था।
1: बहुत जल्दी हो जाते हैं।
0: ओके चलिए मैम, 3 ऐसी चीजें जो मुरादाबाद में हर जगह मिल जाती है खाने के लिए।
1: चाट, गोलगप्पे और मोमोज।
0: क्या बात है, 5 सेकंड में पूरा कर दिया, बहुत बढ़िया। 3 आपकी फेवरेट चीजें जो आपको बहुत पसंद है खाने में।
1: चाप, रोल।
0: 5 सेकंड खत्म। और भी खत्म हो गया, चलो टिक्की मैं खा लूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा फटाफट से 3 नींबू के फायदे।
1: सॉरी।
0: ओके चलो कोई बात नहीं, अगला हैं 3 टमाटर के फायदे।
1: टमाटर से सब्जी का रंग लाल होता है, गाल लाल होती है।
0: टमाटर से सब्जी का रंग लाल होता है, मेरे को पता नहीं था, आज तक मम्मी कश्मीरी मिर्च डलवाती आई है यहाँ, मेरे को पता नहीं था। फटाफट से 3 फायदे सेफ्टी पिन के।
1: कपड़ों में जोड़ने के काम आती है और चुभाने के काम आती है।
0: इसी पे टाइम खत्म हो गया आपका, मेरे को भी चुभ गया मेरा टाइम, 5 सेकंड पूरे हो गए। 3 बेलन के फायदे।
1: बेलन के फायदे, चपाती गोल बनाती है, पतली बनाती है और
0: क्या बात है, मारने के नाम से मेरा टाइम भी भाग गया है। चलो भाभी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।
1: लवली,
0: लवली टॉकिंग टू यू। इसने कोई ऐसा गेम खेला है?
1: नहीं, कभी नहीं।
0: ओके, अगर सपोज करो आज रात आपको 1 लाख रुपए मिल जाए तो आप सबसे पहले कहाँ खर्च करना चाहोगी?
1: कहीं ट्रिप पे जाना चाहूंगी मैं।
0: लोगों को इंतजार है कहीं से 1 लाख रुपए मिल जाए, हम लेके ट्रिप पे भागे। वेल थैंक यू सो मच मैम, आई होप आपको 1 लाख नहीं 1 करोड़ मिले ताकि आप हम जैसों का भी ख्याल रखें।
1: थैंक यू सो मच।
0: चलिए मैम, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आप ऐसे घर सजाती रहिए और मुस्कुराती रहिए।
1: थैंक यू।

शाहिद माल्या विशाल एंड शिखर की आवाज एंजॉय कर रहे थे भी आप कुकड़ कमाल दा मुंडा भाई मैं भी कमाल का हूँ इसमें तो कोई इतनी शोक की नहीं है। वेल थैंक यू सो मच आपने मेरी तारीफ कर दी है पाजी। आज एक नई रिपोर्ट आई जिसमें पता लगा है सबसे ज्यादा यूजर्स इंस्टाग्राम के जो है वो कौन से देश के देखने वाले हैं। आपको पता है यानी इमेजिन एवरीबॉडी भारत में इंस्टाग्राम यूजर्स का मामला दुनिया में नंबर वन पे है। अनबिलीवेबल हर दूसरा इंसान लगता है वेला पड़ा है कि भाई जो इंस्टाग्राम देखता है। करीब 35 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स बताए जा रहे हैं अपने इंडिया में। एग्जैक्टली एक नई रिसर्च में पता लगा है सबसे ज्यादा जो नंबर वन पे कंट्री आई है ना जो देश आया है वो भारत आया कि भारत में सबसे ज्यादा लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। देख लो यार बाकी की जो कंट्री है उसमें फिर भी कम है लेकिन अपना इंडिया भाई साहब ताबड़तोड़ तरीके से जो है लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। अगर मैं ब्राजील की बात करूं ये भी कंट्री है तो यहाँ पे 147 मिलियन लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एक नई रिसर्च आई इसमें पता लगा है कि भारत बढ़ चढ़ के जो है भाई साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंस्टाग्राम चलाने में। आप भी चलाते हो ना तो फटाफट फॉलो करो मुझे चलो 9837896896 वो नंबर है जिसपे अभी आपने मेरे गलत सवाल का जवाब देना है। लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ वहां पर आप फॉलो कर लो। ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से। ऐसे भी भैया आप दोनों अकाउंट को फॉलो करोगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए काम की बातें तो हो ही रही है। हनुमान अंश की बात कर ली मैंने कि भैया 2 करोड़ के बजट में बनी थी 40 करोड़ कमा चुकी है फिल्म। मतलब ताबड़तोड़ तरीके से इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वही बात करूं भारत में 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म की जी हाँ हॉलीवुड मूवी की बात करूं स्पाइडरमैन जिसने भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचा दिया है। भारत में 500 करोड़ कमाने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बनी है यार जिसने जो है कमाल कर दिया है। हालांकि मैंने भी ये देखी थी थिएटर में जाके समझ में कुछ आई नहीं लेकिन फिल्म थोड़ी ठीक ठाक लग रही थी। इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा एक सवाल आपके लिए आने वाला है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे जिसका जवाब आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे आज की मॉर्निंग 9837896896 पर। जितने भी लोग सुन रहे हैं रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा के फटाफट आपने क्या करना है मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। एक बहुत ही प्यारा गाना प्ले कर रहा हूँ ये गाना ऑफकोर्स आपने बहुत बारी सुना होगा आपको बस आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा गाना है। मैसेज करना है आपने उठाना है अपना फोन टाइप करना है अपना नाम अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब कौन सा ट्रैक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ चलो जी मैसेज करके बताओ मुझे फटाफट से 9837896896 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अभी के अभी इस स्टेशन पर एंड बता सकते हो मुझे ये सवाल का सही जवाब। जल्दी से जाइए अपने मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए अपना नाम अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर उसको सेंड कीजिए मेरे नंबर पे 9837896896। सवाल सुन लो ये गाना कौन सा है। टाइम बता देता हूँ सुबह के 10 बज चुके हैं।

0: करो।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

मैं सब जानता हूँ। देखो ये जो आपने अपना वेट कम किया है ना, मुझे पता है इसका राज। ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आप एंजॉय कर रहे हैं आनंद के साथ। ये ट्यूसडे की सुबह है, इरशाद कामिल ने इस गाने को लिखा है, बहुत ही प्यारा ट्रैक है।

भैया आप क्या जानो, इस रेडियो के पीछे, इस शो के पीछे कितनी सारी मेहनत लगती है। हां जी, ये तो सिर्फ हम ही बता सकते हैं भाई साहब। दस बज के आठ मिनट हो गए, जाने का समय हो गया, लेकिन अभी आपको बता दूं, 15 दिन में सिर्फ पानी पीकर एक महिला ने है 20 किलो भैया वेट कम कर लिया। एक लेडी है जिसने अपना वजन कम किया है 20 किलो। अनबिलीवेबल यार, ये कैसे हो सकता है, मुझे भी बिलीव नहीं है। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा क्या है सिनारियो। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई इंसान पानी पीकर भी अपना 20 किलो वजन कम कर सकता है? ऐसा हुआ है। हां जी बिल्कुल, ये सच है। और ऐसा ही हुआ है, चीन की एक महिला ने अपना वजन कम करने के लिए लगातार 15 दिन का उपवास किया, एंड बस उन्होंने वाटर के ऊपर अपना उपवास किया था। मतलब वो पानी पीकर ही जो है अपना 15 दिन का उन्होंने उपवास को जो है मेंटेन किया, और उसके बाद उन्होंने अपना 20 किलो जो है वेट वो कम कर लिया है। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मतलब जहां लोग जिम जाने का सिर्फ बहाना ढूंढते हैं और उसके बाद जाते भी नहीं है यार, तालियां लेडी के लिए। और ये 31 ईयर की लेडी है जिन्होंने, ये चीन में रहती है, जिन्होंने भाई साहब 20 किलो वजन पानी पीकर 15 दिन में कम कर लिया है। बहुत ही बढ़िया। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहीं पर राह होती है। अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच लो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे पूरा ना कर पाओ। चलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, 10:09 हो रहे हैं, एक और लास्ट मौका है आपके पास। जल्दी से मुझे बताओ ये गाना कौन सा है। आप लोग गलत जवाब दे रहे हो। एक क्लू देता हूँ, इस गाने में वरुण धवन है, इससे बड़ा और क्या एक क्लू दूँ। अरिजीत सिंह ने गाया है, बहुत ही प्यारा गाना है। ब्यूटीफुल ट्रैक। फटाफट से व्हाट्सएप करेंगे आप मुझे 9837896896 पे। अगर आपको पता चल गया है कौन सा गाना है, वरुण के ऊपर पिक्चराइजेशन है, तो इमीडिएटली अपने नाम के साथ अपना सही जवाब मुझ तक पहुंचा दो।

0: काला चश्मा लगाओ या मत लगाओ, लेकिन बाहर का मौसम जरूर देख लो भाई साहब, काले काले बादल आ गए हैं और ये बादल लग रहा भाई साहब बस बरसने वाले हैं। जो कहते हैं ना, जो गरजते नहीं है वो बरसते भी नहीं है। चलिए भाई, बारिश अगर हो रही है बाहर तो अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए। आप जहां भी कहीं जा रहे हैं या फिर आप कहीं निकल चुके हैं, सो ऑल द वे बेस्ट। एंड आई रियली होप कि आपकी सुबह माइंड ब्लोइंग हो ही गई होगी। भाई मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि अपनी तरफ से आपकी मॉर्निंग को थोड़ा झकास बनाया जाए। एक छोटा सा एड ब्रेक आ रहा है पाजी, उसके बाद मैं जल्दी से बताता हूँ कौन है आज के मेरे शो का लकी विनर, किसने दिया है सही जवाब।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
0: मॉर्निंग आप सुन रहे हैं और देखिए बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुछ लोग अभी लाइव गाड़ी चला रहे हैं और वो हमारा रेडियो भी सुन रहे हैं। आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा था, जाने के समय हो गया है, 10:14 हो गए हैं। खुशी बार बार मुझे देख रही है कि भैया जल्दी से सीट खाली कर दे मेरी। मैंने कहा ठीक है भैया, ये कौन सा गाना था, आइडेंटिफाई करना था। कौन इस लाइन पे? हाय गुड मॉर्निंग भाई, क्या नाम है आपका?
4: शुभम त्यागी, एंड ये गाना था शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती।
0: अच्छा, क्यों नहीं नींद आती है शुभम, पहले ये बताओ मुझे इसका रीजन क्या है।
4: मुझे तो खूब नींद आती है।
0: जोरदार तालियां यार शुभम भाई, कंग्रेचुलेशन। बिल्कुल एक ही बार में आपने फटाक से जवाब पहचान लिया। कहाँ जा रहे हो पहले ये बताओ फटाफट।
4: ऑफिस।
0: ऑफिस जा रहे हो, अच्छा क्या करते हो शुभम भाई, जरा थोड़ा सा बता दो यार।
4: सर बैंक में हूँ मैं।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, और रेडियो का सुनने का टाइम मिल जाता है आपको?
4: हाँ ड्राइव करते हुए।
0: क्या बात है, मौसम कैसा हो रहा है बाहर का यार?
4: अच्छा मौसम सर, बारिश होने वाली।
0: बारिश होने वाली, बहुत बढ़िया। चलो यार शुभम ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक यार, पहुंचो ऑफिस एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग यार।
4: थैंक यू।
0: ओके मेरे भाई, थैंक यू।

शुभम बने हैं मेरे शो के आज के सुपरस्टार। बिल्कुल सही जवाब दिया था, शनिवार रात्रि हमें नींद नहीं आती, यही वाला गाना था। बाकी लोगों के लिए भी कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और मुरादाबाद में ना ऐसा होता है, कहीं पर बारिश होती है, कहीं पर बारिश नहीं होती है, तो अगर आपकी लोकेशन पे बारिश हो रहा है तो एंजॉय करो। मैं फिलहाल यहाँ से जाता हूँ, जल्दी मिलूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आपके ही मच जाए। रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाए, अगली खुशी के साथ कंपनी एंजॉय करेंगे। बिल्कुल वो भी अच्छी बातें करती है यार, क्या बात है।

भारती जी सही जवाब दिया आपने, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। आप हमेशा एकदम राइट आंसर पकड़ाते हो। गुड मॉर्निंग, सही जवाब के साथ कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ आज की सुबह? अलीशा मुरादाबाद विकी सागर जुड़े हैं, रेडियो वाले अनंतु गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? रामपुर से रिहाना, शबनम और अनम हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैंने पूछा था ना कॉफी के बारे में थोड़ा सा बताओ, तो इन्होंने बताया था कर्नाटक इज द राइट आंसर, ये राज्य है एग्जैक्टली। दुर्गेश जी मेरे साथ जुड़े थे सही जवाब के साथ, कर्नाटक इज द राइट आंसर। रिहाना भी जुड़ी थी, अलका वर्मा बुद्धि बिहार से जुड़ी थी, एंड इसके अलावा बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े थे, गुड मॉर्निंग सर कैसे हालचाल है? सुहानी फ्रॉम शिवपुरी, थैंक यू सुहानी जुड़ने के लिए। हाय सॉन्ग बहुत प्यारे हैं आपके, थैंक यू। एक मैसेज आया है चमन लाल साहब का, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। आनंद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपने आते ही रंग जमा दिया है, आपकी आवाज के साथ ही साथ कार्यक्रम बहुत ही अमेजिंग प्ले करते हो, परफॉर्म करते हो अच्छा आप, अरे थैंक यू। आरजी जी आपकी आवाज अच्छी लग रही है, कश्मीर से मैसेज आया, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। टाइम हो गया जाने का, कल मिलते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मैं यहाँ से निकलता हूँ, बहुत तेजी से जोरों की भूख लगी है, आई होप बस बारिश ना हो रही हो, बारिश हो रही है तो कोई नहीं, देखते हुए जाऊंगा। आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे थॉट्स को अपने दिमाग में लाइए, नेगेटिविटी को बिल्कुल आने मत दीजिए, अगर आ भी रही है तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए और हाँ पानी पीते रहिए।

0: चल नहीं रहा है ना, क्या करेंगे?
1: Looking for.

0: This one.
1: What about it?
0: Deserves a hug.
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad, 89.6 FM.
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.7 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। कभी कभी ना कुछ चीजों से हमारा ना एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है दोस्तों, और मेरा कनेक्शन शायद इन बादलों से है। मैंने कई बार नोटिस किया है, जब भी मैं सुबह अपने घर से ऑफिस के लिए आती हूँ ना, तो वैसे ही ये काले काले बादल तैयार हो जाते हैं। मेरे आने से पहले ये तैयार हो जाते हैं। आसमान में काले काले बादल आ जाते हैं, मौसम अचानक इतना ब्यूटीफुल हो जाता है, सुहाना हो जाता है, ठंडी सी हवाएं, बादलों की छांव और कभी कभी हल्की सी बारिश। ऐसा लगता है जैसे ये बादल मुझसे कह रहे हों, खुशी जी हम तुम्हारा आने का इंतजार कर रहे थे।

और शायद जिंदगी भी ना कुछ ऐसी ही है, हर दिन धूप हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी ना ब्लैक क्लाउड भी आते हैं, लेकिन वही तो मौसम को खूबसूरत बनाते हैं। एंड दोस्तों आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी लेकर हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो मॉर्निंग मसाला, जहाँ पर ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, फन करेंगे एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है जो आप तक डिलीवर करनी है। तो बस आप बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। चाहे आप मुझे कार में सुन रहे हो, घर में सुन रहे हो, जहाँ भी आप मुझे सुन रहे हैं, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप ना इतना प्यारा सा आपका चेहरा है, तो प्लीज थोड़ी सी स्माइल तो कीजिए एक आज की मॉर्निंग। कहते हैं ना कि जब मुस्कुराकर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो मौसम, यकीन मानिए, मौसम और दिन दोनों खूबसूरत हो जाते हैं।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आज ये खुशी आपके साथ है। वेलकम सितंबर 2026 एंड नया महीना, नई उम्मीद और नई शुरुआत। बस दिल में पॉजिटिविटी, चेहरे पर स्माइल और हर दिन कुछ बेहतर करने का पैशन रखिए। हैव अ ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड सितंबर। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजी खुशी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस महीने को यादगार बनाइए। देखिए ट्यूजडे मॉर्निंग है एंड बस हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये महीना आपके लिए मंगलमय जाए एंड आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए और आप ऐसे ही अपनों के साथ रहें। दोस्तों वक्त हुआ है अभी 10:38 राइट नाउ और आपके मैसेज ओए होए होए, क्या मैं बात बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन इतना प्यार देने के लिए। और हमारे पास यहाँ पर बैक टू बैक आप सभी के जो मैसेज आ रहे हैं ना, मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। अब आपको और इंतजार नहीं कराऊंगी, टेंशन ना लो बिल्कुल भी आप। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज की सुबह। विकी सागर जी मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग खुशी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम गुड सर। आप बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर नीलाक्षी का है न्यू मुरादाबाद से। हाय गुड मॉर्निंग खुशी दी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। अगला मैसेज हमारे पास आया जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं दुर्गेश सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से। तो दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से आप भी अपने मैसेज पहुंचाइए आज की सुबह। मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। जल्दी से अपने मैसेज पहुंचाइएगा और मैं लौट कर आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं सब आपको खुशी बताएगी। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और देखिए दोस्तों, आज 1 सितंबर है और ट्यूसडे का बहुत ही खूबसूरत सा दिन। और दोस्तों, आज 1 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे, यानी वो दिन जो हमें याद दिलाता है उस खूबसूरत दौर की जब दिलों की बातें मोबाइल स्क्रीन पर नहीं बल्कि कागज पर लिखी जाती थी। एक समय था जब किसी का खत मिलना अपने आप में एक खूबसूरत एहसास हुआ करता था। लिफाफा खोलने से पहले ही ना चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और हर शब्द को पढ़ते हुए लगता था जैसे सामने बैठकर कोई अपना हमसे बातें कर रहा हो। लेकिन आज के इस डिजिटल एज और ईमेल दौर में चिट्ठियां कहीं पीछे छूट गई हैं। वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे हमें फिर से कलम और कागज उठाने और अपने जज्बातों को शब्दों में उतारने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन की शुरुआत साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के राइटर रिस्ट सिमकिन ने की थी। एंड दोस्तों, आज मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल भी है, बड़ा खूबसूरत सा है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है? अगर हाँ तो क्या आपको याद है कि आपने पहली जिंदगी की पहली चिट्ठी किसके लिए लिखी थी? मम्मी पापा के लिए, किसी दोस्त के लिए, या फिर किसी ऐसे खास इंसान के लिए जिसके नाम पर आज भी वो चिट्ठी आपके दिल में कहीं संभाल कर रखी है? बताइए बताइए दोस्तों। आज आपको थोड़ी सी पुरानी यादों में ले जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज की सुबह कि आप मुझे बताएं आपने पहली चिट्ठी किसके लिए लिखी थी? याद है आपको वो पहला खत जब आपने लिखा था मम्मी पापा के लिए, किसी दोस्त के लिए, या फिर किसी ऐसे खास इंसान के लिए जिसके नाम पर आज भी वो चिट्ठी आपके दिल में कहीं संभाल कर रखी है? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। इस पर आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं आज की सुबह। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आ गए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जी का। एंड आज की सुबह ये गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग राधे राधे आपको भी। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी हीरो से, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा सर। अगला मैसेज हमारे पास आया रानी रंगल से रिहाना जी का। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो दोस्तों, आप भी जल्दी से अपने मैसेज पहुंचाइएगा, हमें इंतजार है। और एक खूबसूरत सा ट्रैक आज की सुबह। आपने कभी किसी के लिए चिट्ठी लिखी है तो बताइएगा जरूर मुझे।
1: बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ तुम्हें देखकर, आजकल लिख रहा हूँ।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: Mixing in the house.

करार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, रंग तो चढ़ा हुआ है आपके ऊपर भी, ये फिर मुरादाबाद का, और हम पर भी चढ़ा हुआ है। तो आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 6 पर। आज एक खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी टाइम मैं आपको बता देती हूँ, 11:05। दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना आज की सुबह।

दोस्तों, जो कभी नहीं रुकता, बस समय है जो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक समय ऐसा भी था जब अलग अलग जगहों पर समय में अंतर हुआ करता था। आज की खास जानकारी जुड़ी है हमारे भारतीय नामक समय यानी IST से। आजादी के तुरंत बाद 1 सितंबर 1947 को पूरे देश के लिए भारत नामक समय को आधारिक समय के रूप में लागू किया गया है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों के समय को एक मानक समय से जोड़ा गया ताकि पूरे भारत में समय की एक रूपता बनी रहे। और हमारे भारतीय नामक समय का आधार है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, जिसके आधार पर पूरे देश में घड़ियां एक ही समय बताती हैं। तो अगली बार जब आपकी घड़ी की सुई एक साथ पूरे देश की घड़ियों के साथ चल रही हो, तो याद रखिएगा, एक समय का देश और एकता की पहचान यही है हमारे भारत नामक समय। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और दोस्तों, आपके यहाँ पर लगातार खूबसूरत संदेश भी आ रहे हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से। जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आप बताइएगा कि आप कैसे हैं। वैसे उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की सुबह इन्होंने एक थॉट हमारे साथ शेयर किया है कि हमें सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमको बाहर से नहीं भीतर से भी जानते हैं। एग्जैक्टली राइट सर। तो अच्छाइयाँ सिर्फ ऊपर से नहीं, आपके मन से भी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कार्य आप कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए या फिर ऐसे ही ऊपर मन से मत कीजिए। जो भी आपको कार्य करना है, किसी की चाहे सेवा हो, किसी की हेल्प हो, तो वो आप पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, निस्वार्थ कीजिए। देखिए कितना सुकून मिलता है आपको, और प्रभु तो सब जानते ही हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है पाकिस्तान कराची से अब्दुल रहमान जी का। इन्होंने उर्दू में कुछ लिखा है, बट सर माफी चाहेंगे, हमें उर्दू लैंग्वेज तो नहीं आती है। आप हिंदी या फिर इंग्लिश में मुझे सेंड कर सकते हैं जो भी आपने बातें लिखी हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर विकी सागर जी का आया है। थैंक्स पहुंचाते हैं, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया गुड मॉर्निंग गुलाम जिलानी पाशा जी का। अगला मैसेज हमें पहुंचाते हैं जय श्री राम। खुशी मैम क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया है सर। हम ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से। और मुंबई की भी एक न्यूज अभी अभी अपडेट आई है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। सनी गाने की रिक्वेस्ट भेजी आज की सुबह, इसको डेफिनेटली हम प्ले करेंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। थैंक यू ललिता मैम। मौसम बहुत ही औसम है, बारिश हो रही है मैम, और कहते हैं कि इस बारिश के मौसम में ना मुझे गाना सुनना है मैम, छतरी ना खोल बरसात में। अरे भैया ये बताओ मैम, छतरी अगर बरसात में ना खोलेंगे तो फिर कब खोलेंगे? हाँ छतरी का तो बारिश में ज्यादा यू नो अहम रोल होता है ना। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं हम भीग ना जाएं, कोई जरूरत यू नो सामान हमारे पास होता है, तो छतरी खोलना बहुत जरूरी होता है। जब हम नहाने के मूड में हो बारिश में, तो हाँ छतरी का तब कोई काम नहीं है। बट अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो प्लीज अपना छाता अपने साथ रखिए, रेनकोट भी लेकर जाइए, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। और अभी बारिश हो भी रही है, ललिता जी ने अभी मैसेज हमें पहुंचाया है। एंड इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन भी लिखी है, लाइनें लिखी है कि बारिश की बूंदों में खुशियों का पैगाम आया है, बारिश की बूंदों में खुशियों का पैगाम आया है, खुशी मैम का नाम लेते ही मौसम भी मुस्कुराया है, हर बूंद कह रही है बस यही तो बात है, खुशी मैम रहे हमेशा सुखी और खुशी। अच्छा ये है दिल की सौगात। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इतने प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका।
दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक एंड इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी गौरव टेलर जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से, जब हाले दिल तुमसे कहने को। अभी तो हम कुछ नहीं कह रहे लेकिन लौट कर आएंगे तो बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। अभी फिलहाल ये गाना सुनो। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

ऑफकोर्स दोस्तों, आपने याद किया और खुशी हासिल हो गई है। आपका अपना फेवरेट शो लेकर मॉर्निंग मसाला वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:23। और दोस्तों, अब बात हम करने वाले हैं मुंबई में सफर अब थोड़ा महंगा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया 26 से बढ़कर 27 और काली पीली टैक्सी का शुरुआती किराया 31 से बढ़कर 33 हो गया है। साथ ही लंबी दूरी के किराए में भी बढ़ोतरी हो गई है। तो जो मुंबई की सड़कों पर ऑटो या टैक्सी का सफर करते हैं, आपकी जेब पर अब थोड़ा असर होने वाला है।

0: और दोस्तों उत्तर प्रदेश की शानदार खबर बाराबंकी के जैदपुरी के बुनकर भाइयों जावेद और जफर अहमद ने ओडीओपी योजना की मदद से अपने हुनर को कारोबार में बदला और आज उनका सालाना टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इनके बनाए कॉटन के स्टॉल, स्कार्फ और गमछे अमेरिका, जर्मनी तक पसंद किए जा रहे हैं। यानी हुनर अपना हो तो पहचान दुनिया तक पहुंचा सकती है। ये थी उत्तर प्रदेश की शानदार खबर जो बाराबंकी के जैदपुर के बुनकर भाइयों की है। देखिए अपने भारत में तो नाम हो ही रहा है लेकिन अब विदेशों में भी हमारी चीजें पसंद की जा रही हैं। एंड कहते हैं ना कि दोस्तों हुनर होता है ना तो इंसान सब कुछ कर सकता है। एंड स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, इस आज के टाइम में बहुत मोस्ट है। तो मैं कहती हूँ कि स्किल होना बहुत जरूरी है। आप भी कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करते रहिए, न्यू सीखते रहिए एंड क्योंकि दोस्तों जिंदगी सीखने का ही नाम है। और हमारे पास ना यहाँ पर कुछ वॉइस नोट भी आए हैं तो मैं उसको भी जल्दी से प्ले कर लेती हूँ। मैम ने आज की सुबह क्या पहुंचाया है उनकी मधुर सी आवाज में सुन लेते हैं, उन्हीं की जुबानी उनकी बातें।
1: राधे राधे खुशी, आप कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आप भी अच्छी होंगी खुशी। आपके जीवन में भी खूब खुशियों की झमझम बारिश हो और आप खूब खुश रहें। खुशी मुझे गाना सुनवा देना।

0: धन्यवाद।
1: मोस्ट वेलकम मैम, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ जी अलका जी, आप बड़ा प्यारा मुस्कुराती भी हैं और शर्माती भी हैं और गाती भी बहुत अच्छा है। आपके लिए जोरदार तालियां आरजी खुशी की तरफ से, और आपका ट्रैक ही डेफिनेटली हम प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स देने के लिए। लव यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में शहीद शारिक अली जी का, महराज अंसारी जी का, बाबू अंसारी जी का। आदाब खुशी जी, आपको भी आदाब। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपकी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में, मेरे पास आओ नजर तो मिलाओ। डेफिनेटली सुनवाएंगे इस ट्रैक को भी। और दोस्तों, मैंने आपसे ना आज की सुबह पूछा था कि क्या आपने कभी किसी को लेटर लिखा है, कभी किसी को चिट्ठी लिखी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके ब्रदर हो, सिस्टर हो, या फिर कोई आपका दोस्त, या कोई ऐसा खास पर्सन जिसके लिए आपने पहला खत लिखा है। कौन है वो, किसके लिए आपने वो पहली चिट्ठी लिखी थी, याद है आपको? हाँ, कैसे याद नहीं होगी, वो पहली चिट्ठी तो याद होगी आपको। तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपने वो पहली चिट्ठी, वो पहला खत किसके लिए लिखा था। एंड हमारे पास यहाँ पर ललिता जी ने मैसेज पहुँचाया था, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बातें लिखी थी। हाँ, इन्होंने लिखा था कि मैम, हमने चिट्ठी मम्मी जी के लिए लिखी थी,

ओके ये कहती हैं कि मैम हमने चिट्ठी मम्मी जी की लिखी लिख के दिखी थी, जो हमने पढ़ी तो वो चिट्ठी उन्होंने अपने मम्मी पापा जो हमारे नाना नानी के लिए लिखी थी। अच्छा आपकी मम्मा ने अपने मम्मा पापा को चिट्ठी लिखी थी। ओके वैसे वो जो चिट्ठी लिखने का टाइम होता था ना बहुत ही खूबसूरत होता था। एक एक चीज को सोच समझ कर मतलब लिखना, उनके हर एक बात को याद करके और उसके बाद वो दिल की बातें कागज पर उतारना और फिर उस चिट्ठी को डाकघर में पोस्ट करना एंड फिर वो चिट्ठी वहां पे जाती थी और पोस्ट डाकघर से फिर वो चिट्ठी जिनके लिए आप लिखा करते थे चाहे वो आपके पेरेंट्स हो दोस्त हो उनको मिलती थी और जब वो उस खत को खोलते थे ओहो हो चेहरे पर वो खुशी क्या ही कह रहे। बताइए दोस्तों आपको कभी किसी ने चिट्ठी लिखी है या आपने कभी किसी के लिए चिट्ठी लिखी है तो मुझे जरूर बताइएगा कौन है वो शख्स जिनके लिए आपने चिट्ठी लिखी है। अब इतना मत सोचिए जल्दी से बता दीजिए। अच्छा नंबर नहीं मालूम है हमारा, मैं बताती हूँ आप टेंशन क्यों ले रहे हो। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी खुशी लौट कर आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेकर्स पर।

गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। देखिए, खूबसूरत गानों के साथ साथ खूबसूरत जानकारियां मिलना भी बहुत जरूरी है, तभी शुभ भी आता है ना। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, आज 1 सितंबर को और कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं।

1 सितंबर से 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर और दिमाग को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत हो रही है और यह सप्ताह हमें याद दिलाता है कि हमारी थाली में स्वाद के साथ साथ पोषण का संतुलन भी होना चाहिए। दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, अनाज और पर्याप्त पानी, छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो आज एक छोटा सा संकल्प लेते हुए एक खुद से प्रॉमिस कीजिएगा एवरीवन कि खाएंगे स्वाद के साथ लेकिन सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि स्वस्थ शरीर की खुशहाली जिंदगी की पहली सीढ़ी होती है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि एवरीवन हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी फूड खाइए। और कहते भी है ना, जो फिट है वो हिट है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी एंड तभी तो आप हर चीज का लुत्फ उठा पाएंगे ना। और आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो फिर क्या फायदा उस चीजों का, कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे ना आप। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को फर्स्ट नंबर पे रखिए, अपना स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का

अच्छे से ख्याल रखिए। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आ गए हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। बातों के साथ साथ, जानकारियों के साथ साथ ना, चीजों को खुशी, सब चीजों को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, ये संदेश हमें पहुंचाते हैं कश्मीर से मेहराजुद्दीन जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये गाना सुनना चाहते हैं, ये हंसी वादियां, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको सर। और कश्मीर की बात करें तो वहां की वादियां तो सच में बहुत खूबसूरत हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, क्या हाल है आपके, बहुत ही अच्छे हैं हम। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आसिफ फ्रॉम इटली, एंड इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बातें लिखी हैं कि आज भी आपका शानदार प्रोग्राम सुनकर दिल खुश हो गया है। आपकी प्रस्तुति का अंदाज, आपकी मधुर आवाज और गानों का बेहतरीन चयन हर बार श्रोताओं का दिल जीत लेता है। सच कहूं तो आपका प्रोग्राम सुनते हुए समय का पता ही नहीं चलता है कैसे कम्प्लीट हो जाता है। और ये कहते हैं कि आज हमारे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि पहले की तरह इस बार भी आप हमारी पसंदीदा गीत को अपनी प्लेलिस्ट में शामिल जरूर करेंगी। एंड ये कहते हैं कि आपका श्रोताओं के साथ ये जो अपनापन और सम्मान ही आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाता है, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर करे आप हमेशा इसी तरह अपनी खूबसूरत आवाज, शानदार अंदाज और बेहतरीन प्रस्तुति से सभी श्रोताओं का दिल जीतती रहें। आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, दिलों का हाल, कैसा है आपके दिलों का हाल, बताइए जरा। चलिए दोस्तों, सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया था जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी का, और सर ने भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है। ये गाना मुझे बहुत ही ज्यादा इनो पसंद है और बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं इसके, एंड मीनिंगफुल ट्रैक है ये। एक रास्ता है जिंदगी, थम गए तो कुछ नहीं, इसीलिए दोस्तों जिंदगी में चलते रहना चाहिए। जो चलता है वो आगे बढ़ता है, जो रुक जाता है वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इसीलिए धीरे ही सही लेकिन कदम बढ़ाती रहिए, चलती रहिए। और सुनते हैं खूबसूरत ट्रैक।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। और जब कोई अपना दुख में साथ होता है ना, एंड तो हर मुश्किल का वो आसानी से सामना कर पाते हैं, और वो मुश्किल मुश्किल नहीं लगती है। इसीलिए दोस्तों मैं कहती हूँ कि कोई अगर इंसान आपको लगता है कि वो तकलीफ में है, मुश्किलों में है, तो उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंसानियत है। और दोस्तों नेपाल से सामने आई इंसानियत और हिम्मत की दिल छू लेने वाली तस्वीर। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बीच तमिलनाडु के 21 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब रास्ते में अचानक तेज बहाव और भूस्खलन आया। मुश्किल घड़ी में एक महिला ने अपनी साड़ी और केबल की मदद से कीचड़ भरे ढलान पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने में मदद की। करीब डेढ़ दिन बाद सेना के हेलीकॉप्टर से सभी को सुरक्षित काठमांडू पहुंचाया गया। और सच कहते हैं ना कि मुसीबत में इंसानियत का हाथ मिल जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी पड़ जाती है। और मैम की इस हिम्मत को हम सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करें, लेकिन उन मैम ने बिना घबराए बिना सोचे समझे उन सब की मदद की। और दोस्तों एक सच्चा इंसान वही होता है जब दुख की घड़ी में, दुख परेशानियों वाली परिस्थिति में जब कोई किसी का हाथ थामता है, तो उससे बड़ी और क्या इंसानियत होगी। एवरीवन, और हमारे पास कुछ और खूबसूरत संदेश आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है अजीत कसाना जी का, माया देवी जी का, ऋतिक और आदित्य कसाना जी का, लदावली कांट रोड मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और ये कहते हैं खुशी जी आपने पूछा था कि सबसे पहले आपने खत किसको लिखा है, तो मैं सबसे पहले मैम मैंने करीब 25 साल पहले आकाशवाणी रामपुर में बच्चों का प्रोग्राम आता था, अभी भी आता है, कलिया, जिसमें बच्चे भाग लिया करते थे। उस प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने खत लिखा था। आकाशवाणी के नाम वह वक्त सोशल मीडिया इंटरनेट का नहीं था, सिर्फ पत्रों के द्वारा ही एक दूसरे का हाल चाल पता चलते थे। और आकाशवाणी भी पत्रों पर आधारित प्रोग्राम पेश करता था, उस वक्त का बहुत ही अच्छा माध्यम था। एग्जैक्टली राइट सर, वो पत्रों का माध्यम वो टाइम बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। घंटों तक पत्र लिखना, एक्चुअली वो मोमेंट, वो बातें सबसे खूबसूरत होती हैं, वो एहसास। और आज के टाइम में क्या होता है, एक्चुअली एक सेकंड भी नहीं लगता है, जो कहना होता है वो फटाक से हम व्हाट्सएप कर देते हैं, और पसंद नहीं आता कि अरे हमने क्या भेज दिया, फिर तुरंत डिलीट भी कर देते हैं, है ना। और दोस्तों यूपी के इंटरमीडिएट छात्राओं के लिए एक बड़ी और काम की खबर है। यूपी सरकार ने अब आईएएस, पीआईपीएस और आईएफएस जैसे वरिष्ठ अधिकारी स्कूलों में जाकर छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, करियर और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देंगे। यानी किताबों के साथ अब अनुभव की सीख भी मिलेगी, ताकि यूपी के युवा सही दिशा में अपने भविष्य की मजबूत नींव रख सके। क्या खूब पहले ना सही समय पर सही मार्गदर्शन, तो सपनों को मिल सकती है नई उड़ान। यूपी सरकार के इंटरमीडिएट छात्राओं के लिए ये बड़ी पहल है।
और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के, वरना हमारे जो श्रोता है ना वो थोड़े से हमसे नाराज हो जाएंगे और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे से श्रोता हमसे नाराज हो। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नेहा स्वाति का। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम गुड डियर, आई होप आप भी अच्छी होंगी। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये मैसेज हमें नेहा जी पहुंचाती हैं फ्रॉम मुरादाबाद से। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। एंड उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है अमित जी का। एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं पीतल नगरी से। हाउ आर यू खुशी जी? आई एम गुड सर। इतने प्यार से आप हालचाल सब लोग पूछते हैं ना, मालूम करते हैं, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि इंसान अगर ठीक भी ना हो ना, जब इतने प्यार से इतने अपने हमें हालचाल हमारा पूछते हैं तो हम सच में बहुत अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। एंड अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपसे सी यू सून। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर आवाज, सभी लोग ध्यान दीजिए। आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे भाई, ये HPV क्या होता है और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, जरा इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
1: आरजे साहिबा, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए और भी हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण कैंप नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में तो विस्तार से जानने के लिए आपको पहले कहानी बताता हूँ। यहाँ एक गाँव था, गाँव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम भी अलग। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, जो हम कह सकते हैं गुड़िया, गांव में गुड़िया कहा जाता। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्म। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी बहुत कुछ बन जाए बड़े होकर, जिससे उसकी जिंदगी और बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, फिर उन्होंने अपने पति रामपाल से बात। रामपाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटियां तो बिल्कुल ठीक है ना, तो क्या जरूरत पड़ी है इस टीके की? लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, यह टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो सकता है। रामपाल कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी जो सुनी सुनाई। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना, जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी को बीमारियों से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहे। अगले ही दिन सावित्री और रामपाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई हुई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां तो बिल्कुल हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन दो दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और भी लोग इससे प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामपाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीने बाद एक बदलाव साफ दिखने लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ आया ये हमारी बेटियों की भविष्य की बात है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की ही नहीं है, ये हर परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
0: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लगता है, जरा खुलकर विस्तार में बताइए।
1: चलिए आपको अच्छे से ही बता देता हूँ। HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते हुए रोका न जाए तो महिलाओं के अंदर आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय में मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
0: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है?
1: हाँ जी बिल्कुल, और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है आर्य साहिबा?
0: जी सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
1: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
0: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता?
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
0: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका तो होगा ना?
1: यही अच्छी खबर है, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
0: सच में? कैसे?
1: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर आपको बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
0: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छे से समझ सकें।
1: चलो आप कहते हो तो समझा देता हूँ। ठीक, एक उदाहरण से समझिए, जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
0: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
1: बिल्कुल सही कहा, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है, ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
0: ओ मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
1: हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं, यही बीमारी को जाने के बाद काम आए। ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
0: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है?
1: हाँ, इसकी सबसे ज्यादा फायदा तो तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
0: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र का हो?
1: तो भी कोई चिंता की बात तो नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
0: सिहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
1: यही तो सबसे अहम बात है, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, इसमें पूरे परिवार की खासकर पुरुषों की उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
0: जरा विस्तार से बताइएगा।
1: जरूर, देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वह अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधाओं और सहयोग दे।
0: सही कहा आपने।
1: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा, आधी लड़ाई वह हारेगी। इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
0: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
1: बिल्कुल सही आरजे साहिबा, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
0: लेकिन सिहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
1: देखिए आरजे साहिबा, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आप सुन रही हैं ना, ये सच नहीं है, बल्कि क्या है, अफवाहें।
0: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक एक करके चलिए साफ साफ करके बता देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई तो यह है कि टीका लगवाने के बाद बस हल्का सा बुखार आता है या हाथ में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, क्योंकि

0: टीका लगवाने का, जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं ना, वैसे ये पहले सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे साहिबा, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सिहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने तो लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हटे जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसे कुछ रानी जैसी केस हो जाते हैं। उसी इलाके के पास एक गांव था, छोटा पुरवा, यही रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की उम्र की ही थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में बहुत अच्छी। जब गांव में एचपीवी टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन, अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा देना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज वहीं दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा, मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी, असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबसे इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया, उसने पूरे परिवार को हिला दिया, यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, अपनी आंखों में पछतावा सिर्फ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे से पूछा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। इलाज शुरू हुआ, लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर काटना, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता, दर्द, रानी की बीमारियों से सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झिंझोड़ दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा कभी मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में सिर्फ एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो, समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए?
0: इन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपनी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है, उसे ही दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं, सच्चाई फैलाएं।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एचपीवी क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाव,
0: बेटी का टीका परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाए।
1: तो चलिए जानने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचाया जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: में यानी कि HPV टीकाकरण लगवाना, यानी कि टीका लगवाना हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये आगे चलकर हमें किन किन बीमारियों से बचा सकता है, इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं। तो मैम से मैं जानना चाहूंगी, आप ही अपने बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, हेलो रीना जी मैम, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला महिला अस्पताल मुरादाबाद।
0: तो मैम आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HPV टीकाकरण है वो लगवाना क्यों जरूरी है।
1: HPV टीकाकरण बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और जो प्राइवेट पार्ट्स है जननांग में कुछ वार्ट्स भी होते हैं, कैंसर के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, इन सबसे बचाव करता है और इसका जो एफिकेसी है वो 90% तक है। अगर ये सही उम्र में लगवा लिए गए, सही डोज में, सही उम्र में लगवा लिए गए तो आगे चल के इससे बहुत बचाव हो सकता है। और इंडिया के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, इसका बर्डन हमारे देश में बहुत ज्यादा है।
0: तो मैम इसकी कोई एज लिमिट होती है?
1: वैक्सीनेशन के लिए 9 साल से 14 साल की उम्र की लड़कियां और लड़के,
0: मतलब लड़कों में भी?
1: बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये सर्विक्स का ही कैंसर नहीं कॉज करता है, ये प्राइवेट पार्ट्स में वार्ट्स, जेनिटल वार्ट्स और ओरोफेरिंजियल कैंसर्स हैं, जैसे मुंह का, गले का, बहुत तरीके के और भी कैंसर्स हैं जो कॉज करता है, और वो लड़कियों में भी हो सकते हैं और लड़कों में भी हो सकते हैं। ये सब चीजें बहुत आगे चल के एज में पता चलती हैं, लेकिन उसके होने की शुरुआत पहले से ही हो जाती है, इसलिए 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच में ये लगवा लिया जाए। जब तक बच्चे स्कूल गोइंग एज ग्रुप में है, स्कूल वाले में है, उनकी शादियां नहीं हुई है, अभी कोई किसी तरीके के फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हुए हैं, उसी उम्र में ये लगवा लिए जाए तो आगे चल के एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी से बचाव कर।
0: मैम क्या 14 साल के बाद भी हम लगवा सकते हैं?
1: 14 साल के बाद भी लगवाए जा सकते हैं, जितनी उम्र बढ़ जाती है उतना उसका एफिकेसी थोड़ा सा कम हो जाता है, जब फिजिकल कॉन्टेक्ट हो जाते हैं उसके बाद एफिकेसी थोड़ी कम होने लगती है, इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना जल्दी से जल्दी लगवा लें उतना ज्यादा बेटर इसका रहेगा इफेक्ट।
0: तो मैम हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि HPV टीका सही एज में लगवाना क्यों जरूरी है और इसका असर जो बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है उसका असर क्या होगा?
1: देखिए वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, 9 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती है, इसकी डोजेज होती है, कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, अभी भी आप देखिए गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अवेलेबल है, 4 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन है, 9 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन है जो उनसे बचाव करते हैं, जो ये सब बीमारियां कॉज करते हैं। अगर कुछ 2 डोज में लगवाई जाती है,
0: अच्छा 2 डोज,
1: हाँ, और अभी जो गवर्नमेंट लगा रही है वो 14 साल की सभी बच्चियों को लगा रही है, वो 8 डोज भी इफेक्टिव है, ये देखा गया है रिसर्च में, वो सिंगल डोज भी इफेक्टिव है, तो वैक्सीनेशन सेफ है। थोड़ा बहुत इंजेक्शन से जो किसी को दर्द हो गया ये चीजें हो सकती है, लेकिन नॉर्मली वैक्सीनेशन से बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप ये देखें कि आगे चल के कितनी बड़ी जानलेवा बीमारी से बच रहे हैं, अगर सही उम्र में लगवा लिया गया तो 90% चांस खत्म हो जाएगा वो बीमारी होने का।
0: मैम बहुत से घरों में भ्रांतियां भी है कि हम ये टीका नहीं लगवाएंगे, कभी लगवाने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो जाएगा, तो मैम कुछ ऐसा भी है क्या?
1: भ्रांतियां होती हैं लोगों को, जब भी कोई नई चीज लगती है लोग घबराते हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोविड आया था, उसके लिए भी बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया कि हमारे शरीर में कुछ असर ना हो जाए। देखिए देश इतना आगे बढ़ गया है और विज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी आगे बढ़ गई है, जितने भी वैक्सीन एडमिनिस्टर किए जाते हैं ये सब के ट्रायल्स होते हैं, बहुत फेजेस में ये वैक्सीन चेक की जाती है कि इनसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, फिर बहुत सारे 4-5 स्टेजेस, फेज 1-2 बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स होते हैं, वो जब सब फेजेस को वो वैक्सीन क्रॉस कर जाती है कि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तभी वो मार्केट में अवेलेबल होती है।
0: ओके,
1: और गवर्नमेंट, आप सोचिए गवर्नमेंट अगर कोई चीज लगा रही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना जांच पड़ताल के कोई चीज किसी को भी लगा दी जा रही है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, इससे बिल्कुल मत डरिए। हाँ कभी कभी कुछ ग्रुप्स में ये सोच होती है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, अभी नई चीजें उन लोगों को पता, जानकारी का माध्यम नहीं है, तो अपने करीबी आप गवर्नमेंट सेटअप्स में, प्राइवेट सेटअप्स में जहां भी जाना चाहें अपने करीबी डॉक्टर्स से मिलिए, उनसे बात करिए, पूछिए, ये बिल्कुल सेफ है और आपके बच्चों को आगे आने वाले बहुत बड़े काल से ये बचाएंगे। शरीर में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, किसी कोई सोचे कि हमारे कहीं ऐसा ना हो कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जहाँ नाम आ जाता है लोग वैसे भी घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के इनके बच्चे ना हो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है और आप ये समझे कि आप लोगों को बचाने के लिए लगाया जा रहा है।
0: मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सिर्फ एक छोटा सा टीका आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से हमें बचा सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्ट्रेन्स हैं, सिर्फ कैंसर नहीं बाकी भी जितने सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, सर्वाइकल कई लोग असल में इससे भी, सर्वाइकल गले की हड्डी को भी कहते हैं ना, तो कई लोग उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी के मुंह को भी कहा जाता है।
0: ओके,
1: तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है।
0: ओके, मुझे भी आज पता चला है।
1: अच्छा, तो ये बच्चे ये वो गर्दन की हड्डी जो सर्वाइकल लोगों को गर्दन में दर्द हो जाता है ये वो नहीं है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। और बाकी ओरोफेरिंजियल कैंसर होते हैं जो मुंह में, तो क्योंकि एक ही कैंसर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे लोगों को आगे चल के बहुत परेशानी होती है, इसलिए लगवाना चाहिए।
0: मैम गांव में यानी कि HPV टीके को लेकर अलग अलग भ्रांतियां होती है, जो जैसे कि मैंने आप सभी से पहले ही पूछा आपसे कि माता पिता चाहते कि ये टीके ना लगवाए, कभी ऐसा ना हो कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो जाए,
1: इसके लिए जो ANM दीदी लोग हैं, आशा लोग हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जाते भी हैं, उन लोगों से अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जाएं, उन लोगों से पूछे, जब वो लोग घर में आते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन लें, अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, आपके बच्चों को कोई बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगवाएंगे तो होगा ही होगा, लेकिन इसको प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब ये हो जाता है तब ये जिस स्टेज में पता चलता है, अगर ये हो गया किसी को तो ये जिस स्टेज में पता चलता है उस स्टेज में कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उस स्टेज में जब हमको पता चला तो कई बार तो सर्जरी संभव होती है, लेकिन उसके बाद भी रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, दवाइयां लगवाई जाती है, लेकिन कई बार ये इतनी आगे स्टेज में पहुंच चुका होता है, इसके सिम्टम्स बहुत देर से आते हैं। तो जब तक इंसान को पता चलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तब तक ये उसके शरीर में पूरा फैल चुका होता है। एक बार खून में आ गया या एक बार इसने आसपास के अंगों को उसमें ले लिया, जैसे हमारी आंतें हैं और यूरिनरी ब्लैडर है, आप बहुत सारी चीजें को, जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है वो अपने आसपास के सारे टिश्यूज को ले लेता है। एक स्टेज में कैंसर ऐसे भी स्टेज में आ सकता है कि जब आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप सर्जरी करके उसको निकाल नहीं सकते, सिर्फ आपको पता है कि ये मरीज जो है अब ये जाने वाला है, सिर्फ आप उसका दर्द कम करने के लिए उसको दवाई दे सकते हैं, लेकिन आप उसके जीवन को रोक नहीं पाएंगे। तो जब तक आपको ये, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो हम क्यों लगवाएं,
0: कभी तो, कभी ये भी लगता है उनको कि अभी तो यार बीमारी छोटा ही तो है, बाद में देख लेंगे।
1: लेकिन जब बाद में देख लेंगे वाली चीज है, उस स्टेज पे बहुत ज्यादा ये कैंसर बढ़ चुके होते हैं, तब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। और उसमें दर्द भी होता है जब ये बहुत बढ़ जाता है, बहुत तरीके के शरीर में चेंजेस आते हैं और परिवार का वो सदस्य फिर जीवित ही नहीं रह पाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप अभी इसकी जानकारी लें और सही समय पे टीकाकरण करवाएं, जिससे आपके बच्चे आगे के लिए सुरक्षित रहें।
0: मैम एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहें,
1: छोटा मैसेज, ये स्कूल्स में भी लगवाई गई है, स्कूल्स में भी मुझे पता चलता है कई बार कि माँ बाप जो है वो बच्चों को डर के मारे नहीं भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ने बीच में इनिशिएटिव लिया था स्कूल्स में भी लगाने का, तो कई माँ बाप डर के कारण बच्चों को नहीं भेज रहे थे, लेकिन आप लोग जाइए, सब जगह लगवाइए, गवर्नमेंट सेटअप्स में जाइए, 14 साल की बच्चियों को लग रहा है, सिंगल डोज में भी लग रहा है और भी इसके डोजेज हैं, आप लोग लगवाइए, पता करिए इस चीज के बारे में। बिना पता हुए अधूरी नॉलेज से अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में ना डालें, क्योंकि अभी बच्चे इस स्टेज में नहीं है, 9 से 14 साल के बच्चे बहुत ही कम उम्र के बच्चे ही हैं, उनको तो अभी दुनिया का पता नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है नहीं पता है, लेकिन आप लोग को पता है तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आने वाले इस खतरे से बचाएं, उनको बताएं, आपस में आप लोग डिस्कस करिए, कंफ्यूजन है तो लोगों से बात करिए, डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन सही तरीके से लीजिए, ये नहीं कि आपने जिससे पूछा है उसको भी नहीं पता है
0: जी।
1: अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाइए, आशा है, आंगनवाड़ी है, ANM है, वो लोग आपको सही सेंटर्स पे लेके जाएंगे, वहां से सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर ये डिसीजन दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जो इग्नोरेंस है, लापरवाही है, वो आगे चल के आपके बच्चे की जान को बहुत खतरे में डाल सकती है। तो आपके पास ये मौका है कि आप उस चीज से अपने बच्चों को बचाएं। सरकार भी इस चीज में पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि उस देश के नागरिक सुरक्षित रहें।
0: जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला सिंगल डोज, ठीक है, जो डबल डोज अगर लगवाते हैं तो गैप कितना होना चाहिए?
1: डबल डोज के भी अलग वैक्सीन का अलग टाइमिंग है, वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अलग स्ट्रेन की है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे।
0: तो चलिए श्रोताओं,
1: अभी जो सरकार दे रही है वो सिंगल डोज में भी बहुत इफेक्टिव मानी गई है, इसीलिए वो सिंगल डोज में भी लाया गया, क्योंकि कई बार लोग सेकेंड डोज के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप लगवाइए इसको।
0: अच्छा लगा।
1: थैंक यू रीना जी।
0: और मैम की आवाज भैया जितनी अच्छी है ना, वो इतनी बहुत प्यारी
1: आवाज आपकी भी बहुत अच्छी है, और आपका रेडियो हम लोग सब सुनते हैं, और आपकी आवाज जब लोगों के पास, श्रोताओं के पास पहुंचेगी, तो मुझे लगता है अगर उनमें हम लोगों के कुछ बताने से या आप लोगों के कुछ इनिशिएटिव लेने से हमारे देश के लोगों में कुछ पॉजिटिव चीज आए, लोग अपना सेहत इंप्रूव कर पाए, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आप लोगों के आगे के एंडेवर्स के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो भाई गलत धारणाएं थी उनको आज क्लियर हो गई होंगी कि भैया HPV टीकाकरण है ना, वो लगवाना बहुत जरूरी है।
1: बाय मैम।
0: बाय बाय।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य

0: केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा न ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है। सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूँ अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहाँ और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, एएनएम या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ न आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: यूविन का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, ओटीपी ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुँच की असमानताएं भी होती है, इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है, तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षा करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी एएनएम बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के लिए।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे, पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निःशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी, पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें?
1: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर मंत्रालय वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत्र कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा समझ नहीं तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते हैं।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा। किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगी।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली, ये उपदेश नहीं अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे, वह हमेशा कहती हैं हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत पुरुषत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ करी, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो यूविन पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है, जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है, इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है, क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया, नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं ठहर कर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है। सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद हैं, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी बातें करती हैं, और बहुत ही अल्टीमेट सी वाइब आ रही है मुझे इनके साथ बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम, आपको स्टेशन आके कैसा लगा? हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं, नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much. क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली। और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने जमाने
0: दाई का। जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है। तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है। तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं। बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल जल्दी है बट उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते
1: हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर

0: फैमिली का ध्यान रखें। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे। आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ। अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
1: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच। आजकल के लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जैसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
0: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
1: ठीक है
0: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो बी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए।
1: करेक्ट करेक्ट,
0: गवर्नमेंट इज रनिंग कि
1: एब्सोल्युटली
0: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे। ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3,000 से 4,000 रुपए की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट।
1: फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल,
0: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डासिल, ये सब वैक्सीन होती हैं। डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे, और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर हैं तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन। ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं, और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स, आप प्लीज इसे लगवाएं। दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा ले, प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
1: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं जो एचपीवी वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है, पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है। आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
0: आई वुड से कि प्लीज लगवाइए। ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही, कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए,
1: Absolutely.
0: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
1: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
0: और पहले जब पैसे दे के लगाई जा रही थी तो लोग

0: लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है. नो, इट इज नॉट अ स्कैम. इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को. प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें.
1: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं. ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें. मैम थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में. अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग. उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, पैड्स मत यूज करो, ये मत करो.
0: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है. आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है. ठीक है, अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है. इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है. एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल. क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना. जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच. तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन. अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी.
1: Correct.
0: मंदिर ऊपर हुआ करते थे.
1: Right.
0: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था. तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं. दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था. इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है. हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना. सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे. द थिंग इज जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू. आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो. ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माय मदर. ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की. ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माय होम आई फॉलो माय रिचुअल्स. तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते. थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी. जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता. तो थिंग्स आर चेंजिंग. व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग, व्हाई कांट वी अपडेट ना.
1: करेक्ट. अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं.
0: एग्जैक्टली.
1: तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं.
0: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज. आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज. ठीक है, अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज. तो ये सब बीमारियां हैं. अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास 3 पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
1: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं.
2: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: स्वागत अभिनंदन, नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। श्रोताओं, लेकर हाजिर हो गया हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, एक नई शुरुआत और एक नया सफर। जी हाँ श्रोताओं, एक और नए टॉपिक के साथ जुड़ गया हूँ आपके साथ इसी प्रोग्राम में, जहाँ पर हम ढेर सारी बातचीत करते हैं और आपको तमाम सारी जानकारियां भी देते हैं। आज के जमाने की सोच बदलना बहुत जरूरी है श्रोताओं। वेल, आज सोच बदलो में हमारा टॉपिक क्या होगा, आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं? देखिए, अगर इस विषय पर आपने अपनी सोच को नहीं बदला तो ये चीजें आपका फ्यूचर बदल सकती है श्रोताओं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज का जमाना ऑनलाइन का है, नौकरियां भी ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन इसी के साथ बढ़ रहा है एक छोटा सा ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। जी हाँ, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारा जो विषय है वो है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे इसके शिकार होते हैं लोग, और अगर जाने जाने में आप इसका शिकार हुए हैं तो कैसे आप इस चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, इस ऑनलाइन जॉब फ्रॉड की शिकायत आप कहां दर्ज कर सकते हैं, तमाम सारी जानकारियां आज आपको मिलेंगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो अभी तो सिर्फ सफर शुरू हुआ है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। चलिए श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, यानी कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। छोटा सा मतलब छोटा सा। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद जल्द ही आपसे पुनः मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जिसका नाम है सोच बदलो प्रोग्राम, जो आप सुनते हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन यानी कि अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। तो चलिए श्रोताओं, मिलते हैं जरा सी देर में एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना और इस गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम सोच बदलो में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में ऑनलाइन जॉब फ्रॉड जो हो जाता है अक्सर लोगों के साथ। इवन एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक छोटा सा वाक्य मैं जरूर साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले कल की बात बताता हूँ। कल ही एक मुरादाबाद के एक लड़के का मुझे मैसेज आया। उसने मुझे व्हाट्सएप पर मतलब जो है मैसेज किया। उसने लिखा, वर्क फ्रॉम होम है, आप डेली 2000 रुपए कमा सकते हो। सोचिए मुरादाबाद में भी ये चीज लोग कर रहे हैं, आप 2000 रुपए कमा सकते हो। उसने मुझे मतलब पूरी तरीके से ट्रस्ट दिलाया और धीरे उसने मेरे से एक रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी बोला। मतलब होता है ना कि जब आपको लोग कॉल करते हैं तो आपको ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए दिल्ली, NCR या मुंबई जैसे शहरों में तो ये चीज बड़ी कॉमन है, लेकिन अगर मुरादाबाद में ऐसी चीज होती है तो यार थोड़ा सा मतलब दुख होता है कि अपने शहर में भी इस तरह की चीजें हो रही है। जी हाँ, खैर मैंने तो भाई साहब उसकी बातों में आके कोई भी ऑनलाइन फीस नहीं दी और ना ही मैंने कोई रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि मुझे पता था ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडबाजी है। क्योंकि देखिए, अगर कहीं पे भी कोई नौकरी होती है या जॉब के लिए आपको कॉल आता है तो एकदम से आपसे कोई फीस या पैसे नहीं मांगता। माना कि कुछ कंपनियों की पॉलिसी होती है, लेकिन आप तो खुद समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम तरह की जानकारियां आपके पास सुबह से शाम तक आपके फोन पर आती हैं। अब ऐसे में अगर आप ऑनलाइन जॉब इस फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं तो देखिए ये तो फिर बड़ी बेवकूफी हम कह सकते हैं हो जाएगी, है ना, आपके साथ हमारे साथ। तो हमें क्या करना है ना श्रोताओं, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये ऑनलाइन वाले लोग आपको कॉल करते हैं ना, जॉब को ऑफर देते हैं, आप जाने अनजाने में आके पे भी कर देते हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी दे देते हो कि शायद हमारी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि देखिए, जॉब की तो हर किसी को जरूरत है, हर दूसरे व्यक्ति को काम की जरूरत है, और एक सही काम अगर उसे मिल जाए, उसके सपनों का काम मिल जाए, तो फिर उससे बेहतर क्या ही हो सकता है उसके लिए श्रोताओं। तो बस मैं वही कहना चाहता हूं कि आप इमोशनली होकर, आप ज्यादा ख्याली फुलाव ना पकाकर पहले उसकी डिटेल्स निकालें, उसके बारे में चेकआउट करें। इंटरनेट पर सारी चीजें आज की डेट में उपलब्ध हैं, अच्छे से पहले जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही कोई शुल्क या कोई ऑनलाइन फीस आप जमा कराएं। अदरवाइज कोई भी पैसा अपनी मेहनत

0: की कमाई का इधर उधर आप वेस्ट ना करें। इसी श्रृंखला में एक बड़ी प्यारी सी दोस्त है हमारी, उनको भी हम जोड़ेंगे। उनके साथ भी एक वाक्य रहा है ऑनलाइन फ्रॉड जॉब का, उनसे हम जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए, एक छोटा सा अंतराल का समय हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: एक बार फिर से इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, सोच आप बदलोगे तो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। वो कहते हैं ना, जब आपकी सोच बदलती है ना तो पूरी दुनिया आपकी बदल जाती है। और आज की जिंदगी को, आज की ये जो जनरेशन है, जो जेंजी है, उसका सोच का बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ना इतनी इंडिपेंडेंसी हमने बना ली है, हम हर चीज ऑनलाइन ही चाहते हैं। चाहे हमारा खान पान हो, हमारी शॉपिंग हो, हमारा मतलब चाहे जॉब का हो, कुछ भी व्हाटएवर, हर चीज में हमें लगता है कि यार सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, सब कुछ ऑनलाइन। इस ऑनलाइन के चक्कर में ना जो स्कैमर होते हैं, जो फ्रॉडबाजी करने वाले, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, उन्हें मौके का फायदा मिल जाता है। वो ये मौके का फायदा उठा के आप ही का बेवकूफ बना देते हैं। और कई बारी आप बेवकूफ बन जाते हैं, आपने इवन हम सब इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं, इसी बीच मैंने कहा था मैं आपको एक नई आवाज से रूबरू कराने वाला हूं, तो एक ऐसी लड़की जिसके साथ ये वाक्य हुआ था, आइए जरा सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ ऑनलाइन फ्रॉड और वो कैसे फिर इससे बाहर निकल पाए, जरा जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को, क्या नाम है आपका?
4: नमस्कार, मैं कुमकुम बोल रही हूँ मुरादाबाद से, मैं काशीराम की रहने वाली हूँ।
0: जी कुमकुम, आप मुझे बता रही थी कि आपके साथ भी कुछ ऑनलाइन धोखाधड़ी होते होते बची, शायद आप भी शिकार होने वाली थी इस चीज की, तो कैसे मतलब बताएं थोड़ा।
4: जी, जब ये स्टडी पूरी हुई तो मैं भी ऑनलाइन जॉब्स देख रही थी कि हाँ, जब घर बैठे मैं भी कुछ कर सकूं, और हर बच्चा चाहता ही है कि कुछ कर सके।
0: बिल्कुल,
4: तो इसलिए हम जॉब देख रहे थे ऑनलाइन, मैं और मेरे घर सभी बच्चे, तो सडनली एक कॉल आता है, एक कॉल आता है जैसे कि आप कहते हैं
0: के लिए, आप बोल रहे हो
4: जी ऑनलाइन जॉब के लिए, के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। उसमें इंटरव्यू वगैरह के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे हमें, उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर रहेगी और आपका टाइमिंग खाली दिन में रहेगा 2 से 3 आवर्स। तो मैं इसको सोच के बहुत एक्साइटेड थी, पूरा दिन बहुत एक्साइटेड रही। पर नेक्स्ट डे उनकी कॉल आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू पहले 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे,
0: मतलब आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
4: हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको 5,000 रुपीज देने होंगे, जिसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं भी ये सोच रही थी कि 30,000 मिलेंगे तो 5,000 में क्या चला जाएगा,
0: क्या चला जाएगा। हर आदमी सोचता है चलो ठीक है, जॉब तो मिल जाएगी।
4: हाँ, जॉब भी मिल जाएगी, कम टाइमिंग।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
4: उस हिसाब से ही मैं ये सोच रही थी कि अच्छा होगा, ये बहुत रहेगा। निखिल, मेरे भैया ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, तेरी भाभी के पास भी कॉल आई थी ऐसे।
0: ओके,
4: पहले उन्होंने 5,000 लिया, उसके बाद 10,000 लिए।
0: अरे बाप रे, अच्छा।
4: उसके बाद जाके पता चला कि ये फेक कॉल्स हैं, इस तरह से नहीं होता ऑनलाइन। उनकी पहले पूरी जानकारी निकालनी चाहिए कि इंटरनेट में ये क्या चीज है, क्या नहीं है।
0: तो आपके साथ मतलब ये फ्रॉड होते होते
4: बच गया। मैंने
0: पेमेंट दे देती, अगर आपके भाई आपको नहीं बताते तो आप भी फंस जाती।
4: यस सर।
0: जी, तो श्रोताओं यही हमारा भी उद्देश्य है आपको बताने का, समझाने का। देखिए कुमकुम तो बच गई है ना, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऑनलाइन फ्रॉड जॉब से बचें, इन स्कैमर से बचें और अपनी सोच को बदलें। जब आपकी सोच बदलेगी तो आपके जो आसपास की चीजें हैं ना, वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। और सबसे जरूरी चीज ये है बॉस, सोच बदलना सिर्फ इसलिए भी नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो, सोच बदलना इसलिए भी जरूरी है। जब आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोच बुलंद होगी, तो आप ना बहुत सारी चीजों से बच पाएंगे और स्मार्टली काम कर पाएंगे। श्रोताओं, आज हम इस प्रोग्राम प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से कैसे बचे। कुमकुम ने अपनी स्टोरी शेयर करी, आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमें हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एफ एम मुरादाबाद 89.6 के नाम से। वहां पर आप हमें डीएम करके बता सकते हैं क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। अगर हुआ

0: दोस्तों एक और बहुत ही मधुर मधुर गीत आपने सुना और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आ रहा होगा जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ, इसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, जो है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वाला एक छोटा सा प्रोग्राम और इसी में हम शामिल करेंगे, मतलब एक छोटी सी जानकारी से भरा ये इन्फॉर्मेटिव वाला छोटा सा सेशन, जरा इसको सुनते हैं, ये भी आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है कि हम स्कूलिंग और कॉलेज करने के बाद सबसे पहले तलाश करते हैं नौकरी, और जब हम नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो शायद कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, वो होती है जॉब से रिलेटेड फ्रॉड। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर। आज

0: का विषय है फर्जी नौकरी का ऑफर, यानी नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी, नौकरी की तलाश और ठगों का जाल। चलिए आखिर वो कैसे जाल बिछाते हैं आपको बताते हैं। श्रोताओं, आज के समय में युवा नौकरी की तलाश में हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र मौके ढूंढ रहे हैं, कई लोग बेहतर नौकरी की चाह में ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसी मजबूरी और उम्मीद का फायदा उठाकर साइबर ठग फर्जी नौकरी के ऑफर देते हैं। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ। राहुल, मुझे ईमेल आया है, बिना इंटरव्यू के वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रहे हैं और सैलरी 40,000 रूपए।
1: अरे इतनी जल्दी नौकरी, कुछ पूछताछ की?
0: कंपनी बड़ी लग रही है, बस 2,000 रूपए रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं। लो फीस भर दी, ना तो कॉल आ रहा है ना ईमेल का जवाब, वेबसाइट भी नहीं खुल रही। राहुल समझ कि वह फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो चुकी है। फर्जी नौकरी का ऑफर क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फर्जी नौकरी के ऑफर में ठग खुद को एचआर या रिक्रूटर बताते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से संपर्क करते हैं, ज्यादा सैलरी और आसान काम का लालच देते हैं, फिर वे मांगते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट की कॉपी, और बाद में गायब हो जाते हैं। फर्जी नौकरी के लाल संकेत, अगर नौकरी के ऑफर में ये बातें हो तो तुरंत सतर्क हो जाइए। बिना इंटरव्यू नौकरी, बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत कम काम, नौकरी से पहले पैसे मांगना, अनजान ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, जल्दी ज्वाइन करने का दबाव। याद रखिए, असली कंपनियां नौकरी के लिए पैसे नहीं मांगती हैं। सुरक्षित नौकरी खोजने के चलिए मैं आप सभी को उपाय बताता हूँ। नौकरी के लिए आवेदन करते समय केवल भरोसेमंद जॉब पोर्टल का इस्तेमाल करें, कंपनी की वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल देखें, रिक्रूटर की जानकारी वेरीफाई करें, किसी अनजान लिंक या दस्तावेज अपलोड ना करें, आधार, पैन, बैंक डिटेल साझा करने से बचें। छात्र और माता पिता के लिए मैं खास संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, फर्जी नौकरी के ऑफर के शिकार अक्सर छात्र, नए ग्रेजुएट और बेरोजगार युवा होते हैं, इसलिए माता पिता बच्चों से बात करें, हर ऑफर को सच न माने, शक हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह लें। अगर आप ठगी का शिकार हो जाते हैं तो, अगर आप फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो जाएं, तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए संपर्क करें www.staysafeonline.com पर। सुरक्षित रहने के 5 नियम, नौकरी के लिए पैसे मत दीजिए, बिना इंटरव्यू और पर भरोसा ना करें, दस्तावेज सोच समझकर साझा करें, जल्दबाजी में फैसला ना लें, जानकारी ही सुरक्षा है। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि नौकरी पाना मेहनत से होता है, लेकिन एक गलत भरोसा सब कुछ बिगाड़ सकता है। सपने देखिए लेकिन आंखें खुली रखिए, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो सुबह से लेकर शाम तक करता है आपको एंटरटेन और साथ में देता है काम की बात।

तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो आज जानकारी सुनी हमारे इस प्रोग्राम में, सोच बदलो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है, ये आपको जरूर कहीं ना कहीं काम आएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ऐसी जानकारियों के लिए बस आप ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। जी हाँ श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। आज हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन महत्वपूर्ण जानकारियों को, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखा होगा। ये छोटे छोटे बिंदु, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमें कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का शिकार होने से बचा सकती हैं। अगर अगली बार आपको कोई कॉल आए कि आपको 30,000 रुपए देंगे, लेकिन उससे पहले

रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नौकरी जरूर मिलेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, पर गलत रास्ते से बच जाओगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सोच बदलिए, हर चीज ऑनलाइन नहीं, कुछ चीजें ऑफलाइन भी करनी है। अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाजत, अलविदा। फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, कुछ और म्यूजिकल गीत के बाद आपको कुछ और नए प्रोग्राम भी सुनने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
2: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
1: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
2: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
4: पहले कनेक्शन तय हो जाए।

0: Kopsi Sabalenka's second-round clash is against Russia's Polina Yatsenko, as she looks to become only the third woman after Serena Williams and Chris Evert to win three straight U.S. Opens. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses 26th SCO summit, calls for an end to double standards on terrorism. Indian Railways approves 170 crore rupees for coverage 4.0 on the remaining 712 kilometer stretch of Moradabad Division Northern Railway. In Nepal, flood death toll reaches 987 following widespread devastation. Akashvani's FM Gold commemorates its silver jubilee today. IMD issues red alert for Chhattisgarh. Extremely heavy rainfall expected over parts of Jharkhand, Odisha and Northeast India till tomorrow. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्न

0: संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फोरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक

0: 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
1: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में FM गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। FM गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई FM गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूदा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
5: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सवालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सवालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
8: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
9: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
8: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
10: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आप ही अपने आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
11: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाए। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
10: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वे हैं आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
11: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों, महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बोतल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: सर में भी दर्द होने लगता है रीना।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना, आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। सुबह मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: सो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या ना पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, ये आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं।
1: अरे वाह।
0: और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह,
0: खीर बहुत तो? पसंद है मेरी मम्मी को सच में।
1: हाँ,
0: हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है,
1: क्योंकि
0: उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारे जो घर की वुमेन होती है ना, वुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से के रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। सो अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं, बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम आप सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मौसमी फल खाते रहिए। खरबूज, तरबूज, बहुत से ऐसे फल है कि

0: भी।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक नेहा कक्कड़ और साथ में जस्सी गिल की बहुत ही शानदार आवाज। दोस्तों अभी समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:07 राइट नाउ। दोपहर की इस सुहानी घड़ी में आप और मेरे मिलने का फिर से समय आ गया है एंड कुछ बातें होंगी दिल से, कुछ किस्से होंगे आपके और हमारे और कुछ गाने जो शायद आपके दिल के बात कह जाए, क्योंकि ये सिर्फ फरमाइशों का शो नहीं, ये वो खूबसूरत जगह है जहां आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपके एहसास सबको मिलती है एक प्यारी सी धुन। तो तैयार हो जाइए अपनी फरमाइशों के लिए। जी हाँ, अगर आप भी अपनी पसंद का कोई भी ट्रैक सुनना चाहते हैं, कोई भी सॉन्ग सुनना चाहते हैं ना, तो जल्दी से हमें कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी खुशी। और बाहर का मौसम भी बड़ा ही सुहाना सा है, तो चलिए कर लेते हैं अपने कॉलर से बात। कौन हमारे साथ कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं? हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड आफ्टरनून।
0: वेरी गुड आफ्टरनून सर, क्या नाम है आपका?
1: मैम सेट हूँ, आपके से सामने सर बात कर रहे
0: हैं। जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: मैं हमारे हाल चाल बढ़िया, बस बदल के मौसम की वजह से थोड़ी तबीयत खराब सी हो रही है।
0: अपना अच्छे से ख्याल रखिए सर। हाँ। और ज्यादा भीगिए मत, बाहर जाएंगे तो छाता साथ में लेकर जाइएगा, ठीक है?
1: वो तो बिना जरूरत निकलती है, एफएम मेरा दवा सुनते हैं अंदर बैठे हुए।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखिएगा। बताइए, आज आपने काफी समय की बात कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम हेलो बराबर मूवी का गाना, चांदी की डाल पर सोने की मोर।
0: अरे वाह, बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है। अभी कैसा मौसम है आपकी साइड से?
1: मैम बादल से हो रहे हैं।
0: अच्छा बादल हो रहे हैं।
1: हाँ, बारिश कल हुई थी।
0: अच्छा तो ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: ओके मैम, थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं शानदार सा ट्रैक एंड आप भी मुझे जल्दी से कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए और दोपहर का एक खूबसूरत सा लम्हा, खूबसूरत सा समय जब आप फुर्सत में आराम से रेडियो सुनते हैं, तो सुनिएगा ये शानदार गाना।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था सलमान खान और अलका याग्निक जी ने। म्यूजिक डायरेक्टर थे हिमेश रेशमिया जी। एंड बहुत ही प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी हेलो ब्रदर से। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश
1: जी। मैम जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, क्या नाम है आपका?
1: शिवालोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ, आपका श्रोता नियमित।
0: हाँ जी बताइए शिवा, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? आपका घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी सभी बहुत ही अच्छे हैं शिवा, आप बताइएगा आपके परे फैमिली में सब कैसे हैं और मौसम कैसे है आपके साइड एमपी का?
1: जी अभी मौसम तो ऐसा है मैम, पानी कभी भी गिर सकता है, बादल छाए हुए हैं।
0: अच्छा बादल हो रहे हैं, ओके। तो बताइएगा शिवा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम देखिए, पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और सभी सुनने वालों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
0: ओके, एडवांस में आप शुभकामनाएं दे रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की, राइट? सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 तारीख को जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने वाले हैं सभी, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा ये पर्व।
1: जी मैम, तो एक इसी उपलक्ष्य में गाना रहेगा
0: जी, बताइएगा।
1: गाने के बोले मच गए शोर सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका समल तेरी नगरी रे।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, फ्रॉम द मूवी खुदार से है ना ये?
1: जी
0: जी, ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर मैं आती हूँ वापस इस प्यारे सी गाने की उस पर। आप ही मुझे जल्दी से कॉल लगाइएगा।

शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी

सारी नगरी रे, सारी नगरी रे।

0: एक ऐसी जगह जहाँ हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहाँ बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक किशोर कुमार साथ में लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही कान्हा की वो प्यारी सी शरारतें याद आ गई ने। और अब तो जन्माष्टमी भी आने वाली है 4 सितंबर को, मतलब गलियों में कान्हा के नाम की गूंज, मंदिरों में सजावटें, मटके और झांकियों की तैयारी और हर तरफ बस एक ही रंग, कान्हा के प्रेम का रंग। तो क्यों ना आज से ही शुरू कर दें उस नटखट नंदलाल की स्वागत की तैयारी। और बहुत ज्यादा यू नो वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में भी यू नो ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड मथुरा में भी बहुत ही यू नो अच्छे से मंदिर भी सज चुके हैं और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु उस दिन दर्शन करने के लिए आते हैं, कान्हा का जन्मोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। हर तरफ कान्हा की यू नो जय जयकार गूंज रही है। बहुत ही खूबसूरत सा वातावरण है। मार्केट में मैं गई तो मैंने जितने भी शॉप पर मेरी नजरें गई वहां पर कान्हा के खूबसूरत वस्त्र, खूबसूरत झूले, मतलब इतना प्यारा लग रहा था मार्केट भी देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत। और मैं इतना कन्फ्यूज हो गई हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन सा ड्रेस कान्हा के लिए लूँ। बट फाइनली फिर डिसाइड किया कि चलो ये वाला ड्रेस मेरे को पसंद आया है। और अभी बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, अभी अधूरी रह गई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। और मुझे पता है श्रोताओं कि आपके घरों में भी तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम ताहिर है।
0: जी ताहिर जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे?
0: मैं भी ठीक हूँ सर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं बताइएगा?
1: मैं मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ, करूला से।
0: ओके, बताइएगा सर, कैसे हालचाल है आपके परिवार में सब लोगों की?
1: सब बहुत बढ़िया है, आप सब लोगों की दुआएं, सारे दोस्तों की।
0: जी, सबकी दुआएं बिल्कुल सभी के लिए रहती हैं। और जीवन तभी खूबसूरत होता है जब हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो बताइएगा सर, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: मैं सुनना चाहता हूँ बोल बम जान वाला गाना, सुना दीजिए।
0: जानी दुश्मन का
1: जी,
0: फ्रॉम द मूवी जानी दुश्मन।
1: क्या कह रहा
0: है? अरे
1: एक मिनट, किशोर कुमार की आवाज सुनो।
0: ठीक है सर, मैं सुनवा देती हूँ आपको। एंड सर सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा ट्रैक किशोर कुमार जी और साथ में अनुराधा पौडवाल जी की आवाज है, फ्रॉम द मूवी जानी दुश्मन जो 1979 में आई थी। तो चलिए श्रोताओं ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका कॉल भी लग जाएगा। oh, oh,

0: तो दोस्तों ये सुना आपने खूबसूरत सा ट्रैक नीतू सिंह और साथ में जितेंद्र जी पर फिल्माया गया खूबसूरत सा ट्रैक। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: नमस्ते, मेरा नाम लबीना है।
0: नमस्ते लबीना, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ लबीना, बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं ग्राम धनिष्ठा से पागबरा के पास से बात कर रही हूँ।
0: ओके, बताइएगा क्या करती हैं आप लबीना?
1: मैम अभी तो स्टडी कर रही हूँ।
0: अभी स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं आप?
1: सेवेंथ क्लास में।
0: ओके, तो आगे क्या ड्रीम है, क्या करना चाहते हैं आप, कुछ डिसाइड किया है आपने?
1: जी मैम।
0: तो क्या बनना चाहते हैं आप, क्या ड्रीम है आपका?
1: मैं लॉयर बनना चाहती हूँ।
0: लॉयर बनना चाहते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। मोस्ट वेलकम। एंड हम तो आपके लिए बस यही शुभकामनाएं देंगे आपको कि आप खूब पढ़ो और जो आपका सपना है लॉयर बनने का वो आप कंप्लीट करो, उसको अचीव करो। या बताइएगा क्या सुनना चाहते हो आज, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम मेरी फरमाइश है कि मुझे सॉन्ग मैड हंटर मूवी का दिल से कसम खाते हैं।
0: ओके, तो ये ट्रैक हम आपको सुनवा देते हैं, ठीक है?
1: थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम लबीना, अच्छे से स्टडी करो, ठीक है? टेक केयर। तो चलिए लबीना की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। दोस्तों आप भी मुझे जल्दी से कॉल लगाइए, आप सुनना चाहते हैं अगर अपना पसंद का कोई भी ट्रैक, तो बिना किसी देरी के आप कॉल लगाइए। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896, ये वही नंबर है जो खुशी से बात कराएगा, ठीक है? तो इसे भूल मत जाना, याद रखो और ये प्यारा सा गाना सुनो।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी खुशी। और ये खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना खान साहब साथ में शाश्वत सचदेवा की बहुत ही शानदार आवाज फ्रॉम द मूवी धुरंधर से। एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार आपको भी सर, अपना शुभ नाम बताएगा।
1: जिला रामपुर तहसील सुहार से जावेद अंसारी बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताएगा, कैसे हैं आप सब।
1: बस मैम बढ़िया है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं, मौसम कैसा आपकी तरफ।
0: जी मौसम बहुत ही खूबसूरत है हमारी साइड एंड हम भी ठीक हैं। आप बताएगा आपके फैमिली में सब लोग कैसे हैं।
1: बस सब बढ़िया फैमिली में भी, हल्की हल्की बारिश हो रही है, काले काले बादल छाए पड़े हैं ऊपर।
0: हाँ जी हाँ जी, सेम पिंच इधर भी ऐसा ही है। बताइएगा सर, आज क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: शरीफ तुमका सुना देना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, मुलाकात जरूरी है सनम।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना आपको।
1: ओके धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए अभी फर्स्ट सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम से। एंड हम अभी बस आएंगे इस पहले से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, आप भी जल्दी से कॉल लगाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896 8968 93 78 96 8। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप कॉल लगा सकते हैं और अपने पसंद का कोई भी ट्रैक सुन सकते हैं।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुमसे, अमीन चावरी और साथ में फरीद सावरी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत ट्रैक। एंड लिरिक्स थे समीर जी के, और समीर जी के जितने भी गीत लिखे हुए हैं ना कमाल के हैं। जब भी सुनते हैं तो एक अलग ही जोन में हम पहुंच जाते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
6: मैडम मैं गांव लिहे दिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ।
5: दिनेश चौहान जी बात कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं आप सब।
6: बड़े हैं मैडम, आप कैसे हैं।
5: मैं भी ठीक हूँ सर, आप बताइएगा कैसा मौसम है महाराष्ट्र का।
6: मौसम तो अभी मतलब ऐसा है कि बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम हो रहा है मैडम। 3-4 दिनों से बादल हो रहा है।
5: अच्छा बादल हो रहे हैं, बारिश नहीं आ रही वहाँ पर।
6: बारिश नहीं हो रही है, मतलब बहुत दिन हो गया, 2-3 महीना हो गया बारिश नहीं हो रही, परेशान हो गए हमारे तरफ लोग सब।
5: अच्छा आप बारिश का इंतजार कर रहे हैं।
6: बारिश का इंतजार कर रहे हैं, फसल को पानी की जरूरत है मैडम।
5: अभी कौन सी फसल लगाई हुई है आप लोगों ने।
6: हम कपास ही लगाए मैडम।
5: अच्छा ओनली कपास लगाई है।
6: हाँ ओनली कपास लगाए है, बाकी लोग कोई मक्का लगाता है, कोई ज्वारी लगाते हैं, बाजरी लगाते हैं, अपने अपने मन पसंद।
5: जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कपास की जो खेती होती है वो कितने महीने में कंप्लीट हो जाती है।
6: उसको 4 महीना लगता है मैडम।
5: अच्छा 4 मंथ में वो कंप्लीट हो जाती है ना।
6: हाँ मैडम।
5: ओके तो पानी की मतलब कितनी बार आवश्यकता होती है उसके लिए।
6: पानी उसको भरपूर चाहिए मैडम, मान के चलो जब तक वो रोई कपास तैयार नहीं होता ना जब तक पानी लगता है उसको।
5: ओके तो हम प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से आपके उधर भी बारिश हो जाए।
6: हाँ सही मैडम, बारिश नहीं हो रही तो हम कुएं का पानी दे रहे हैं उसको फसल को।
5: हाँ लेकिन बारिश की पानी की अलग ही बात होती है, हम चाहे वैसे कितना भी पानी दे लें लेकिन जब ईश्वर जो वर्षा करते हैं उससे तो फसल अलग ही हो जाती है खूबसूरत।
6: सही बात है। और उसमें दूसरी एक और बात है मैडम, हमारे तरफ लोग ऐसे बीमार पड़ रहे बहुत ज्यादा कि ये मौसम जो बादल होने का कारण ऐसा है ना, मतलब किसी को बुखार आ रहा है, किसी को फीवर हो रहा है, जैसा हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, या तो पानी में कुछ खराबी आ रहा है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग ऐसे बीमार पड़ रहे कि कुछ होगा।
5: मानसून है ना सर, मैं आपसे कहना चाहूंगी दिनेश जी, जो आप कह रहे हैं ना कि पानी की वजह से कहीं कोई इश्यू तो नहीं है, तो उस पानी को ना पीने का जो पानी होता है उसको पहले ही बॉइल करके रखने, उबाल के ठंडा करके उसके बाद ही उस पानी का इस्तेमाल करें पिए, तो फिर इतने इश्यूज नहीं होंगे। एंड साफ सफाई का ख्याल रखें।
6: साफ सफाई, और दूसरी बात वो जो पानी के अंदर वो पाउडर होता है ना, टिश्यू पाउडर बोला जाता है, वो डालकर पिए तो और अच्छी बात है मैडम।
5: हाँ जी तो बताइएगा दिनेश जी आप कौन से गीत सुनना चाहेंगे आज।
6: गीत है मैडम, फिल्म का नाम है आओ प्यार करो
5: जी,
6: और उसमें गाना है दो दिल जब मिलते हैं ऐसा गाने के बोले।
5: अच्छा
6: तो ये गाना मैं सुनना चाहूंगा, और इस गाने में आपको भी डेडिकेशन है।
5: ओके थैंक यू।
6: उमेश चौहान, आदित्य चौहान, मनीषा चौहान, जितने भी रेडियो मुरादाबाद FM सुन रहे सबके लिए।
5: ठीक है थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए, सुनवाते हैं आपके पसंद के प्यारा सा गीत आपको। इंजॉय कीजिएगा। नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक कुमार सानू और साथ में साधना सरगम जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, ये खूबसूरत गाना। मैं बस वापस आती हूँ इस प्यारे सी गाने के इस पार। आप भी जल्दी से कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। एवरीवन, वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 4:01। हमारे अगले कॉलर भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम जी, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: चंद्र बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप?
1: मैम जी एक बार बताइए, मैंने पिछले हफ्ते फोन लगाई थी आपको।
0: जी क्या कहा आपने?
1: पिछले हफ्ते फोन लगाई थी बुधवार को।
0: हाँ जी,
1: आप बोल रहे थे कि आपने पहले कॉल करके गाना सुन लिया, मैंने तो गाना सुना ही नहीं था।
0: नहीं सर, एक्चुअली ना वीक में एक ही बार कॉल लगाते हैं और आपने कॉल लगाया होगा तभी हमने ऐसे कहा है, बट ऐसे हम हर किसी को नहीं बोलते हैं।
1: सुनो, मैंने मोबाइल में कभी पैसे डलवाए थे, मैंने पैसे नहीं थे मोबाइल के अंदर।
0: ओके, क्योंकि सर हमारे फोन में ना शो कर जाता है, अगर कॉल किसी का भी आता है तो सारी डिटेल्स उसमें शो कर जाती है, इसीलिए हमने कहा होगा। बट आज आपका कॉल लगा है तो बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है सर, सुनवा देते हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं प्यारा सा गीत। और आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई भी गाना तो हमें जल्दी से कॉल लगाइएगा आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और दोस्तों रूल्स तो आपको पता ही है ना कि वीक में सिर्फ एक ही बार कॉल करना है, ठीक है? नो चीटिंग।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक। अब बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: आपको भी आदाब, क्या नाम है आपका?
1: मैम कहते हैं कि जिससे मुसाफिर को उठाना काम है तेरा, जिससे मुसाफिर को उठाना काम है तेरा, रोते रोते बस व्यक्ति को हंसाना काम है मेरा, और चांद सितारे करते हैं मुझसे बाते, इसीलिए तो शमा परवीन नाम है मेरा।
0: अरे वाह, क्या बात है शमा, बहुत खूब। बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैम मैं वैसे तो कतराओं की रहने वाली हूँ, मेरे गांव का नाम कतरावा है और ये रामपुर में ही पड़ता है।
0: ओके जी, बताइएगा।
1: आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मैम, मैंने कॉल ट्राई की और पहली कॉल में मेरी कॉल लगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ये तो आपकी मेहनत और आपके प्यार की बात है, क्योंकि दिल से दिल का रिश्ता है। देखिए आपने एक बार ट्राई किया, फटाक से आपका नंबर लग गया।
1: जी
0: वरना घंटों इंतजार करना होता है, घंटों ट्राई करते हैं तब जाकर नंबर लगता है ना?
1: जी मैम, बहुत ज्यादा नंबर लगता है, खासकर रेडियो का बहुत ज्यादा लगता है, और जैसे ही घंटे जाती है तो खुशी का ठिकाना ही रहता है।
0: हाँ ये तो है। बताएगा आज आप क्या सुनेंगी शमा?
1: मैम जैसे कि इस महीने आदि शमा बाती जी, उनके भतीजे का जन्मदिन मनाया गया संडे के रोज।
0: ओके,
1: तो मैं उनको विश नहीं कर पाई क्योंकि हमारे तरफ वो जो हमारे इस्लामी ईद मिलादुन नबी चल रहा है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे जलसे हो रहा है, मतलब लंगर खानियां हो रही है, तो मैं उनको उनके भतीजे को विश नहीं कर पाई, लेकिन आज मुरादाबाद के जरिए विश करूंगी।
0: हाँ बताइए।
1: गाना मोदी का नाम तो मुझे याद नहीं है मैम, पर गीत के बोल हैं, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे देव कहूँ या तारा।
0: ओके, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये।
1: और हमारी तरफ से दुआ है मुरादाबाद के श्रोताओं की तरफ से कि आज सपना बासी जी का भतीजा ही वो हंसता मुस्कुराता रहे, और जो भी इनके माँ बाप के सपने हैं वो उनका बेटा उनका भतीजा पूरा करे।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सी विशेष है आपकी। तो सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी इक्कु।
1: दोस्तों के नाम लेना चाहूंगी।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ ले लीजिएगा।
1: और मैम पहले दो लाइनें कहना चाहूंगी, खासकर सपना अब्बासी जी के भतीजे के लिए।
0: जी इरशाद।
1: मैम कहते हैं कि गुलाबों में तुम हमको गुलाब लगते हो, गुलाबों में तुम हमको गुलाब लगते हो, शराबों में तुम हमको शराब लगते हो, बस यूं ही तुम हंसते हंसते मुस्कुराते रहो, न जाने तुम मुझको कौन से मुल्क की शराब लगते हो।
0: अरे वाह, क्या बात है। बहुत खूब।
1: और साथियों का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ हाँ जी श्योर, बताइएगा।
1: मैम जैसे कि है लिखत फातिमा, रुपया फातिमा, लाइवा फातिमा, और कपका वासी है पम्मी जी, और गान समाधि से हाजी गफार अंकल, क्योंकि मैम उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैंने उनसे बात की थी उनकी वाइफ से, तो वो हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं, अल्लाह ने उन्हें आराम दिया है, और अब से दुआ वो भी जल्द से रिवर्स हो जाए।
0: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से भी दुआएं हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। और सर से तो हमारी बात हुई थी कल, आई रिमेम्बर। या तो सुनवाते हैं प्यार से गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए डियर।
1: ओके मैम, थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यार से ट्रैक फ्रॉम द मूवी एक फूल दो माली से। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, तो सुन लेते हैं सफल कर, और आप ट्राई कीजिए, आपका भी कॉल लग जाएगा।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अभी मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश सही बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: जी बहुत बढ़िया है। और अभी मुरादाबाद 89.6 में कॉल लग गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। कब से ट्राई कर रहे थे आप कॉल लगाने का?
1: जी बस थोड़ी देर पहले ही, मतलब कि समाजी का कॉल सुन रहा था और मैं ट्राई भी कर रहा था।
0: अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। तो बताइएगा सर, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: जी आज मुझे समाजी का मूवी का नाम है दूल्हे राजा। और इसमें गीत है, बहुत ही कॉमेडी से भरा गीत है, सुना सा छोड़ दिया।
0: अच्छा, तो सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको, ठीक है सर?
1: जी बिल्कुल सुना दीजिएगा।
0: थैंक यू कॉल करने के लिए, एंजॉय कीजिएगा ब्यूटीफुल ट्रैक। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा अमेजिंग सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दूल्हे राजा। एंड 1998 में फिल्म आई थी, बहुत ही खूबसूरत। गोविंदा पाजी की एक्टिंग जबरदस्त और उनका डांस, ओए होए होए क्या ही कहने। चलो सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दूल्हे राजा. और म्यूजिक डायरेक्टर थे हिमेश मल्होत्रा एंड आवाज थी विनोद राठौर और साथ में सोनू निगम जी की. अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं. हेलो फरमाइश. वेरी गुड इवनिंग. क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुहानी है.
0: सुहानी बताइएगा, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताइए आप कैसे हो?
0: आई एम गुड सुहानी, मैं भी ठीक हूँ. आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मुझे गाना सुनना है, दिल इबादत कर रहा है.
0: किसके लिए?
1: आपके लिए.
0: ओके, ये तो अच्छी बात है और सभी के लिए करनी चाहिए, राइट ना सुहानी?
1: हाँ.
0: तो सुनिएगा ये अमेजिंग ट्रैक. थैंक यू कॉल करने के लिए डियर.
1: Thank you.

तो चलिए सुहाने की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड आप भी बस जल्दी से कॉल लगाइए और हम इबादत करते हैं ऊपर वाले से कि आपकी कॉल जल्दी से लग जाए एंड आप भी अपनी पसंद का गाना हमारे साथ एंजॉय कर पाएं।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

0: Hey, hi everyone, good evening. अभी आपने सुना ये ब्यूटीफुल ट्रैक केकी की आवाज में और एल्बम तुम मिले एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: धर्मेंद्र नाम है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
1: जहान आलम इलाके से बात कर रहा है
0: जी। बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, और आपको वो मिल गया कलर।
0: हाँ जी,
1: कलर डिसाइड हो गया खाना जी का।
0: ओके अच्छा, हाँ जी सर,
1: वो येलो कलर लीजिएगा।
0: हाँ जी, येलो कलर एंड उनका फेवरेट कलर है ना।
1: ठीक है
0: जी सर, थैंक यू। तो चलिए व्यूअर्स सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक एंड लौटकर मैं वापस आने वाली हूँ। जब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और सुनते हैं ये शानदार सा ट्रैक।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक एल्बम रफू चक्कर से, एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था

0: सपना सुधीर जी ने और साथ में किरण कुमार जी ने। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: मैं ग्राम गुनौर जिला से तारा महाराष्ट्र से तनुश्री सर्वे बात कर रही हूँ मैम।
0: बताइएगा तनुश्री, कैसे हैं आप?
1: मैम मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ तनुश्री से बात करके, और अच्छे हो गए हम।
1: थैंक यू, मुझे भी आपसे बात कर बहुत खुशी होती है।
0: थैंक यू तनुश्री। बताइएगा महाराष्ट्र का मौसम कैसा है?
1: मैम अभी तो महाराष्ट्र में मतलब बारिश नहीं हो रही सुबह से, मतलब बहुत अभी गर्मी पड़ने लगी है सच बताओ तो।
0: ओके, गर्मी ज्यादा है वहाँ पर?
1: हाँ अभी तो गर्मी पड़ने लगी, अब तो बारिश होने लगी।
0: ओके, तो तनुश्री बताइएगा आप आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है एक नजर, उसमें गाना है पत्ता पत्ता बूटा बूटा।
0: ओके, ये ट्रैक आपको पसंद है?
1: मैम बहुत पसंद है।
0: ओके, तो फिर हम जरूर प्ले करेंगे आपके लिए।
1: जी मैम।
0: तनुश्री कुछ और कहना चाहते हैं आप?
1: देखिए आप कुछ नहीं है, आप जो कार्यक्रम पेश करते हैं ना मैम बहुत बढ़िया लगता है, आप जैसे बातें करती हैं ना कॉलर से मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना।
0: थैंक यू तनुश्री, आपकी वॉइस एंड आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। और सुनवाते ही प्यारा सा ट्रैक आपकी पसंद का, एंजॉय कीजिएगा।
1: ओके बाय
0: बाय, ठीक है तनु। तो चलिए तनुश्री की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा दोस्तों, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी खुशी, और सुनते हैं मिलकर ये प्यारा सा गाना।

0: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना लता मंगेशकर जी साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में प्यारा सा ट्रैक। बात करते हैं अपने अगली कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर अपना नाम बताइएगा।
1: संभल से छोटे अंसारी का दुआ सलाम जी।
0: आपको भी सलाम सर। बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी।
1: बहुत बढ़िया हाल चाल है, और मेरी कॉल लग गई ना तो और भी अच्छा हाल चाल हुआ है मेरा।
0: जी जी जी, आपने सैटरडे में भी कॉल किया था ना सर।
1: जी जी जी जी हाँ, ये जो है ना आकाशवाणी हमारी बहुत पसंद है, तो दिल ना मानता मतलब कॉल लगाने वगैरह।
0: मैंने आपका कॉल सुना था, अखिल शो सर शो कर रहे थे तो आपका कॉल लगा था।
1: जी जी जी जी
0: जी, बताइएगा सर आज आप क्या सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी।
0: हाँ।
1: आवाज मोहम्मद रफी की
0: जी।
1: गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीत के बोल शिरडी वाले साईं बाबा, आया हूँ तेरे दर पे सवाली, दिल में उम्मीद पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा, आया हूँ तेरे दर पे सवाली।
0: ओके, तो ये आपने पहले से डिसाइड करके रखा था कि कॉल करेंगे तो आज ये सुनने वाले हैं हम।
1: जी जी, और जैसे आप कॉल लग गए ना
0: जी,
1: तो मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी शाम तक।
0: शाम तक नहीं, आप हमेशा ऑलवेज मुस्कुराती रहिए सर, ठीक है।
1: हाँ, बस आपकी दुआएं मिलती रही ना तो मुस्कुराते रहेंगे।
0: जी
1: और
0: जी,
1: खुश रहो और जी प्रोग्राम करते रहे ना आप, हमें आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है।
0: थैंक यू।
1: हाँ, और एफएम मुरादाबाद है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया सुपर।
1: हाँ मतलब एफएम मुरादाबाद सुनते रहो, खुश रहो, अपना काम भी करते रहो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: कॉल भी लगाते रहो। आप बताती हैं नंबर तो अमल करा जाएगा।
0: जी थैंक यू सर हमें कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं आपके पसंद का प्यारा सा गीत।
1: वो भी तो है, हमारी चच्ची भी है, खाला भी है, और ये हमारे बड़े भाई साहब भी हैं।
0: जी,
1: नाम तो कहीं न ले रिया, ये मेरे पास में है तो ये भी सुनना चाहते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आप अपने परिवार के साथ सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो चलिए श्रोताओं सुनवा देते हैं प्यारा सा ट्रैक, हम लौट कर आते हैं, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत शिरनी वाली शाही बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाली। एंड दोस्तों कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति होती है, जब हम किसी भी ऊपर वाले ईश्वर को मानते हैं ना एंड सच्ची श्रद्धा से जब हम उनको याद करते हैं तो वो हमारी विनती सुनते जरूर हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैम रविंद्र कुमार बात कर रहा हूँ
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ओके, एक्चुअली ना पहले ही आपके बेटे ने कॉल किया था तो वो बोल ही नहीं रहे, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। मैं बोल रही हूँ हेलो तो चुप हो जाते हैं।
1: जी, मैं अभी आया तो मैंने देखा तो कह रहा है मैम, बोल रहा है पापा ऐसे मालू का फोन लगा है।
0: हाँ, वो दौड़ के आपके पास आया, पापा पापा मेरा कॉल लगा है। जी बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
0: ओके ठीक है, क्या नाम है आपकी बेटी का?
1: मेरे बेटे का आर्यन।
0: आर्यन ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा ट्रैक। थैंक यू सर कॉल करने के लिए।
1: ठीक है,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और इस ट्रैक के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए और ये प्यारे से चेहरे पर ना ऐसे ही प्यारी सी स्माइल हमेशा बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

0: फास्टन योर सीट बेल्ट सर।
1: हमारी
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। देखिए हमारी मिलन की घड़ी आ गई है। मतलब मैं कहाँ सोच रही थी कि मंडे को आऊंगी आप सभी के साथ, यानी कि आने वाला मंडे। ये मैं सोची कि जो कल मंडे गया था वो वाला मंडे नहीं, आने वाला मंडे। लेकिन क्या करूँ, आप सभी के जो याद इतने सारे आए ना मेरे को, इतने प्यारे प्यारे हैं आप सब, इतने प्यारे प्यारे जो आप सभी के मैसेज आते हैं ना मुझे, यानी कि हरियाणा से मुरादाबाद खींच ही रहा है आप सभी का प्यार। इस साइड आर्जरी ना। और देखिए समय की बात करूं तो श्रोताओं 5:11 हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट हैं मेरे साथ।
1: जग घूमे
2: जी, बिल्कुल जग घूम लो पर थारे जैसा कोई ना मिले जी। सच में आप सभी जितने प्यारे हैं ना, जग घूम लो मिलने वाला कोई नहीं है। एक तो आप सभी का ऑरा, मतलब कहते हैं ना जैसा व्यवहार रखोगे ऑरा भी ऐसा ही हो जाता है आपका। तो आप सभी का जो प्यार इतना अच्छा अच्छा मिलता रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल काफी टाइम हो गया मेरे को, यानी कि आप सभी से एडवांस में रक्षाबंधन बोल के गई थी मैं। अब फिलहाल आ गई हूँ आप सभी के बीच, करेंगे ढेर सारी बातें। आज की तारीख यानी कि 1 सितंबर, और 1 सितंबर को कहते हैं ना पहली दिन है, पहली तारीख है, पहले शुरुआत है। कुछ भी अक्सर शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो हम पहले तारीख से ही शुरू करते हैं। तो बस आपने क्या करना है, जो काम आपने अभी तक नहीं किया है और आप सोचते हैं कि भाई करना है चाहे कुछ हो जाए, तो 1 तारीख है आपके पास और प्लानिंग जो भी है आपकी स्टार्ट ही कर दीजिए आज से, क्योंकि कल के ऊपर कभी भी डिपेंड हमें नहीं रहना चाहिए।
1: दिल वाली
2: करेंगे ढेर सारी बातें, क्या आज की 1 तारीख में क्या महंगाई हुई है, महंगाई घटी है या नहीं घटी है, या फिर पॉकेट पर और भी बर्डन पड़ने वाला है, उसके बारे में भी जमकर बात करेंगे श्रोताओं। बस आपने क्या करना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। अच्छा ठीक है, आपने मेरे को मिस किया तो मुझे फटाफट मैसेज करके बताओ। मैंने तो आप सभी को किया, बहुत ज्यादा किया, और आप सभी की याद में ये वाला गाना।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
4: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
5: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
4: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

जी गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुन।

गर्मी थी, लेकिन जैसे मुरादाबाद में आई मैं, मजा आ गया है वेदर देखकर। थोड़ी सी गीली तो हुई मैं, लेकिन बारिश की जो मजा है ना वो अलग ही होता है। तो फिलहाल आप देखिए ट्रैफिक में होंगे, और आज के टेम्परेचर की बात करूं तो यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि कूल वाला वेदर है आज मुरादाबाद का, यानी कि सुबह से ही बारिश। और ये बारिश बताया जा रहा है अगले मंडे तक भैया ऐसे ही वेदर रहने वाला है अपने मुरादाबाद। तो अगर आप ट्रैफिक में हैं और घर निकलने की तैयारी कर रहे हैं और जल्दबाजी में हैं, तो देखिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी आपने, है ना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, और जल्दबाजी हमें कभी नहीं करनी। सो ऑफिस से निकलते समय भाई एक चीज है जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, हेलमेट। जब भी आप ऑफिस से निकले तो हेलमेट जरूर अपने साथ रखें, और अपने सीट बेल्ट भी साथ ही साथ लगाना है, और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे बरसात होती है जगह जगह पर, मतलब थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। यानी कि जहां आपको लगे भैया पानी ज्यादा भरा हुआ है सड़क पर, तो वहां अपनी गाड़ी ना बल्कि मतलब उसकी रफ्तार है ना धीमी कर देनी है, क्योंकि जो आसपास के आ रहे हैं ना उनके ऊपर छींट नहीं जानी चाहिए, देख लीजिए। क्योंकि बेचारे सोचिए उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, और अगर आप उस जगह होते तो कैसा फील होता। इसीलिए हमें सबकी ध्यान रखनी है, और अपनी गाड़ी की रफ्तार कम रखनी है, और हॉर्न है उसको कंटिन्यू नहीं बजाना है, क्योंकि आप अंदर होते हैं आपको बस जल्दबाजी रहती है यार, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न। लेकिन जो बाहर इंसान है उसकी कानें सुन हो जाती है, वो परेशान हो जाता है और मन में कुछ न कुछ कह ही देता है आपके लिए, भाई यार पता नहीं क्या जल्दबाजी हो रही है इसके, इसको उड़ा के ले जाओ भैया, तुम इतनी जल्दबाजी हो रही है तुम्हें तो। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से गाड़ी चलाइए, क्योंकि शाम का वक्त है और शाम भी अपनी है देखिए, और इस शाम में कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसीलिए रफ्तार धीमी और गाना बेमिसाल वाला सुनते हैं, और उसके बाद हम लौट कर आएंगे और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो समय हो चुका है यानी कि 5:32। और फिर से जो शहर की गलियां है ना, उसमें रौनक आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, हम जहां रहते हैं, जहां जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां से हम 2-4 दिन की छुट्टी लेकर जाते हैं, ये सोचकर कि यार कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन नहीं, अब बस 2-3 दिन ही सही, एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, बिंदास होकर एंजॉय करेंगे।

लेकिन जैसे ही घर जाओ सुकून तो मिलता ही है, साथ ही साथ अगले दिन से ये टेंशन होने लग जाती है कि यार फिर से जाना है, और फिर से जहां से हम 2 दिन की छुट्टी लेकर आए थे वहां काम करना है। और बताओ सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने काम से हमें प्यार होना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए कि 2 दिन भी आप 1 दिन भी ना हो ना तो मन ना लगे, इतना प्यार होना चाहिए अपने काम से। क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, क्योंकि आप अपने काम से प्यार करते हो। और जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो वो आपको डबल दुगना उतना ही प्यार करते हैं। यानी कि 1 सितंबर है और 1 सितंबर को क्या क्या चीजें चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। और साथ ही साथ आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो भी अपने घर गए हैं यानी कि जो घर से बाहर रहते हैं और 2 दिन की 4 दिन की छुट्टी लेकर एटलीस्ट जो भी गए आप, कैसा फील हुआ है आपको, कैसा लगा है जब आप घर पर जाते हैं पूरी फैमिली वालों के साथ मिलते हैं एंजॉय करते हैं, आपके आस पास छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई दिखता है तो वहां पर टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे आप दूसरे शहर आते हो फिर से वही अकेलापन, 4 दीवार, मतलब यहाँ वहां घर की सफर और यहाँ तक की सफर, आपको कैसा फील होता है वो मैसेज करके बताना है आपने। नंबर है 9823789689 पर मैसेज करिए और यही कहिएगा।

समय की बात करूं तो 5:41 हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में आप आर्जुरीना के साथ कनेक्ट है। और देखिए महंगाई, भैया देखिए महंगाई से कुछ जगह राहत भी मिली और कई जगह यानी कि कुछ चीजों में बढ़ोतरी भी हुई है। 9-9 रुपए 8-8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले आप चीनी के जो कट्टे उठे थे 10-10 किलो के ले आते थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा यानी कि कहा जा रहा है कि 5 किलो तक की आपको चीनी अब अवेलेबल मिल सकती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है क्या नहीं वो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हर एक तारीख को कुछ चीजें महंगी होती हैं, कुछ चीजें सस्ती होती है। और साथ ही साथ प्रॉब्लम उनको आने वाली है। देखिए अगर आपके घर में सिलेंडर है, EKYC नहीं कराया तो उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। और चीनी में, चीनी के दामों में ये कहा जा रहा है हल्की सी थोड़ी राहत तो ये। और साथ ही साथ प्याज की बात करूं तो भैया प्याज में ना बस 19-20 का फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और जैसे ये वेदर अगर रहा तो देखिए थोड़ा सा और भी कॉस्टली हो सकती है और भी महंगी चीजें हो सकती हैं। तो बस थोड़ा सा देखिए त्योहार के टाइम कुछ होए चाहे ना होए हर किसी को काम करना होता है, बस अपने साथ इंसानियत जगा के रखिए और आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल कुछ मैसेज भी आए हैं जिनके बारे में भाई बात करना बहुत जरूरी है, काफी मैसेज आ गए। हेलो गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं और घर की यात्रा यहाँ तक आने में कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही सर, बहुत बसें चेंज करनी पड़ती हैं, ट्रेनें चेंज करनी पड़ती है, तो पूछिए मत कैसी रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। वैसे सफर अच्छा है, मतलब जब भी आप सफर में जाओ ना तो सिर्फ ये मत सोचो कि मैं वहां जा रही हूँ या मैं कहीं और जा रहा हूँ, बस इंजॉय करो। जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करेंगे ना, तब तक आपको सफर का आनंद नहीं आने वाला है, मतलब आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे अच्छे से, इसलिए सफर को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। मैसेज की बात करूं तो बाप रे इतना सारा मैसेज आ गया बताइए मैं क्या सारा। हेलो रीना मैम, गज वाला इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपकी आवाज सुनने बहुत अच्छा लगा। अच्छा मेरी आवाज सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा। आज हमने इनके साथ गेम खेला है, बहुत अच्छे वाला है, ये समझ गई होंगी आज। मैम आपने तो आज हमें बुद्धू बना दिया। हाँ जी हमने आपको उल्लू बना दिया है हमने आपको, पर आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच, मुझे पता था। देखिए सरप्राइज देना होता है ना वो ऐसा ही देना होता है कि इन्होंने पूछा था कि मैडम कब आ रही है, मैंने बोला मंडे को आऊंगी, लेकिन मैं आज ही आ गई हूँ आप सभी के लिए। देखिए चाहे 2 दिन भी हो जाए चाहे 1 दिन भी हो जाए तो ऐसा ही लगता है ना कि काफी टाइम हो गया रेडियो पर बोले, और जब एकदम आवाज सुनते हैं तो एक अलग ही चेहरे पर रौनक आ जाती है। और चाय पी लीजिए, अरे भिजवा दीजिए आप, तो जल्दी भिजवाइए, आज ये मत पूछिए कि चाय पी लीजिए, आप भिजवा दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी थकान होने के बाद तो बस चाय की तरफ ध्यान जाता है ना, तो आप भिजवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आज मैं चाय पक्का पीऊंगी। और इनका कहना भैया आपका शो भी सुनूंगी, लेकिन ये मार्केट जा रही है सब्जी लेने के लिए, आप मेरे लिए भी ले आइएगा क्योंकि मुझे भी जाना है, आप ले आएंगी तो मेरा

थोड़ा और आसान हो जाएगा। और शाम को तड़का लगने वाला जी जब रीना आती है तो देखिए सब्जी के साथ साथ बातों का तड़का लगता है, गानों का भी तड़का लगता है। तो आप बिंदास होइए और जाइए फटाफट सब्जी लेकर आइए। और आज इनके पापा जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपके पापा जी को हैप्पी वाला बर्थडे। और वो यूं ही हमेशा अपने जिंदगी में, देखिए जो फादर होते हैं ना, मतलब हम पूरी टेंशन भूल जाते हैं। और एक फादर कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं ना, मतलब उस जिम्मेदारी के लिए हम कुछ भी कर ले वो भी कम है। मतलब उनका जो कर्ज होता है ना माँ बाप का, हम कभी नहीं चुका सकते। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं। कोई बात नहीं, भूल चुक माफ होती है। आप जाइए उनको हैप्पी वाला बर्थडे विश करिए और गाना सुनाइए। आज इनके पापा जी का बर्थडे है तो बिल्कुल हम आपको ये गाना डेफिनेटली सुनवाएंगे ललिता जी। लेकिन आप इतना सारा मैसेज कर देती ना भैया, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन जो ये आपका गाना है जो आप सुनना चाहती हैं, डेफिनेटली हम आपको ये गाना सुनवाएंगे। बिना सुनवाए तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। और आज जिनका जिनका भी भैया बर्थडे है उनको हैप्पी वाला बर्थडे, और यूं ही आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। और मुझे भी आप सबसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं इतने दिन घर रही तो बस मिस ही कर रही थी भैया, कब मैं जाऊँ, कब मैं रेडियो पर बोलूँ और कब आप सभी के साथ में कनेक्ट हूँ, ढेर सारी बातें करूँ। फाइनली आज मैं आ गई यहाँ पर, अब आपसे मैं ढेर सारी बातें करूँगी और आप ही सबके साथ रहूँगी। ठीक है जी, आप प्यारे प्यारे मैसेज भेजते रहिए, बात करते रहिए हमारे साथ और गाना सुनवाते हैं बहुत ही शानदार वाला। चलिए आप इस गाने को एंजॉय करें।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

गुड वेल इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज की तारीख 1 सितंबर, और 1 सितंबर से भैया एलपीजी जो सिलेंडर है यानी कि 10 से 12 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, फिर से झटके लग गए हैं। थोड़ी सी राहत मिलती है लेकिन वो राहत राहत नहीं होती भैया, कब बिजली का करंट फैल जाए ना पता नहीं चलता है, इसीलिए थोड़ा बचकर संभल कर सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तारीख आते आते भैया हर चीज महंगी होने लग जाती है, कुछ नियम है जो चेंज होने लग जाते हैं, कहीं कहीं पर 10 से 12 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है एलपीजी सिलेंडर जी, बिल्कुल। और इसी बीच लेकर आने वाले आप सभी के लिए कड़क सवाल, तो थोड़ा सा इंतजार करिए और फिर धमाल करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए एक और गाना एंजॉय करते हैं।

0: है फुटबॉल में, और मैसी ने ना केवल मैच जीते बल्कि पूरी दुनिया में अपने प्रशंसकों का दिल भी जीता है। दोस्तों खेल की तो खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन स्टूडियो घड़ी बता रही है हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजय तोमर, मेरे सहयोगी प्रतीक आनंद और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है, तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
4: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया।

0: भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
4: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
3: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: फिर डोली डोली जी करेंगे जी। बस ये महीना है फिलहाल, तो जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं जी। अर्जुनीना के साथ आप कनेक्टेड शो। समय की बात करूं तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:10 हो गए। और देखिए साथ ही साथ खाने की चीजें तो छोड़िए, वो तो महंगी हो ही है, साथ ही साथ ऑटो रिक्शा के पैसे भी बढ़ गए हैं 5-10 रुपए भैया। मुंबई वालों की तो और भी ज्यादा भैया, वहां और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। और फिलहाल मैं अपने गांव में गई तो जहां मैं पहले 10 रुपए देती थी, अब मैं 20 रुपए। मैंने कहा, एकदम मेरे से बोला गया कि नहीं 20 रुपए, मैंने कहा है 20 रुपए, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10-5 मिनट लगते हैं वहां तक जाने के लिए, 20 रुपए हो गए। तो भैया ऑटो रिक्शा वाले ने भी बढ़ा दिया, क्या ही करे भैया, जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो वे भी तो बेचारे बढ़ाएंगे ना रेट। बस देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। और आर्जेरीना के साथ यूं ही कनेक्ट रही, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल मैसेज की बात करूं तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, लक्ष्मी कश्यप जी आपको हमारी तरफ से प्यारी प्यारी गुड वाली इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। मैसेज की बात करूं अगले तो दीपक जी का मैसेज आया है और इनका कहना कि अरे मैडम जी आप कहाँ रह गई थी इतने दिन से, मतलब सच में हम आपका शो का ना इंतजार करते रहते कि कब 5 बजे और कब रीना मैडम आएंगी हमारे साथ कनेक्ट होंगी। और सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें, और मतलब बड़ी अटपटी चटपटी आप बातें करती ना तो बहुत अच्छा लगता है।
1: मधुबन में जो कन्हैया किसी को भी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी।
0: और बताइए आप सभी कैसे हैं, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रक्षाबंधन का जो त्योहार है बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से रक्षाबंधन का त्योहार है वो आपने मनाया होगा। और देखिए भाई बहन का प्यार ना ऐसा ही बना रहने चाहिए जन्मों जन्मांतर तक, सच में मतलब ये रिश्ता होता है ना बड़ा ही प्यारा रिश्ता होता है।
2: ये हैं फूल खिले।
0: अगले मैसेज की बात करूं तो हमारे साथ कुसुम जी कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि मैडम जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, और काफी टाइम के बाद आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मिस कर रहे थे आपको, लेकिन फाइनली आज आप हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं जी। बिल्कुल मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। और देखिए मैं आप सभी के साथ मतलब कितने दिन तक छुट्टी पर रहेगा इंसान, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, उसके बाद तो भाई वो खुद ही बोर हो जाता है कि नहीं नहीं यार हमें ऑफिस तो अब जाना ही चाहिए। और मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हम भी आपके प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। रीना मैडम जी आप भी बड़ी भोली हैं, आए हाय थैंक यू जी, मंगलवार शाम की आपको राम राम जी, राम राम जी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत चंगे होंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो जय श्री राम, रीना जी क्या हाल है आपके, बहुत अच्छे जी आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी जी, ग्राम कल्याण पीतल नगरी से, आपको रक्षाबंधन त्योहार कैसा रहा आपका। सर बहुत अच्छा रहा, बहुत सच बताऊं मतलब एक रक्षाबंधन का त्योहार होता है ना जब भाई बहन को अपने पास यानी कि खींच ही लाता है चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, और आप भी तो अपने घर आए हुए है ना तो अच्छा लगता है रक्षाबंधन का त्योहार, बहुत अच्छे से एंजॉय किया हमने, हम सभी भाइयों बहनों ने, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी से आज काफी टाइम बाद कनेक्ट होके भी और भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिलहाल गाना सुनेंगे, लेकिन गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद बात करने वाले हैं और भी ढेर सारी।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081। अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: समीर, ओ माय गॉड, तुम आ गए।
7: शालू,

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते।
1: दिल की तड़प है ये इंतजार मोहब्बत।
0: और बताइए जी, आप सभी कैसे हैं, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। देखिए, बातें शेयर करने से ना मन हल्का हो जाता है, तो आप मेरे साथ बातें शेयर करेंगे ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: आज हमने
0: समय की बात करूँ तो 6:20 हो चुके हैं, और साथ ही साथ सितंबर के महीने में कौन कौन से डे पर यानी कि बैंक बंद रहने वाले हैं वो मैं बताने वाली हूँ आप सभी को। तो भाई, जिनका काम बैंक से बहुत ज्यादा रहता है, ये खबर उनके लिए बेहद जरूरी है। और

0: सुन रहे हैं, गाने बहुत ही अच्छे प्ले कर रही हैं आप और आपकी आवाज सुनने को तरस गए थे। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू कुमार जी सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। थैंक यू सो मच सर,
1: ताजा ताजा
0: इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का। और सच बताऊं तो मैं भी आप सभी से बातें करने के लिए, आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज पढ़ने के लिए ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे को एक दो महीने हो गए रेडियो पर काम करे, रेडियो पर बोले, आप सभी से बात करे। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब मम्मी ना रोको, बस तुम तो मुझे जाने दो, मुझे क्योंकि मेरे मम्मी भैया सच बताऊं जिस दिन भी मैं घर जाती हूँ और आने से अगले दिन हमेशा डिले करवाती हैं, हमेशा कहती नहीं नहीं आज रुक जा, बस आज रुक जा फिर चली जाना। मतलब वो मुझे रुकवाई लेती हैं, आने नहीं देती है, और फिर बोलती हैं कि एक दिन और रुक जा, एक दिन तो रुक गई, थोड़ा और रुक जा, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है जब तू रुकती है घर पर। तो भाई मम्मियां जो होती है ना वो चाहती नहीं है कि दूर जाए, उनको बस उनका बस चले ना, तो वो घर से निकलने ना दे, घर में ताला लगा के रखे, हमें तो पैक करके रखे, कहीं जाने ही ना दे, बाहर की जो हवा है ना, ठंडी ठंडी वेदर है, वो हमें महसूस होने ही ना दे। मतलब वो घर में चाहती है कि हमारे साथ ही रहे। लेकिन सच बताऊं जो गांव का वेदर होता है ना बहुत ही सुकून भरा होता है, विदाउट पॉल्यूशन। मतलब मैं इतने दिन 4 दिन तक रही, बड़ा मजा आया। शाम को हम सभी भाई बहन घूमने जाते थे। तो देखिए आज ना मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछती हूँ, जब भी आप भाई बहन इकट्ठे होते हैं, एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप सब कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? चाहे सुबह प्लानिंग करो या शाम की प्लानिंग करो, भैया हाँ ना हमें ना घूमने चलना है, तो आप कहाँ कहाँ घूमने जाते थे? क्योंकि हमारा तो प्लान था भैया जब इस शाम होती हम खेतों में चले जाते थे घूमने के लिए, और खेतों की जो वेदर भाई हरियाली अय हय, मतलब जो गाँव की हवा होती है ना विदाउट पॉल्यूशन, मतलब बड़ा सुकून देता है आपको अंदर से, एक मतलब आपको खुद रियलाइज होएगा, एक सुकून भरा आपको फील होएगा जब आप गांव में कभी जाएंगे। तो देखिए घूमना बहुत जरूरी है, घूमते रहा करिए और आज जनिने के साथ कनेक्ट रहिए। फिलहाल गाना सुनते हैं गुरु रंधावा की आवाज में, बहुत ही
2: परी लंबी है इस बारी तेरी
3: माँ ने पहला लंबिया परियां बाद च तुहानू आप ही चंगे लगनो हट जांदी।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, तो व्हाट्सएप चेक करके दसी।
3: ओके मम्मी,
2: बाय बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हेलो जी, गुड वेल इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:00 यानी कि 34 मिनट हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में।
1: कितना सोना।
0: और अब हम बात करते हैं एक ऐसी मूवी जो भैया ब्लॉकबस्टर पर बहुत खतरनाक वाली धमाल मचा रही है और साथ ही साथ उस मूवी का एक गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इंस्टाग्रामो, मतलब हर जगह बहुत पॉपुलर हो रहा है। मूवी का नाम है हनुमानंस। अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं कहती हूँ ये मूवी आप जरूर देख कर आइए। और इसका भजन यानी कि मैंने तेरे ही भरोसे, मतलब ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ना, क्योंकि हम अक्सर जब जिंदगी में हार जाते हैं ना खुद से ट्राई करके, बनी लाइफ में आप कितना भी ट्राई कर लो लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब अपने आप को आप हारने लगते हो, खुद को हारा हुआ महसूस करते हो, तब हम भगवान से कहते हैं बस अब तो तेरा ही सहारा है, मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिए हैं, अब तू जैसा कर वैसा ही हम सहन कर लेंगे। क्योंकि जो देखिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, वो हमें संघर्ष करना भी सिखाते हैं, सब्र क्या है वो सिखाते हैं। क्योंकि देखिए आजकल वैसे बहुत कम है क्योंकि सब्र नहीं होता है, जल्दबाजी करते नहीं, भाई मुझे तो चाहिए चाहिए चीजें और वो चीजें फिर इतनी डिले हो जाती हैं कि समझ नहीं पाते हैं। वो सिर्फ परीक्षाएं होती हैं लेकिन जब आपको मिलता है तो बहुत इतना ज्यादा मिलता है कि आप संभाल नहीं पाते हैं। हनुमानंस भैया जिसने भी मूवी देखी है तो एक बार जरूर आप मैसेज करके बताएं क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। और साथ ही साथ ये जो गाना है यानी कि मैंने तेरे ही भरोसे, हनुमान सागर में नैया वाला जो ये गाना है ये गाया है यानी कि सुनील लोधी जी ने। मतलब देखिए एक मूवी सिर्फ मूवी नहीं होती है, उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी चौड़ी होती है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी मूवी बनाने से पहले उसको लिखा जाता है, कैसे क्या कब बोलना है, कहाँ से इसके स्टार्टिंग करनी है, कहाँ पर एंडिंग करनी है, यानी कि जितना शूट करने में समय नहीं लगता उतनी ज्यादा इसको लिखने में समय लगता है। जब लिख जाता है फिर भैया इस मूवी में जिसको भी लिया जाता है, अलग अलग कैरेक्टर, खुद की आवाज चेंज करना, मतलब एक इंसान कितनी आवाजें चेंज करता है, टैलेंट इंसान के अंदर देखिए। वहीं हम हार मान लेते हैं, हार नहीं मानना चाहिए। और साथ ही साथ इसके निर्देशक की बात करूं, डायरेक्टर की बात करूं तो विशाल चतुर्वेदी जी ने ये फिल्म यानी कि नीम करोली बाबा के ऊपर, इन्होंने ये जो मूवी है हनुमान अंश नीम करोली बाबा के ऊपर है, यानी कि उनकी पूरी कहानी जो भी उनकी जर्नी रही है इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। हम बोलते हैं ना कि नीम करोली बाबा चलते वहाँ चलते हैं घूम कर आएंगे, क्योंकि वहाँ जाने से जो आपकी अंदर हलचल मची रहती है वो शांत होती है और जो आपकी मनोकामना है वो भी पूर्ण होती है। लेकिन सच्चे मन से सच्चे भाव से जब आप भगवान से कनेक्ट होते हैं तब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, लेकिन आजकल यही हो रहा है, हम दिखावे के लिए जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील पोस्ट करते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप कहीं विशेष आपके पूरे नहीं होने वाले। जब आप उनके साथ भाव के साथ जाएंगे, फोन एक साइड रख दीजिए, कोई नेटवर्क नहीं, आज जीरो नेटवर्क, जैसे माँ वैष्णो देवी की यात्रा करती हैं और उनकी दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे ना जीरो नेटवर्क, कोई नेटवर्क नहीं आता वहां पर, फोन से बिल्कुल दूरियां। और जो वेदर है वहां की, वादियां है, माँ के साथ कनेक्ट होना एक अलग सुकून देता है। तो तभी भी आप चाहे घर में हो, मंदिर जाए, चाहे आप पूजा कर रहे हो, फोन को साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो और भगवान के साथ एक सच्चे मन से कनेक्ट होकर देखो। बहुतों को लगता है कि ये ज्ञान है, क्या ही करना है ऐसे, ये वो ये नहीं, लेकिन अपना के तो देखिए बहुत आपको रिलैक्स फील होएगा, बहुत शांति मिलेगी आपको। क्योंकि आज के टाइम में ना हर किसी को प्रॉब्लम है, हर किसी के पास परेशानी है, हर कोई टेंशन में, हर कोई डिप्रेशन में है कि क्या क्या करूं मैं, कैसे इसको ठीक होएगा। ऑफिस से जब निकलते हैं तो 70 बातें घूमती रहती हैं, घर जाकर क्या होएगा, क्या नहीं करना है, और कल कैसा दिन रहेगा। मतलब हम आज के पल को नहीं जीते हैं, कल के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो पहले आज को अच्छे से इंजॉय करिए, और सोचना मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए। अरे परेशानी आएंगी, जिंदगी यही है, जिंदगी में परेशानी आती ही आती है। तो कुछ मैसेज है उनको भी शामिल करते आगे बढ़ेंगे, और साथ ही साथ एक कड़क म्यूजिक मैं आप सभी के साथ लेकर आऊंगी। पहली तो मैं कल पूछूंगी, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है उसको समझने में और दिमाग की बत्ती जलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी आप सभी सच बताओ बहुत एडवांस है भाई, पूछने से पहले आंसर आ जाता है, इतने स्मार्ट है आप सभी। मैसेज की बात करूं तो दौलत बाग मुरादाबाद से मैसेज आता है, रीना जी आपका प्रोग्राम तो लाजवाब है ही, मगर जो ये महंगाई बढ़ रही है वो कहाँ जाकर रुकेगी। सर ये ट्रेन की पटरी जहां तक चलती रहेगी महंगाई बढ़ती रहेगी, कुछ नहीं कह सकते। ये महंगाई कहाँ रुकने वाली है, कहाँ नहीं रुकने वाली है। सोने चांदी की भाव अब सब्जियों के अंदर भी आ चुके हैं, हर चीजें महंगी होती जा रही हैं। और देखिए आप सब हमेशा यही सोचते हैं कि आज महंगा कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा सोना, कल सस्ता हो जाएगा तो हम कल खरीद लेंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेना है आपको ले लीजिए। 4 तोले भी आप अगर इयररिंग्स के बनवा रहे हैं तो वो भी 76,000 से कम का नहीं बन रहा है, महंगाई होता जा रहा है। पहले के टाइम में मतलब मेरी मम्मी ने, मेरे को याद है, मतलब मैं अब नोज पिन तो मैंने छोड़ दिया है, मेरी मम्मी ने 150 का नोज पिन बनवाया था, और अब वही नोज पिन अगर आप पूछने जाओगे तो 50-60 हजार में बन रहे हैं, इतने महंगाई हो चुकी है। तो बस ये मत सोचिए कल अच्छा होएगा, कल सस्ता हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। जो खरीदना है खरीदिए और अच्छे से एंजॉय करिए। और महंगाई का क्या है, वो तो बढ़ता ही रहता है, हमें तो जीना ही है ना इंसान को। मैसेज की बात करूं अगले तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद सारी कली इनके दोस्त है। रीना जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। इवनिंग मस्ती शो में आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और गाने बहुत अच्छे प्ले करती हैं आप, थैंक यू सो मच जी। फिलहाल एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद में कनेक्ट होंगी आप सभी के साथ, और मैं पूछने वाली हूँ आप सभी से कड़क म्यूजिक कि आखिरकार जो मैं म्यूजिक प्ले करने वाली हूँ आप सभी के बीच में, बस आपने सुनना है और हमें मैसेज करके बताना।

आपने सुनना है और बताना है गाने का क्या नाम है, यानी कि गाना 90s का गाना है, बहुत ही शानदार वाला गाना है, उदित नारायण जिनकी आवाज में बहुत ही खूबसूरत वाला गाना है, सिर्फ और सिर्फ आपने गाने का ही नाम बताना है, ठीक है जी। मूवी के लिए बर्डन नहीं है, बिल्कुल बिंदास होकर आप गाना सुनिए और बताइए कि आखिरकार जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ गाने का क्या नाम है।

एंड जी सोचिए सोचिए, आखिरकार जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ आप सभी के बीच, ये गाने का नाम बताना है, क्योंकि ये मूवी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, बहुत ज्यादा, और अभी भी है, और ये गाना भी कम नहीं है, बहुत पॉपुलर है। आखिरकार उदित नारायण जी की आवाज में है और काजोल और शाहरुख खान भी है इस मूवी के अंदर। तो आपने बताना है जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, आखिरकार गाने का क्या नाम है। वंस अगेन एक बार और रिपीट करती हूँ, उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि इस यानी कि मंथ सितंबर के महीने में बैंक कब कब बंद रहने वाला है।

0: चलिए जी, आई होप कि आप सभी ने सुन लिया होगा और आप सभी के मैसेज भी आ गए हैं प्यारे प्यारे। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद कनेक्ट होंगे।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

इश्क इश्क विक्ष नहीं करना चाहिए, अगर हो जाए तो उसकी कद्र करना चाहिए, अदरवाइज इक्स विक्ष में पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, गुड वाली इवनिंग है जी। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूँ तो 6:53 हो चुके हैं और आज की तारीख 1 सितंबर, यानी कि मैं अगर बात करूं सितंबर के महीने में, यानी कि बैंक का भैया जिनका काम रहता है वो जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि त्योहार के मौके पर, यानी कि पहली बात करूं तो जन्माष्टमी जो कि 4 सितंबर को है, और वही 14-15 को भी कहा जा रहा है, यानी कि इन दो डेट में बंद हो सकती है, यानी कि गणेश चतुर्थी है। साथ ही साथ संडे का तो भैया रहता है, दूसरे चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहने वाले हैं। तो जब भी आप बैंक में जाए तो एक बार तारीख और डेट जरूर याद रखिएगा कि आज डे क्या है क्या नहीं है, तभी आप बैंक में जाए, अदरवाइज पता चले कि वहां जा गए और वापस रिटर्न आना पड़े आपको, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो है वो साथ ही साथ जो आज मैंने आप सभी से कड़क म्यूजिक पूछा है ना, एक बार और हम प्ले करते हैं, बस आपने सुनना है क्योंकि अगली बारी आपके मैसेज कहीं है। तो चलिए प्ले करते हैं।

चलिए जी, बस इतना ही इनफ है, इतना ही बहुत है। मुझे पता है कि आपने भाई आप बहुत तेज हैं, सुन लिया होगा आपने, है ना। मुझे पता है जी, बहुत पता है मुझे, क्योंकि भैया सच बताओ, आप सभी का जो प्यार है ना, बहुत आप सभी के मैसेज से ही पता चल जाता है, और इससे पता चलता है कि आप सभी कितने एक्टिव हैं। और जिंदगी में, लाइफ में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेजी इंसान को ना जिंदगी, अगर जो इंसान अपने अंदर लेजीपन भर लेता है ना, जिंदगी खराब हो जाती है। इसीलिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। कोई भी आप काम करिए, फटाफट आपने काम करना है, ये नहीं कल परसों तरसों करेंगे, क्योंकि ये कभी आता ही नहीं है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद आप सभी के मैसेज शामिल करने के लिए। अच्छा, क्या आपने एक बार और म्यूजिक प्ले कर दिया जाए?

क्या बात है जी। अर्जुनीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और कहते हैं ना, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है ना, तो आप कितनी प्यारी बातें कर ले, कोई नहीं सुनता है। लेकिन वही आपके पास पावर, पैसा, दौलत, शोहरत सब आ जाए, तो आप गलत भी बोलोगे ना, तो अगला इंसान कहेगा नहीं यार, ये सच बोल रहा है, इसकी बात मान लेते हैं। ये पावर होती है। मुझे लगता है कि इंसान के पास चाहे पैसा हो ना हो, इज्जत, इंसानियत हमेशा हम हर किसी के लिए अपने अंदर जगा कर रखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी बातें गलत होगी, और जिसके पास पैसा है उसकी बातें अच्छी होगी। क्या पता अलग भी हो, डिफरेंस भी हो। तो इंसान भी उसी को पूछता है जिसके पास पैसे हो, पावर हो। तो कमाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो, बस सब कुछ हो जाता है जिंदगी में। थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, उसके बाद सब परफेक्ट हो जाता है। जब आप धूप में चलना सीख जाते हो ना, तो छांव आपका इंतजार करता है कि आओ, मैं तुम्हें छांव दूंगा, तुम्हारे लिए हूं मैं यहाँ बैठा, तुम आके इस छांव में विश्राम करो, अपनी पूरी थकान खत्म करो। तो इसीलिए पहले छांव में जाने से पहले धूप में चलना सीखिए, तभी आप छांव में जा पाएंगे। और आज मैंने म्यूजिक प्ले किया आप सभी के लिए, कड़क म्यूजिक पूछा है, तो आपने बताना है। एक बार और प्ले करती हूँ और आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ती हूँ।

फिलहाल हमारे पास मैसेज आते हैं जय प्रकाश पंडित जी कनेक्ट होते हैं बद्दे बिहार कॉलोनी से। गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? ये शायरी लिखते हैं, गुजर जाएगा यह दौर भी गालिब, जरा इंतजार तो रख, खुशी ही नहीं ठहरती तो गम की क्या औकात है। और मैम सेट पर जब आ ही गई है तो इनकी क्या बात है, वाह वाह वाह क्या बात है, क्या लिखते हैं आप शायरी, क्या शायरी का अंदाज है आपका, वाह वाह वाह वाह बहुत अच्छा लिखा है सर आपने।

0: जी, लेकिन भैया आपने अपने नाम नहीं बताया है और राइट आंसर दिया है आपने मुझको क्या हुआ है, यानी कि रुक जा ओ दिल दीवाने। भाई आंसर आपका राइट है लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया है तो गलत बात है, आपने अपना नाम भी जरूर बताना चाहिए। नंबर है 4455। चलिए फिलहाल आप सभी को और मैसेज देखते हैं किनका हमारे पास राइट आंसर पहुंच गया है। फिलहाल तो आप विनर बन गए हैं इवनिंग मस्ती शो के।
1: रुक जा।
0: बबलू सैनी भी राइट आंसर पहुंचाते हैं जी, बहुत ही शानदार वाला आपने राइट आंसर पहुंचाया है जी।
1: लड़की
0: जा ए दिल दीवाने, लड़की है या जादू, जादू ही होती है वैसे लड़कियां देखा जाए तो।
1: रुक जा।
0: संदीप कश्यप जी राइट आंसर के साथ
1: तो मैं जरा।
0: रुक जा ओ दिल दीवाने। दीपक सैनी बुद्धि बिहार से कनेक्ट हो गए भैया राइट आंसर। बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी राइट आंसर के साथ।
1: रुक जा ओ दिल दीवाने,
0: बबली सॉरी ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी। दिल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और गाने का नाम है रुक जा ओ दिल दीवाने। पूछूं मैं जो, पूछ लीजिए जी जो पूछना है। और भैया आप तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जी, ट्रेन है ना यानी कि पटरी चढ़ने से पहले पटरी उतर गई, यानी कि आप थोड़ा सा बस गलत रास्ते पर आ गए। यानी कि ये हमारे पास मैसेज आते हैं मंसूरी कलोनी मुरादाबाद से और इनका कहने की राइट आंसर है तुम पास आए यू मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। चल
1: तुम नजर उसकी है मगर।
0: अगले मैसेज की बात करूं तो हाय कैसी हैं दी, बहुत अच्छे जी, गुड इवनिंग। नेहा स्वाति कनेक्ट होती हैं।
1: बात छेड़ो जरा।
0: संजू जी कनेक्ट होती हैं। हाय रीना दी कैसी हो आप, आ गई आप? हां जी हम आ गए, तभी मेरी आवाज रेडियो पर आ रही है। आपकी राखी कैसी रही? बहुत अच्छी रही जी, बहुत प्यारी रही मेरी राखी। और कितने पैसे मिले हैं? गलत बात, ये कभी नहीं पूछना चाहिए, गलत गलत गलत बात। पैसे मिल जाए उतने रख लेना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए कितने पैसे मिले हैं। क्योंकि ये तो प्यार होता है जी। चलिए बाकी आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप सभी ने राइट आंसर पहुंचाया है और इतने प्यार आप सभी करते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना तो शो करने का और भी डबल मन हो जाता है। भैया नहीं, करते रहो करते रहो, जाओ मत यहाँ से, सच में थैंक यू सो मच तहे दिल से आप सभी का, क्योंकि आप सभी के बिना हम सच में अधूरे हैं। जो लिसनर होते हैं ना बहुत प्यारे होते हैं और आई होप कि आप अच्छे होंगे और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, एंजॉय करिए। और अपनी जिंदगी में बस एक ही बात मैं कहती हूँ और एक ही बात कहना चाहूंगी, कभी हार मत मानिए। मुश्किलें आती है, हर किसी के लाइफ में आती हैं, बस उस मुश्किलों को मतलब उसका सामना करना सीखिए, उसे कभी हार मत मानिए, क्योंकि वो कितने दिन तक आपके पास रहेगा, आज कल परसों, कल न कल हमें सफलता तो मिल ही जानी है। तो मेहनत करते रहिए, कभी हार मत मानिए अपनी लाइफ से। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, कल मिलेंगे और भी ढेर सारी बातें करेंगे और भी ढेर सारी अटपटे चटपटे गानों के साथ मैं कनेक्ट होने वाली हूँ। अभी के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गया।

0: है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले अपना नाम बता देता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन, मेरी प्यारी दोस्त
1: आरजे रीना।
0: यस आरजे रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है और सबसे मजेदार बात स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहे है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए आखिर यह योजना कैसे काम करेगी।
1: जरूर, देखिए दोस्तों इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
0: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
0: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
1: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
0: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
1: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
0: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
1: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
0: दोस्तों आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
1: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा,
0: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं।
1: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
0: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
1: दोस्तों योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
0: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों
1: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
0: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार होंगे
1: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
0: दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गांव या शहर तक सीमित था अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
1: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है, यह सिर्फ भोजन

0: मिठाइयाँ स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
1: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहाँ विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुँचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
0: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
1: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
0: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
1: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
0: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
1: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
0: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
1: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
0: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए।
1: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे, तभी सच मायनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।
0: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: तो मैं हूँ आरजे आनंद
0: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना।
1: फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार और आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: अनु जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद हैं, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी बातें करती हैं, और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील यू नो आएगी बातों में, और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का यू नो एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? सो गाइज, आई होप आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली, और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जिसे पुराने जमाने
0: दाई जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के लिए आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती हैं, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं उन्हें संभाल निकालनी है पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते
1: हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मेयर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकते, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज, वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच, आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है ही, आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
0: ठीक है
1: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है, इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरसनेस जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: गवर्नमेंट इज रनिंग कि
0: एब्सोल्युटली
1: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे। ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3 से 4 हजार रुपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट,
0: फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल,
1: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं, डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे, और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन। ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स आप प्लीज इसे लगवाएं। दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें, प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
0: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है, पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है। आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
1: I would say कि प्लीज लगवाइए, ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही, कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए,
0: Absolutely.
1: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
0: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
1: और पहले जब पैसे दे के लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम, इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
0: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं, ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
1: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना, जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी, मंदिर ऊपर हुआ करते थे तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था, तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं। दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है, मम्मी जब होती हैं तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की, ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल, तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते। थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना।
0: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं,
1: Exactly.
0: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं।
1: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज, आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब बीमारियां हैं, अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की
0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली पर मिलने वाले मौजूदा सब्सिडी जारी रहेगी, जिससे परिवारों को सब्सिडी के फायदे और सोलर पावर से होने वाली बचत दोनों का लाभ मिल सकेगा।
4: हमारा टारगेट हाई है, हमने दिल्ली की जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन सभी पे ऑलरेडी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का काम जारी है और वेंडर जो है इसमें पहले 5 सालों तक फ्री O&M देगा। हमारा फोकस जो है लॉन्ग टर्म इफेक्टिव फंक्शनिंग पे है, रेजिडेंशियल सोलर नेट मीटरिंग प्रोसेस से जो पहले प्रोसेस होता था 75 दिन का, उसको भी हमने घटा के 25 दिन पे ले आए हैं ताकि इस सारे प्रोसेस को एक्सपीडाइट हम कर सकें।
3: इस अवसर पर दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुफ्त बिजली का इस्तेमाल राजनीतिक डर फैलाने के लिए किया, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार इसे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और परिवारों के सशक्तिकरण का माध्यम बना रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज राजधानी के यशोभूमि में भारत इलेक्ट्रिसिटी पावर जेन इंडिया और इंडियन यूटिलिटी वीक के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि ये कार्यक्रम देश के ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लचीलापन तथा विकसित भारत के विजन पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा परिसर में एक अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को इस ऐतिहासिक स्थल के समृद्ध इतिहास, संवैधानिक विरासत और स्थापत्य धरोहर को जानने समझने का अवसर प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट।
5: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सचिवालय के युवा संपर्क कार्यक्रम के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए जानकारी दी कि परिसर को आम जनता के लिए शैक्षिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित संग्रहालय में दुर्लभ ऐतिहासिक कलाकृतियों, अभिलेखीय दस्तावेजों और आजादी से पूर्व तथा आजादी के बाद विधानसभा के विकास क्रम को दर्शाने वाली संवादात्मक प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जाएगा। वर्ष 1912 में निर्मित इस ऐतिहासिक स्थल के कुछ हिस्सों को सुव्यवस्थित और विषय वस्तु आधारित सार्वजनिक स्थान के रूप में विकसित कर सचिवालय का उद्देश्य आगंतुकों को राष्ट्र के विधायी अतीत के महत्वपूर्ण और आधारभूत पड़ावों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है।
6: न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम के दायर आवेदनों में उल्लेखित छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। न्यायालय के अनुसार ये आदेश उन विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जो सद्भावना के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 से 25 जुलाई के बीच प्रदर्शन की घटनाओं से जुड़ी कोई नई प्राथमिकी दर्ज न करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में मौजूद 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी, जिन पर पहले से ही संगीन आपराधिक मामले हैं। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा के रद्द होने के कारण आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए 3 महीने के भीतर एक नीति बनाई जाएगी। पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी का बयान भी दर्ज किया, जिसमें पार्टी ने इस महीने की 5 तारीख को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की थी। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
3: केंद्र सरकार ने राजधानी में प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली को 1000 मीट्रिक टन प्याज आवंटित करने का फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत उचित मूल्य वाली दुकानों के जरिए ग्राहकों को 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज मिलेगा। इसके अलावा सभी 13 जिलों में उचित मूल्य की दुकानों और वैन के माध्यम से भी प्याज बेचा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्याज की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी नजर रख रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि राजधानी में किसी भी हाल में प्याज की कमी न हो और लोगों को जरूरी खाने पीने की चीजें सही कीमत पर मिलती रहें। इस बीच देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज प्रमुख बाजारों में भेजा जा रहा है। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों के से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली नगर निगम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि राजधानी में हर दिन भारी मात्रा में कचरा निकलता है, इसलिए नए 4 बिन सिस्टम यानी 4 डिब्बे वाली व्यवस्था के जरिए कचरे को स्रोत पर ही अलग करने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से कचरे को डंपिंग साइट पर फेंकने की सोच को बदलकर कचरे से संपदा बनाने की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के मध्य और बाहरी उत्तर क्षेत्र की टीमों ने अपने अपने उपायुक्त की अगुवाई में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने और पहचाने गए हॉटस्पॉट पर आगे की कार्रवाई के लिए मिलकर एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली नगर निगम ने बताया कि इस दौरान मिलकर प्लानिंग करने, असरदार तरीके से काम लागू करने और साफ हवा तथा सेहतमंद शहरी माहौल के लिए लगातार कोशिशें करने पर चर्चा की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कल नई दिल्ली में प्रवर्तन कार्यबल ईटीएफ की 138वीं बैठक आयोजित की। इस बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण और नियमों के पालन की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
7: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि 16 दिनों की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने प्रमुख क्षेत्रों में 121 निरीक्षण किए। आयोग ने निर्धारित मानदंडों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन को मजबूत करने, समय पर जांच करने और काम करने वाली एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने पर बल दिया। आयोग ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए औद्योगिक इकाइयों, निर्माण तथा विकास कार्यों, डीजल जनरेटर सेट और सड़क निर्माण कार्यों सहित सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में त्वरित परिवर्तन कार्रवाई, सख्त अनुपालन निगरानी और निरंतर निरीक्षण पर विशेष बल दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस चलाने वाले सभी ऑपरेटर्स के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यातायात विभाग से जारी निर्देशों के अंतर्गत यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित सुरक्षा मानक और संचालन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अंतर्गत बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट रखना जरूरी है। इसके अलावा सभी बसों में अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट का अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। साथ ही बस ड्राइवर और स्टाफ के लिए शराब तथा नशीले पदार्थों का सेवन कर गाड़ी चलाना सख्त मना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्तों और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर तथा मैनपुरी के पुलिस अधीक्षकों को ग्रेटर नोएडा से बस में सवार हुई एक लड़की के साथ चालक और कंडक्टर द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के मामले में नोटिस जारी किया है। ये घटना पिछले महीने की 4 तारीख को हुई थी। आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जांच की स्थिति और पीड़िता को दिए गए मुआवजे का विवरण शामिल हो। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने आज बताया कि डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थाल्मिक साइंसेज के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने पिछले साल 2200 से ज्यादा कॉर्निया दान किए, जिनमें से लगभग 82% कॉर्निया का इस्तेमाल किया गया। 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर आरपी सेंटर की प्रमुख डॉक्टर राधिका टंडन ने कहा कि सेंटर का इस्तेमाल दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है।
8: ऑलमोस्ट 1700 पेशेंट्स को कॉर्निया ट्रांसप्लांट मिला है। ये देश का सबसे ज्यादा है, क्योंकि नेशनल एवरेज है अबाउट 50% यूटिलाइजेशन, क्योंकि हम रेफरल सेंटर है और हम आधुनिक तरीके से ऑपरेशन करते हैं, प्लस हमारे पास फुल रेंज ऑफ पेशेंट्स होते हैं, उनके बीमारी के अनुसार ट्रांसप्लांट होता है।
3: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में कल आयोजित होने वाले मोटर कारकेड रिहर्सल के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहेगा, जिनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और 12 खंबा रोड सहित अन्य सटे मार्ग शामिल हैं। यातायात पुलिस ने यात्रियों, विशेषकर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और अस्पताल जाने वालों को यात्रा से पहले योजना बनाने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। साथ ही वाहन चालकों से यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने और संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की अपील की गई है। यात्री संबंधित यातायात अधिक जानकारी दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में आज दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के द्वितीय संशोधन को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती खर्च के मिलेगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा विधानसभा परिसर में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच नीट पेपर लीक के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया। और दिल्ली यातायात पुलिस ने मोटर कारकेड रिहर्सल के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: अपने बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं तो फिर देख लीजिए इश्क में हारा ऐसा दिखता है। इसके आगे कि अपने शहर मुरादाबाद के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जब अब भी तेरी याद में हैं तो क्यों तेरे लिए सबसे बाद में हैं। हम जब अब भी तेरी याद में हैं तो क्यों तेरे लिए सबसे बाद में हैं। खुशी होगी तुम्हें ये जानकर हम तेरे ही शहर मुरादाबाद में।
6: हाँ जी, कैसे हालचाल है? गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है एंड आई रियली होप सब बढ़िया ही होंगे। देखो यार, शाम होते होते ना मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि यार काश कोई शेर व शायरी सुना देता तो नींद थोड़ी अच्छी आ जाती। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि शेर व शायरी सिर्फ नींद के लिए सुनी जाती है, नहीं भाई, ये ना दिल को सुकून देती है। शेर व शायरी जो होती है ना भाई, उसकी वाइब ही अलग होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो मैंने सोचा इस बात को जरा थोड़ा सा आज और बढ़ाते हैं, हालांकि नए रूप में लाने की कोशिश की है और कुछ ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में अपने साथ। हालांकि इनको आपने पहले भी सुना है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज वो कुछ नया लेकर आए हैं और मेरे साथ तो आई थिंक फर्स्ट टाइम होने वाला है उनको और मेरा कॉन्वर्सेशन, तो आई एम सुपर हैप्पी। और साथ में हमारी हवा हवाएं, आई मीन टू से अखिल भैया भी, जो अपने लैपटॉप में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं भाई, मतलब ही इज अ बिजनेस मैन यार, बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। चलो आगे बढ़ते, वार्म वेलकम करेंगे। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में राघव जी। राघव भाई बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, कैसे हाल चाल है आपके?
5: थैंक यू आनंद जी, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर?
6: मैं बढ़िया हूँ सर, एंड डोंट कॉल मी सर, हम सब ऐसे भाई भाई वाले हैं और एक महफिल जमाने आए तो यहाँ पे कोई नहीं, कोई आप नहीं, मतलब एक फ्रेंडली माहौल बनना चाहिए यार,
7: क्योंकि भी नहीं है, क्योंकि सर ही सर है।
6: हाँ मैम नहीं है, नहीं मेरा सर वैसे सही है। ओके ओके,
5: मैम का तो अभाव ही है जीवन में सर।
6: क्या बात है। तो राघव जी थोड़ा सा अपने बारे में प्रो दीजिए भैया।
5: आई थिंक मुझे पहले भी काफी लोगों ने सुन रखा होगा।
6: एब्सोल्युटली
5: आनंद तो आप हैं ही। हाँ। आरजे राज जी जो हैं उनके साथ में रहता था, हमारी जुगलबंदी रहती थी पोइट्री की।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: और मेरा नाम राघव गुप्ता है, शहर बात से बिलोंग करता हूँ, पेशे से वकील हूँ और आज शाम आपकी खिदमत में।
6: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ यार, आपने बताया आपका प्रोफेशन कुछ और है, वकील, मतलब वकील लोग इस लड़ते हैं शेर व शायरी भी करते हैं, ये मुझे पता नहीं था यार, गलती से कहीं अगर कुछ लिख दिया, लिखने की जगह कुछ दिल की बात लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगा
5: ऐसा। सर जो दलीलें जज के सामने पेश कर रह जाती है वो शायरी के तौर पर कह देते हैं।
6: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा पहले आपका इंटरव्यू ले लूँ, उसके बाद शुरू करेंगे सिलसिला। ये आपको आया कहाँ से, मतलब कि यार मुझे ये शेर व शायरी में भी करना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप लॉ कर रहे हैं आपका तो सारा फोकस वहाँ होना चाहिए, लेकिन ये वाला कैसे मतलब हुआ, पहले ये आया या पहले लो आया, मेरे को ये जानना है।
5: नहीं नहीं, पहले मैंने लिखना काफी समय से ही शुरू कर दिया था।
6: अच्छा।
5: मतलब 10th क्लास के बाद जब गैप मिलता है आपको, रिजल्ट का जब वेट होता है, तभी मैंने पोएम्स लिखना शुरू कर दी।
6: अरे वाह।
5: लेकिन फिर मैं पहले बीच में रैप सॉन्ग्स भी लिखे और उसके बाद फिर मैं पोइट्री की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि काफी मुझे सुकून देती है।
6: अरे वाह,
5: और अगर देखा जाए तो कि मेरी मम्मी को पढ़ने की आदत काफी है, वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ती है।
6: ओ, वाव।
5: तो पुरानी किताब को एकदम छोड़ती नहीं है हिंदी की, तो मुझे वहां थोड़ी आदत लगी,
6: मतलब इंस्पिरेशन मम्मी से मिली है, थोड़ा सा बैकग्राउंड कह सकते हैं वो पढ़ने पढ़ाने वाला।
5: बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे दादा तो उर्दू और हिंदी दोनों जानते थे।
6: अरे वाह क्या बात है।
5: उनको काफी शौक था शायरी गजल सुनने का।
6: तभी आपके तलफ्फुज़ इतने ज्यादा स्ट्रांग है भाई, हम भी हिल रहे हैं आज बैठे बैठे। चलो कुछ नया सीखेंगे। तो राघव भाई थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से बताया एंड आई थिंक मुझे लगता है कि यार बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिनका दिल टूट जाता है या थोड़े से जो प्यार शियार करते हैं वो कुछ ज्यादा शेर व शायरी करते हैं, क्या ये सच बात है?
5: देखिए अगर हम गजल की और शायरी की बात करें तो इनिशियली इसकी शुरुआत लड़की की तारीफ करने से हुई थी।
6: ओके
5: ठीक है, किसी आप कन्या की तारीफ कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका की तारीफ, अपने आप की आप तारीफ कर रहे हैं
6: जी,
5: शुरुआत वहां से हुई थी। फिर उसके बाद उसको अलग अलग, आप ये कह सकते हैं अलग जोन में उसको बांट दिया गया।
6: ऑलराइट, कहीं अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट
5: जी,
6: कर दिया।
5: जी, कहीं सियासत वाली बात कह दी।
6: हाँ।
5: कहीं गुरूर वाली बात कह दी आपने, ठीक है, और कहीं परेशानी आपने झलका दी, इंसानी जो एक परेशानी है उसको झलका दिया, तो इस स्तर में बढ़ता गया। तो अब आज के टाइम पे ऐसी कोई ब्रांच नहीं है कि आप उसको छोड़ सके, ठीक है, जैसे पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं, ऐसे ही अब लिखने की अलग अलग शाखाएं, आप जिस मर्जी टॉपिक पर लिख सकते हैं।
6: 100%
5: तो ये डिपेंड करता है लिखने वाले पे, वो किस तरह से किस बात को बयां करता है। बस ये है, एक फाइनल एम हर राइटर का ये रहता है कि वो सामने सुनने वाले तक पहुंच जाए।
6: वेरी गुड यार, एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें भाई।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
6: चलो जी, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। बातें चल रही हैं इतनी खूबसूरत आज की शाम, और ये महफिल और भी खूबसूरत होगी क्योंकि राघव जी हमारे बीच में है, अखिल भैया भी है, तो कुछ शेर व शायरी करेंगे, कुछ उनकी दिल की बात सुनेंगे। फिलहाल आप सुनिए ये दिल से जुड़ा गाना, लौट कर आते हैं थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन जी। राघव जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में। आई एम श्योर आपको भी आनंद आ रहा होगा आनंद के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपके नाम के साथ ये महफिल सूट कर रही है बिल्कुल।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल तो सूट कुछ और नहीं कर रहा है, वो जो लैपटॉप लेके भैया ऑफिस में नाच रहे हैं ना भैया, भरतनाट्यम मत करो, हम आज शेरो शायरी सुनेंगे। सो आगे बढ़ते हैं राघव जी। अब जो है मैं चाहूंगा कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो ऑफकोर्स आप खाली हाथ तो नहीं आते हो यार मेरे ऑफिस में, कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हो। तो आज की शाम जो है आप क्या लेकर आए हो मेरे लिसनर्स के लिए, हमारे एफएम मुरादाबाद के श्रोताओं के लिए, क्या आप सुनाने वाले हो?
1: जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक बहुत फेमस पोएट हैं
0: जी,
1: जवाद शेख
0: जी,
1: पाकिस्तान के हैं
0: जी,
1: उनकी कुछ लाइनें मेरे जहन में आ गई थी।
0: अरे वाह,
1: तो मैं अभी आपने जस्ट पूछा तो मैं उनको ही कहता हूँ कि
0: सो राघव भाई की जो बात है ना वो मैं डेफिनेटली पूरी सुनना चाहूंगा और जरूर सुनूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो हवा हवा है, इन्होंने कहा भैया मेरा माइक रेडी है तो जरा मेरे को तुम थोड़ा सा बोलने का मौका दो। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए आप कैसे हैं?
2: धन्यवाद आनंद जी, आपने इतना बेहतरीन स्वागत किया है
0: जी।
2: हवा हवाई हमें बोल के बिल्कुल याद दिला दिया है कि एक आप ही हैं जिन्होंने नया नाम रख दिया है।
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज आप कभी गाड़ी में, कभी गाड़ी के बाहर, कभी स्कूटी में, कभी अपने जंक्शन पे, कभी हमारे स्टेशन पे, तो इतने सारे बंदे, एक ही बंदा इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होगा, उसका नाम तो यही होना चाहिए यार भाई।
2: तुम नाराज हो तो ये दिल उदास है,
0: आहा हाय हाय,
2: तुम पास हो तो हर लम्हा खास है।
0: अरे वाह क्या बात है,
2: तुम ही है ये जिंदगी मेरी, तुम बिन हर खुशी बेकार है।
1: वाह
0: वाह वाह वाह, क्या
1: बात है सर।
0: तो ये खुशी किसके लिए बेकार है, भाभी जी के लिए या अपने लिए, आप किसके लिए बोलना चाहते हो?
2: कुछ तो सरप्राइज है ना, तो तुम तो यहाँ पे भी जो है
0: टांग खींच रहे हो।
2: यहाँ भी
0: देखो ऐसी बात है, जब शेरो शायरी या पोइट्री चलेगी तो भैया उसमें तो पता चलेगा किसके लिए कौन क्या बोल रहा है।
2: दोस्तों और... मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, ये जो जग्गा जासूस है ना ये हमारा आनंद ही है।
0: नहीं देखो ऐसा है ना, मैं चाहता हूँ कि अंदर की बातें भी थोड़ी सी बाहर आ जाएं, जब बात दिल तक पहुंच जाती है तो जुबा पे भी आ जानी चाहिए, क्यों राघव भैया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और लेखक का तो काम ही यही है।
0: एब्सोल्युटली यार, तो राघव भैया मैं थोड़ा सा आपसे भी सुनना चाहूंगा, आपकी तरफ हम शिरकत करेंगे, कुछ आप भी पेश कीजिए जनाब
1: जी। वो जो लाइन थी,
0: हाँ मुझे लगता है कि शायद आ गई है,
1: हाँ
0: में वापस,
1: बिल्कुल जहन में,
0: प्लीज हम उसका इजहार
1: कहते हैं कि
0: जी
1: आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं।
0: अरे वाह,
1: आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं
0: जी,
1: मगर ऐसा ना कहिए वफा कुछ भी नहीं।
0: अरे वाह,
1: मगर ऐसा ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं, आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर, आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर, इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं।
0: क्या बात है,
1: और कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं।
0: क्या बात है,
1: हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं, अब क्या मैं अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं, मान लेता हूँ शख्स में था कुछ भी नहीं, और मैंने दुनिया से अलग रह के भी देखा जवाब, ऐसी मुजोर उदासी की दवा कुछ भी नहीं।
0: अरे वाह,
1: ऐसी मुजोर उदासी की दवा,
0: फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया,
1: बहुत ही बहुत मुझे पसंदीदा गजल लगती है जवाद शेख की। और एक आपको आज के टाइम का पता होगा, जो कोर्स चलता है वो सेमेस्टर वाइज चलता है,
0: करेक्ट,
1: ठीक है, और वहां मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैं तब नैनीताल में रहता था मास्टर्स डिग्री के लिए, तब मैंने ऑब्जर्व किया कि शहर पे कोहरे की चादर हो तो कुछ नहीं दिख पाता है, शहर पे कोहरे की चादर हो तो कुछ नहीं दिख पाता है, धूप आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है, आजकल की मोहब्बत के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा सेमेस्टर पूरा नहीं होता, इनका प्यार बदल जाता है।
0: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, और एक्चुअली ये सच्चाई भी है राघव भाई, जो आपने बोला ये सच्चाई से रूबरू कराने वाली बात है
1: जी, मैंने भी कहा तो मैंने बदलते हुए देखा,
0: बिल्कुल सही कहा,
2: वो ऐसे ही होता है, सेमेस्टर में कभी कभी बैग भी लग जाती थी मगर तब भी चल रहा है मामला,
1: बैग से याद आया, और उसी सेमेस्टर में ब्लॉक भी हो जाते थे, तब मैंने लिखा था कि खिड़की से झांक कर देखो दिख जाएगा आशिक तुम्हारा।
0: अरे
2: क्या बात,
1: खिड़की से झांक कर देखो दिख जाएगा आशिक तुम्हारा, बस आज के लिए अनब्लॉक कर दो, आज जन्मदिन है तुम्हारा।
0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, मुझे लग रहा है कि आज राघव जी चुन चुन के आपके लिए शेरो शायरी लेकर आएगा। इस अगर आपके पास भी कुछ अच्छी थॉट है, अच्छी शायरी है, तो डेफिनेटली आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, एफएम मुरादाबाद की ऑफिशियल आईडी पे, एफएम मुरादाबाद 9.6 की ऑफिशियल आईडी है, वहां जाके आपको जो भी लगता है, व्हाट एवर यू वांट टू डू, आप जरूर शेयर करें। तो राघव जी आगे क्या क्या कहती है आपकी शेरो शायरी?
1: आपने ये देखा होगा बहुत से लड़के या बहुत से प्रेमी अपनी प्रेमिका को पसंद करते हैं, तो अगर वो डिनाई करते हैं सामने से, प्रेमिका डिनाई करती है तो पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एक मेरी कोशिश देखिएगा, मैंने लिखा कि मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो,
0: वाह,
1: मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो, ये तुम्हारी मर्जी, तुम जिसके साथ में रहो वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना, वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना, मैं तो यही चाहूंगा तुम फायदे में रहो।
0: अरे वाह क्या बात,
1: मैं तो यही चाहूंगा तुम फायदे में रहो।
2: इन्हीं बातों पे एक बात याद आ रही है।
0: स्वागत जी, स्वागत है।
2: मतलब थोड़ा ऐसा है, अटपटा सा है, मगर चलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: सच्ची मोहब्बत चेहरे से नहीं होती। मतलब जो आजकल मोहब्बतें चल रही है ना
1: जी,
2: वो आजकल लाइक वाइक तभी मिलते हैं जब आपके सामने चेहरा बिल्कुल एकदम गोरा हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: सच्ची मोहब्बत चेहरे से नहीं होती,
1: नहीं होती।
2: सच्ची मोहब्बत दिल से होती है। वो जो बिना कहे समझ जाए हर दर्द, वही तो असली हमदर्द होती है।
1: वाह
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। उस हमदर्द को अपने पास रखना थोड़ी देर, नहीं तो मुझे दर्द हो जाएगा आपकी शायरी सुन के। तो एक काम करते हैं गाइस, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। आप सुनते रहिए आपकी शायरी का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एमएफएल। ऐसी जमती रहेगी, कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में महफिल जमा रहे हैं राघव जी। राघव जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरे को दिमाग से आउट हो रहा है।
1: जी, मैं राघव गुप्ता लिखता हूँ।
2: अच्छा, गुप्ता जी, हमारे गुप्ता जी,
1: क्या देश के अच्छे नागरिक बनिए।
0: बहुत ही बढ़िया। और गुप्ता जी जब यहाँ पर पधार रहे हैं तो वो बढ़िया बढ़िया शेरो शायरी से जो है आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो गाड़ियों में अगर आप हैं गाड़ियों में तो वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ा लो, कुछ अगला और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे उनके चेहरे की स्माइल से लग रहा है कि कुछ तो तगड़ा सुनाने वाले हैं।
1: एक बहुत कॉमन चीज आपने देखी होगी, अगर व्हाट्सएप पे हम या फेसबुक पर होते हैं तो सबसे पहले हम किसी की प्रोफाइल चेक करते हैं तो डीपी जो डिस्प्ले प्रोफाइल है वो देखते हैं।
0: आजकल हालांकि उसका स्क्रीनशॉट लेना अब अलाउड नहीं है, अब आप ले नहीं सकते हो, बंद हो गया, सिर्फ अंधेरा आएगा, पिक्चर नहीं आएगी।
1: लेकिन डीपी अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो डीपी दिख जाती है।
0: करेक्ट।
1: तो है कि इंसान दिल का कमजोर है मगर मकान पक्का बना लिया।
0: क्या बात,
1: इंसान दिल का कमजोर है मगर मकान पक्का बना लिया। वो जब मेरे साथ था तो सबसे छिपाया, वो आज जिसके साथ है उसे डीपी बना लिया।
0: अरे
2: डीपी अब ये राज खोली दो।
0: लेकिन यार राघव जी जो आपने बात बोली ये एक्चुअली बिल्कुल सच्चाई से रूबरू करा देती है। आपकी सारी बातें, सारी जितनी भी आप बातें बोल रहे हो ऐसा लग रहा है कि एकदम रिलेटेबल है। ऐसा लग रहा है कि आपने चीजों को सोच सोच के लिखा है। ये आपने खुद ने लिखा है?
1: जी बिल्कुल, मेरा ही लिखा है।
0: अरे वाह क्या बात है, नहीं सकता ओरिजिनल है इसका मतलब।
2: बिल्कुल
0: बहुत ही बढ़िया। और क्या कुछ स्पेशल सुनाने वाले हो?
1: और मुझे मालूम है हर कोई जिंदा रह जाता है।
0: जी
1: मुझे मालूम है हर कोई जिंदा रह जाता है जुदा होने के बाद किसी के बिना, जैसे तारे निकल आते हैं आसमान में चांद के बिना।
0: क्या बात,
1: मुझे आज उसका एक खत आया है जिसमें लिखा है राघव मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना।
0: वाह,
1: राघव मैं खुश नहीं हूँ।
0: क्या बात है,
2: जी लिखना भूल गई वो उसमें।
0: यार लेकिन मानना पड़ेगा राघव जी, आपकी बातें और आपके अल्फाज एकदम मतलब दिल को छू जा रहे हैं। गाइस आपको भी मजा आ रहा है ना?
2: बहुत
0: ही बढ़िया।
1: आप मुझे ऐसा लगता है फिर आपने भी कहीं ना कहीं स्टेज पे कुछ ना कुछ इनमें से जो मैंने कहा है वो कहीं ना कहीं आपने
2: इनके साथ
1: फेस किया होगा।
2: अरे इनके साथ तो हर बार फेस करते ही आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, अब देखिए ऐसा होता है ना, जब आदमी बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो चीजें उसके साथ धीरे धीरे चल रही होती है। क्यों राघव जी,
1: बिल्कुल
0: समय के साथ हर किसी के साथ होती है।
1: बिल्कुल सर।
0: और ये जो समय है ना ये दोबारा नहीं आने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम में आपको जो चीज मिल रही है ना उसका आनंद उठाओ।
2: आनंद जो तुम्हारी
1: आनंद उठाओ की बात से याद आया कि आपको ना हर चीज के लिए व्याकुल नहीं हो जाना है।
0: ये भी बात
1: जो जीवन में घट रहा है उसके पीछे आपको पढ़ नहीं जाना है, उससे समझौता आपको करना ही होगा, मन को आपको समझाना होगा। ठीक है, और इसीलिए शायद लिसनर्स के सामने हम हैं जो हमें सुन पा रहे हैं।
2: आनंद जी के मन की बात में थोड़ी सी पढ़ पा रहा हूँ। आनंद जी कहना चाह रहे हैं रूठना भी जरूरी है मोहब्बत में।
0: अरे वाह,
2: तभी तो मनाने का मजा आता है।
0: अरे वाह,
2: जो बिना कहे समझ जाए दिल की बात वही तो सच्चा हमसफर कहलाता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपके हमसफर से मैं आज ही बात करता हूँ।

0: आना चाहूंगा जी, आप प्लीज कुछ सुनाइए बढ़िया सा। और यार माहौल वैसे इंटरेस्टिंग बना हुआ है, नो डाउट, बहुत अच्छा लग रहा है राघव जी। गाइस अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पर्सनली राघव जी से भी जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम आजकल बहुत वायरल हो रहा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा एक बार आप बता दें अपना इंस्टाग्राम भी, भाई जरूरी है
1: जी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यूजर नेम है adv.raghavgupta।
0: अच्छा मतलब अपना प्रोफेशन सब कुछ उसमें ऐड कर दिया आपने, शॉर्ट शॉर्ट
1: मल्टीपल पेजेस नहीं बनाए, मैंने एक ही पेज बनाया।
0: वेरी नाइस यार, वेरी।
1: तो adv.raghavgupta, और अगर आप सर्च करेंगे एडवोकेट राघव गुप्ता से तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाऊंगा।
0: दैट्स वेरी नाइस।
1: वरना आप आनंद जी को मैसेज भेजिएगा, FM पर पढ़कर हमको बताएंगे जरूर।
0: अरे डेफिनेटली बताएंगे, उसके लिए आपको सुनना भी तो पड़ेगा।
1: मैं सुनता हूँ सर, मैं सुनता हूँ सर।
0: अब आप ये मत बोलिए, पड़ोसी भी सुनता है मेरा, इसलिए
1: ये सच बात है। मैंने आपको अभी ऑफ माइक भी बताया था, मैंने अभी आपको
0: ये एक दो बार और आपने बताया हम कहीं शादी में। हम मजे की बात पता है क्या है गाइस, इनकी बात रोक के कह रहा हूँ मैं, हम जब भी मिलते हैं किसी दावत में मिलते हैं, वैसे तो खाली में नहीं मिलते हैं। ये आई डोंट नो, ये हुआ है हमारे साथ राघव जी एक दो बार।
1: ये इत्तेफाक है कि जब भी मैं आपसे मिला हूँ तो आपने मुझे खाने का सौभाग्य प्राप्त कराया है।
0: इसका मतलब ये कि आज हम खाने का सौभाग्य बिल्कुल आपको प्राप्त कराएंगे। आप आए
2: जो पार्टी है वो आनंद जी जो है, मतलब
0: मैं भी नहीं दे रहा हूँ, वो हम शादी में मिल रहे होते हैं,
1: हमारा बॉन्ड ही ऐसा है ना,
2: दोनों का लिफाफा एक हो जाता है उस समय।
0: नहीं यार वो बात अलग है, नहीं ऐसा नहीं होता, राघव जी का अपना होता है, मेरा अपना होता है, वो बिल्कुल नहीं है। और राघव जी
1: अपनी अपनी है लिफाफा।
2: देखिए साहब कैसे आप सभी लोग सुन रहे हो, इस बात को कैसे छुपाया जा रहा है ये आप आज सब जान सकते हैं कि आनंद ने और गुप्ता जी ने दोनों ने कैसे इस बात को एकदम पानी डाल दिया।
0: बिल्कुल भैया, और आप जो है पानी डाल के आग मत बुझाओ, माहौल को गर्म ही रहने दो अभी। सो राघव जी अभी आपने बताया ना मुझे एक दो शादियों में बताया था कि आपके पड़ोसी भी रेडियो सुनते हैं।
1: बिल्कुल, मैं जहाँ रहता हूँ टाउन हॉल जगह है मुरादाबाद में, तो वहाँ पर ही मेरा निवास है, उसके बराबर में एक परिवार है, तो वो मतलब मॉर्निंग में 8-8:30 के आसपास जब मैं 9 बजे करीब निकल रहा होता हूँ घर से ऑफिस के लिए, तब मैं सुनता हूँ कि आपकी आवाज आ रही होती है। तो मैंने एक बार कहा भी है बराबर में जो पड़ोस में बड़े भैया हैं, तो उनको बताया था मैंने कि ये हमारे मित्र हैं और काफी अच्छा बोलते हैं आरजे आनंद जी, ठीक है। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आपको परिचित हूँ।
0: ऐसा होता है भैया ऐसा, क्योंकि जो लोग सुनते हैं ना जब आप उनको बताते हैं उनको लगता नहीं है थोड़ा,
1: पर वो डेली आपको सुनते हैं।
0: क्या
1: मॉर्निंग में वो डेली सुनते हैं, आप शाम कुछ FM यूज करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है ना थोड़ा पुल होता है।
0: एब्सोल्युटली, ठीक है। और तो बंदे को अपडेट चाहिए होती है।
1: हाँ,
0: भाई
1: बिल्कुल,
0: एकदम से वो क्या होता है ना न्यूज पेपर खोलने का मन नहीं करता, तो उसने अपना ट्यून कर दिया और अपने काम काज में
1: वो, हाँ बिल्कुल, कार्य करते हुए आपको सुन लिया, ये हो रहा है।
0: बड़ी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं राघव जी, हमें स्टूडियो से बाहर भगाने की इरादा है क्या?
1: नहीं,
0: मतलब इतनी बढ़िया हिंदी आप बोलोगे तो कल ऐसा ना हो कि बॉस बोले बेटा आनंद तू बाहर, राघव जी तुम अंदर आओ, तुम्हारा टिकट जो है बाहर का है, मतलब इतना बढ़िया।
1: आप राघव गुप्ता देख के राघव चड्डा समझे क्या?
0: अरे नहीं यार, राघव चड्डा तो उनकी बात ही मत करो यार। चलो बैक टू पॉइंट यार, बातचीत के साथ साथ जो है
1: पॉलिटिकल टॉक्स,
0: समझदार है आप, समझ गए मेरी बात को। सो बैक टू पॉइंट, अब एक काम करते हैं कुछ बढ़िया सा सुन लेते हैं राघव जी से, और मैं चाहूंगा कि यार हमारे लिसनर के लिए कुछ बढ़िया सा सुना दो यार, जो लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। और आजकल ना मुरादाबाद के अंदर एक समस्या बड़ी हो रही है जाम की, शाम को जब आप सड़कों में निकलेंगे तो तगड़ा जाम मिलता है, तो ऐसे में वो आपकी आवाज,
1: वो तो कॉमन है ना, शाम को तो जाम चलता ही है,
0: वो तो चलता ही है। ओ माई गॉड, समझ गया मैं, हाँ थोड़ा सा ना समझ हूँ बट अब समझदार बन गया हूँ मैं। हाँ तो कुछ सुना दो यार हमारे लिसनर्स के लिए।
2: पूरा बोल लेना ट्रैफिक जाम।
1: ट्रैफिक जाम, यस बिल्कुल।
0: अखिल जी आपकी बातों ने जो है ना हमें भी थोड़ा सा पूरी बात कहना भुला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि जब एक प्रेमी के अंदर दर्द होता है ना और वो इस स्थिति में होता है या उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है वो और भुला भी नहीं पा रहा है, तो उस एक स्टेज में लिखा था मैंने कि तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, हिजर के दिन भी हमने जुदाई की बात नहीं की, तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, हिजर के दिन भी हमने जुदाई की बात नहीं की, क्या इतने गैर हो गए हम तेरे लिए, करीब से गुजरे तो तूने बात नहीं की, करीब से गुजरे तो तूने बात नहीं की, और कोई कैसे कोई इतना करीब आ गया तेरे, तू तो कहती थी ना किसी से बात नहीं की, तू तो कहती थी ना किसी से बात नहीं की, और लग जाए सर के बल चोट हमें, लग जाए सर के बल चोट हमें, भूले तुझको जैसे कभी बात नहीं की, भूले तुझको जैसे कभी बात नहीं की।
2: बहुत ही बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रेमी को समझ नहीं आ रहा कि वो डोलो खाए या डिस्प्ले। दर्द बहुत है,
0: क्या बात है। अखिल जी आप भी कुछ बढ़िया सा सुना दीजिए।
2: मोहब्बत की राहों में क्या क्या सितम सहते हैं, हम तो तैयार बैठे हैं साहब, आप जी, जी, बस बोलो सुना दो, हम तो एकदम
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सेवा में।
2: हाँ गूगल को लेके बिल्कुल सामने बैठे। मोहब्बत की राहों में क्या क्या सहते हैं, जो प्रपोज करते हैं वही ब्लॉक भी रहते हैं,
0: अरे
2: जिन्हें प्रपोज कर दिया वही ब्लॉक हो जाते हैं,
0: अगली बार
2: वो कहती थी तुम ही हो मेरी दुनिया, अब वही स्टेटस लगाती है फीलिंग सिंगल अगेन।
0: चलिए मैं आपसे बाद में पूछूंगा कौन है जो आपके लिए सिंगल बैठी है। आगे आगे बढ़ते हैं। तो श्रोताओं देखिए, राघव जी के साथ यानी राघव गुप्ता जी के साथ हमारी जो ये कॉन्वर्सेशन है वो चलती रहेगी। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे आके आप हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं बहुत ईजी है, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से आपको मिलता हूं। डोंट फॉरगेट, वहां भी अच्छी चीजें आपके लिए चलती रहती हैं, तो फॉलो कीजिए। ऑफिशियल पेज मिलेगा एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से। कोई आपके आसपास है जो ऐसी शेरो शायरी करता है या कुछ बढ़िया लिखता है तो उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म खुला है। आप हमें इंस्टेंट डीएम करिए और हम जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: वेलकम वेलकम बैक है, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, शाम हो रही है, आई नो दैट आपकी जो शाम है वो और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं साथ में राघव जी हैं, अखिल भैया हैं, और हम तीनों लोग मिलकर आपको थोड़ा सा प्यार वाला एहसास भी दिला रहे हैं। उनकी पोएट्री, उनकी जो शायरी है, वो कहीं ना कहीं आपको फील दे ही रही होंगी, बाकी हमें भी फील आ ही रहा है यार। मतलब अब तो लग रहा है कि यार प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन प्यार में जब दिल टूटता है उसकी फीलिंग अलग होती है। वैसे राघव भाई, आपका क्या मानना है लाइफ में? कुछ लोग कहते हैं एक बार दिल जरूर टूटना चाहिए।
1: मुझे ऐसा लगता है,
0: कुछ लोग ऐसा कहते हैं
2: वो नाम
0: लाइफ में ना एक बार दिल जरूर तोड़ना चाहिए। मैंने क्या कहा है वो डॉक्टर जो कहते हैं दिल में हड्डी नहीं होती, फिर उनसे भी मिलो। आपको क्या लगता है अखिल भाई, सच में
2: दिल टूटना तो नहीं चाहिए, दिल लगाना जरूर चाहिए लाइफ में एक बार।
0: लेकिन जब जो दिल लगाते हैं ना उसके दिल टूट भी जाता है।
1: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कृपा ना अलग अलग प्रकार की होती है जो भगवान आपके ऊपर देते हैं। आपको प्रेम होता है ये अलग प्रकार की कृपा है, और आपका दिल टूटता है ये अलग प्रकार की कृपा है। लेकिन अगर आप चाहे प्रेम में हो या दिल टूटा हो, आपको अपने आप को बनाना ही होगा। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप उसको अपने आप को डिमोलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है।
0: एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ कुछ लोग ना इतना सीरियस वाला प्यार कर लेते हैं कि वो एक ही बंदे में पूरी दुनिया बसा लेते हैं राघव भाई, और वो बाद में बड़ा उनके लिए बहुत तकलीफ वाला होता है।
1: और वो इसके आगे की अगर मैं आपको बात बताऊं, सामने वाले को और तकलीफ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई प्रेम है, ठीक है, एक फीलिंग तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे की लाइफ की केयर बहुत जरूरी है।
0: करेक्ट यार, मतलब मुझे लगता है कि देखो हम प्यार कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला अगर नहीं इतना इंटरेस्टेड है तो हमें भी हम उसे प्यार समझ के भी छोड़ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: बुलाया जा सकता है, बट वही होता है ना कि कई बार ऐसा लगता है हम खुद भी परेशान हैं, कोशिशें करते हैं कि शायद चीजें सही हो जाएं, बट हमें पता है कि वो होंगी नहीं। उसके बावजूद भी हम मशक्कत करते रहते हैं कि शायद।
1: देखिए, आपकी फीलिंग एक अलग साइड है, लेकिन दूसरे की जो सोच है या दूसरे का जो डिसीजन है उसकी रेस्पेक्ट एक बहुत जरूरी है।
0: गॉट इट यार।
2: पहली मोहब्बत की खुशबू भी अजीब होती है।
0: वाह,
2: दिल धड़कता है मगर बात नसीब होती है।
0: वाह वाह वाह,
2: वो नाम सुनते ही मुस्कुराना पड़ता है
0: जी,
2: क्योंकि पहली मोहब्बत कभी गरीब नहीं होती है।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तभी मैं कहूँ आपके पास इतनी बड़ी कार कैसे है, समझ चुका हूँ मैं। मतलब पहली मोहब्बत इनकी बहुत अमीर वाली थी, समझ चुका हूँ मैं अखिल भाई।
2: अमीरी,
0: अमीरी मैं गली भाभी से मिलता हूँ, मैं गली भाभी से
2: मिलूंगा। भाभी पे क्यों पहुंच जाते हैं,
0: जरूरी है ना इतनी सारी मोहब्बत।
2: तुम्हें मुस्कुराता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं?
0: नहीं, बहुत अच्छा लग रहा, वो बात अलग है, वो बात अलग है।
1: इस कन्वर्सेशन में भी ना भाभी जीत गई। डर तो डर दिख रहा है ना, भाभी जीत गई।
0: वो कुछ सुन रही हूँ, नहीं पता है, डर तो है। आज घर पे आ जाओगे फिर शाम को तो सारी अमीरी और गरीबी एक साथ ही होगी।
1: तो आप
2: डर के आगे जीत है।
1: आरजे आनंद जी, अब आप इस एंगल से देखिए कि जो भाभी प्रेम करती है भैया से
0: जी,
1: वो कितना खुश हो रही होंगी ना।
0: करेक्ट,
1: उनका प्रेम तो जीत गया ना।
0: चलिए भाभी जी, हमने आपकी भी तारीफ करी दी, और बाकी
1: कुछ लाइन सुनाने के लिए
0: मैं वही कह रहा था,
2: ये जो इनके पास जो घर में भाभी रहती है उन्हें मना
0: नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अभी ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, जो लोग अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, जो हस्बैंड अपनी बीबी के साथ जा रहे हैं, उनके लिए कुछ बढ़िया सो जाए।
1: बिल्कुल, मैं सारी सुंदर कन्याओं के लिए, और जो पति हैं अपनी पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ बैठे हुए, तो उनकी तरफ से
2: पति प्रेमिका के साथ बैठा दिए।
0: नहीं मतलब एक बार बताओ, शादी के बाद हमारी बीबी हमारी प्रेमिका नहीं हो सकती यार? आकर
2: गाड़ी
0: यार कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये तो गलत बात है यार।
2: ये गाड़ी जो है मतलब पहुंचाना चाहता हूं
0: मैं आपकी बात पे, यहीं पे मैं अखिल जी, अखिल भैया आपकी बात पे कहना चाहता हूँ। आपने बोला कि आपकी बीवी आपकी प्रेमिका नहीं है,
2: अब आप
1: बताइए।
0: चलो राघव जी शुरू करते हैं यार, प्लीज यार।
1: एक बहुत सुंदर मैंने लाइन लिखी थी, वो आपने याद दिलाया बस, कि हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे।
0: हाँ,
1: हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे।
0: वाह,
1: तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे, मेरे शौक वैसे इतने खास तो नहीं, मगर हाँ हम तुम्हें अपना जरूर बनाएंगे। और मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने वाले, तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे।
0: अरे बात,
1: तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे। और कोई तस्वीर जमाने में उदासीन दिख गई तो फिर, तेरी चमकती मुस्कुराहट का हिस्सा उसमें लगाएंगे। और फूल लगाकर घर की रौनक नहीं बढ़ाऊंगा, आनंद जी, फूल लगाकर घर की रौनक नहीं बढ़ाऊंगा, हम तेरे दुपट्टे से अपना कमरा सजाएंगे।
0: आनंद जी, मुझसे पहले ख्यालों में खोया हुआ था यार।
2: तुम शायरी सुन रहे सुनते खो जाते हो ना।
0: अरे यार
2: मैं बस इनसे यही कहूंगा कि जो अभी इन्होंने बात कही
1: मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने,
2: नहीं मिट्टी के बर्तनों से पहले वाली बात जो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बात बोली थी,
1: तेरे जन्मदिन की खुशी,
2: तो ये अपना जन्मदिन भले ही भूल जाना शादी के बाद, मगर बीवी का जन्मदिन मत भूलना कभी भी।
0: आपने कितनी बार याद रखा यार ये बता दो।
1: और सर इसके आगे बोल दीजिए,
2: लिखवा लिया टैटू बनवा लिया
1: इसके आगे बोल दीजिए जनहित में जारी।
0: मैं आज इनका टैटू इंस्टाग्राम पे रिवील करता हूँ, हैवी यानी
2: भाभी के लिए कुछ नहीं बोले, भाभी के लिए मैं बोल देता हूँ।
0: अच्छा आप ही बोल दो,
1: हमारी भाभी के लिए
0: राघव जी मैं, अच्छा हमारी भाभी के लिए या
2: नहीं, नहीं, जनरल भाभी
0: जितने भी लोग ऑल राइट। तो राघव जी काम करते हैं और आप बाहर निकलते हैं, जूते अगर पड़े तो हम दोनों बच जाएंगे, बेटर यही है। तो आप प्लीज
2: आनंद के ही बोल हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। भाभी का प्यार भी अजीब होता है,
0: अरे वाह,
2: डांट में भी मिठास करीब होता है, राखी सही पर खास होता है, घर में वो खुशियों का आकाश होता है।
1: अलग एंगल पे मोड़ दिया सर।
0: नहीं समझदार है, मुझे पता है। अच्छा राघव जी मैं बस जाते जाते आपसे एक चीज पे बात करना चाहूंगा, मतलब अगर आप इसमें कुछ कह सको कि आजकल ना लोग रिश्ते दिल से नहीं, उनका वो फायदा देखकर रिश्ते निभाते हैं। अब जो है रिश्तों में फायदे ज्यादा हो गए और प्यार थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब जो जेन्युइन चीज मुझे लगती है अब जैसे आजकल सुपर
1: बेनिफिशियरी रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं।
0: करेक्ट करेक्ट वही वाला, तो उसके ऊपर कुछ अगर आप कहना चाहें मैं चाहूंगा, क्योंकि आजकल ये हो रहा है नो डाउट।
1: बिल्कुल ऐसा है, एक हमने लिखा था, देखता हूँ कितनी आपकी बात से बात पे, एक मैंने लिखा था देखता हूँ कितने आपकी बात पर फिट बैठता है कि
0: जी
1: हमें छोड़कर तुझको जो मुनाफा हुआ, हमें छोड़कर तुझको जो मुनाफा हुआ
0: जी,
1: दुगना करो ये शख्स फिर तुम्हारा हुआ।
0: क्या बात है,
1: दुगना करो ये शख्स फिर तुम्हारा हुआ, कैद रखिए अपनी निगेबानी में हमें, वसूल लीजिए अगर तुमको कोई खसारा हुआ।
0: क्या बात है,
1: कैद रखिए अपनी निगेबानी में हमें, वसूल लीजिए अगर कोई खसारा हुआ, कर लेंगे खुद को हम खत्म तेरे लिए, हमारे लिए तू शख्स इतना प्यारा हुआ, और बता हमसे ज्यादा ख्याल रखता है क्या, वो रकीब जो तेरा नया सहारा हुआ, वो रकीब जो तेरा नया सहारा।
2: बहुत
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और ये जो शेरो शायरी का सहारा ही आप हमें देते रहिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसी अच्छी अच्छी पोएट्रीज और शायरियां अपने दिल के जज्बात हमारे रेडियो श्रोताओं तक जरूर शेयर करते रहेंगे। आपको कैसे लगा राघव जी आकर स्टूडियो?
1: मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो जुगलबंदी हम तीनों की बैठी है बहुत अच्छा लगा।
0: नहीं आपकी और राज की तो बैठती रहती थी, बट आज थोड़ा सा चेंज हो गया है।
1: जी मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आपने एकदम खट्टा मीठा एक,
0: वो तो हमारे अखिल भाई की क्रेडिट है इसमें। थैंक यू सो मच अखिल जी। आप सोच रहे
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
5: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
7: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: आह्वान किया है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
5: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना जिलों में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
6: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
7: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
8: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
7: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के दमन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज़ सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आस पास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा।

क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं, और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं, और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका दिल से दिल तक अखिल संघ में, एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपका अपना रेडियो स्टेशन जहां पे होती है खूब सारी बातें। और इस समय हो रहा है घर जाने का टाइम, तो इधर उधर ना देखें और गाड़ी बिल्कुल सीधी चलाएं, हॉर्न साफ कम बजाएं। और हम मिलेंगे एक और आज हमारे साथ इस शो में, हमारे दिल के बहुत ही करीब और आपके भी दिल के बहुत करीब आरजे आनंद भी साथ में। कैसे हैं आरजे आनंद जी?
1: बहुत बढ़िया भैया, वेरी नाइस, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आपका इसलिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आज आप हमारे साथ दिल से दिल तक में आए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो नाम ही इतना अच्छा है प्रोग्राम का, दिल से दिल तक। आपका तो वैसे अखिल नाम है लेकिन प्रोग्राम का नाम बहुत अच्छा है, तो इसमें क्या दिल की बातें करते हैं आप?
0: दिल की बातें तो हमारे सारे लिसनर्स करते हैं, मगर अभी बहुत सारे कहते हैं ना दिल की बातें कुछ हैं जो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे और आज आपकी भी दिल की बातें सुनेंगे इस गाने के बाद।

0: खत्म।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: वेलकम बैक है। देखो अखिल भैया ने हमें आमंत्रित किया है अपनी चेयर पे, तो मतलब उनकी चेयर उनके पास है, मेरी चेयर मेरे पास है और प्रोग्राम है दिल से दिल तक। तो अखिल भाई, दिल का जो एजेंडा है ना, बहुत कमाल का है। और यहाँ पर जो है ना, सिर्फ दिल से दिल बातें नहीं होती, दिल से दिल तक वाली बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर दरिया दिली भी दिखानी पड़ती है। लेकिन अखिल भाई जो है ना, हर दिन एक टॉपिक लाते हैं जिसमें आप अपनी दरिया दिली दिखाते हैं, लेकिन आज इन्होंने मेरे को बुला लिया। कह रहे भैया आज कॉल बोल तो हम लेंगे नहीं, अपन दोनों मिलके थोड़ी सी गपशप करेंगे, क्यों अखिल भाई ऐसे कुछ है?
1: बिल्कुल सही कहा।
0: आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं और अखिल भाई रेडियो पे ऑन एयर आ रहे हैं। वैसे तो हमने बहुत हवा हवाई किया है इनके साथ मिलके, नो डाउट, लेकिन अभी हमने इनका नाम चेंज कर दिया बिकॉज इन्होंने अपना एक खुद का शो बना लिया है दिल से दिल तक। और ऑफकोर्स यार, ये कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज में जब तक दिल से दिल तक वाली फीलिंग नहीं आती ना, मजा नहीं आता।
1: बिल्कुल सही
0: है ना, चाहे कोई शायरी हो या फिर कोई जोक हो या फिर कोई भी बात हो, मतलब मुझे लगता है व्हाटएवर, जब तक आप दिल से नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, राइट?
1: ये मैं तीसरी बार बोलने वाला हूँ, बिल्कुल सही करा।
0: बिल्कुल सही करा या बिल्कुल सही कहा, बात एक ही है। लेकिन अखिल भैया आप ये बताओ, दिल से दिल तक में तमाम सारे लिसनर्स आपको कॉल करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? थोड़ा पहले इस विषय पे बात कर लेते हैं। आपको इतने सारे कॉल्स आते हैं, कभी कभी मैं सुन लेता हूँ, टाइम थोड़ा सा हालांकि कम होता है और आजकल तो थोड़ा सा ज्यादा ही प्रेशर है, वो आप समझ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन एनीवेज बैक टू पॉइंट, तो कैसे कैसे आपको लिसनर्स हमारे कॉल करते हैं, मजा आता है?
1: लिसनर्स बहुत ही अच्छे हैं अपने,
0: आपकी तारीफ करा रहा हूँ आज। हाँ जी बोलिए।
1: और लिसनर्स जो है ना, बिल्कुल दिल खोल के बात करते हैं।
0: लिसनर का नाम जो लगता हो अखिल भाई, हाँ यार ये बंदा मुझे डेली फोन करता है यार, बड़ा कमाल का इंसान है।
1: मेरे पास ना मतलब है, मेरे पास ऐसी लिस्ट है, दो तीन लिसनर्स हैं।
0: नाम डेफिनेटली लेंगे हम, एक काम करेंगे थोड़ा से गाने वाने सुन लेते हैं, क्योंकि एकदम से नाम लेंगे तो वो फिर भाग जाएंगे। हो सकता है अगला नाम आपका हो या फिर जिसका नाम हम लेने वाले वो आप ही हो, तो आप ऐसे जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो आज रैंडम नाम हम अखिल भाई से सुनेंगे दिल से दिल तक में, इनके दिल की तरंगों से किसका नाम निकलता है। तो आप ट्यून इन रहिए ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, अखिल जी आपके साथ डेली आते हैं, आज मैं भी कंपनी देने आया हूं, तो कुछ गाने हो जाए भैया जी,
1: और आज आप लोग भी हमारे साथ हैं तो गाने तो जरूर होने चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, हाँ अरे लिसनर तो हमारे साथ डेफिनेटली होते हैं अखिल भाई, बिल्कुल सही बात।
1: कॉल आए नहीं आए, मगर आपकी जो अंदर वाली दिल वाली कॉल है ना, हम लोग सुनेंगे।
0: कॉल आ रही है लेकिन क्या करें, उठा नहीं सकते हैं, मजबूर हैं क्योंकि आज हम दोनों बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ गाने सुन के वापस आते हैं, क्यों अखिल भाई?
1: पक्का जी, पक्का, जल्दी से
0: जी। चलो फिलहाल ये गाना, फिर वापस आ रहे हैं हम दोनों।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इतना बढ़िया गाना और इतने बढ़िया बढ़िया एड ब्रेक आते हैं, मेरे को मजा आ जाता है। रात में भी दिन वाली फीलिंग आ रही है भाई अपने को। लेकिन फिलहाल रात का समय है, जैसे अखिल भाई ने कहा, आप घर लौटकर आ चुके होंगे, कुछ लोग डिनर कर रहे होंगे, कुछ लोग बना रहे होंगे, है ना। आज पहली तारीख है, आपको बताएं सितंबर जब आता है तो फेस्टिविटी की वाइब आने लगती है अखिल भाई, है ना। अभी गणेश चतुर्थी कमिंग सून, उससे पहले जन्माष्टमी आने वाला है, तो हम आपको फुल वाइब यहां पर देंगे।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: लेकिन पहली तारीख जब आती है तो लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सैलरी मिलने वाली होती है। आपकी सैलरी मिली या नहीं, आप मुझे बताएं क्या कह रहे हो। मैं खुद सैलरी देता हूं आनंद जी, आप ऐसा सवाल मत पूछिए मेरे से। अच्छा अखिल भैया, एक बात बताओ, बड़ी जेन्युइन सी बात मुझे रैंडम आ रही है। जब हमारे पास फर्स्ट सैलरी आती है तो हम उसे कहीं ना कहीं खर्चना चाहते हैं, एक्साइटेड होते हैं ना। तो जब फर्स्ट सैलरी आती है तो क्या लगता है, ज्यादातर लोगों के घर में कौन सी सब्जी पकती है?
2: देखो, सैलरी आपकी फर्स्ट आए या सेकेंड आए या थर्ड आए, मगर जो सब्जी आपको खाने को मिलेगी ना भाई साहब, वो लौकी की ही मिलेगी।
1: अच्छा, लौकी की मिलेगी, अरे वाह क्या बात है। मुझे लगता है अखिल भाई ने जिंदगी में लौकी ही खाई है, इतनी सैलरी के बाद भी भाभी पनीर बना दिया करो। लौकी और लौकी की भी आजकल बहुत सारी वैरायटी बन गई है। देखो अभी कोई परजाई जी कुछ तो बना रही है स्पेशल सा, हमें तो खुशबू आ रही है अभी रात में।
2: आज ना पनीर की सब्जी बन रही होगी, अगर
1: आई थिंक हो सकता है। इतने लोग सुन रहे हैं, क्या पता भाई किसके घर में पनीर पक रहा हो। अभी लोग सोच रहे होंगे इन दोनों को कैसे पता चल गया मैं पनीर बना रही हूँ।
2: मुझे इसी बात में बात याद आई, एक बार मैं और आनंद, हम दोनों जब बाहर थे थोड़ा सा आउटिंग पे अपना शूट के लिए थे, तो तभी एक ठेला वाला था जिसपे मैंने देखा राजमा चावल छोले चावल लिखे थे।
1: अच्छा जी।
2: तो जब मैंने आनंद से पूछा कि आनंद तुम क्या खाओगे, क्योंकि भूख लगी आई उसे देख के थोड़ा सा, जब लंच का टाइम चल रहा था, तो आनंद के भाई साहब पहले शब्द थे कि भैया मैं तो वेज बिरयानी खाऊंगा। अब उस ठेले पे आनंद, जब तुमने याद होगा, उस पे ना वेज बिरयानी लिखा, सिर्फ राजमा चावल और छोले चावल थे। तो उसके बाद तुमने सेकेंडरी बोला कि भैया चलो अगर नहीं है तो उस पे राजमा चावल खाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजमा जो चावल है ना, राजमा चावल, इसका कॉम्बिनेशन जो है यूनिक है तुम्हारे हिसाब से।
1: यूनिक भी है और हमें पसंद भी होता है। वैसे हम रात के समय में राजमा चावल की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स लोग हमें पाप भी चढ़ाएंगे भाई, कहेंगे रात को इतना भारी खाना कौन खिलाता है, और तुम यहाँ राजमा चावल की बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, मैं इनके साथ कब गया हूँ मुझे खुद को नहीं पता है। वैसे मैं जाता रहता हूँ, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है ना ही कोई गलत बात है। और हमने बिरयानी और छोले राजमा चावल खूब भर भर के खाए हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। लेकिन ये बात मैंने कब बोली, ये मैं थोड़ा सा सोच के विचार करके जरूर आपको बताऊंगा।
2: जरूर सोचना, उसके लिए तुम्हें कुछ खाना ही पड़ेगा।
1: लेकिन आपको एक बात है ना, हाँ खाना तो पड़ेगा। अभी आप लिसनर्स के नाम भी तो लेंगे, कौन कौन है जो आपके इसमें डेली कॉल
2: करेंगे, बताएंगे। कुछ एक लिसनर जो है वो मुस्कुरा रहे हैं,
1: हाँ वो सोच रहे हैं मेरा नाम कब आएगा। हाँ, राइट। तो कुछ गाने हो जाए अखिल भाई,
2: शायरी वाले लिसनर्स बहुत हैं हमारे पास।
1: अरे तो हम भी सुनाएंगे यार आज। चलो भाई, 3 मिनट हो गए, बहुत पका लिया, कुछ गाने सुन के वापस आते हैं। आप फिर मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद
2: 89.6 मेगाहर्ट्ज़।
1: क्या बात है, रेडियो
2: बजाते रहो,
1: गुनगुनाते रहो। कोई जब दो लोग होते हैं तो आगे पीछे चीजें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो वापस आते हैं कुछ गानों के।

0: तो देखो भाई, रात का समय है, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग घर आ चुके हैं। आज पहली तारीख है, लोग एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ कुछ लोग मीठा लेके जा रहे होंगे। अगर आप नहीं लेके जा रहे हैं, सैलरी आ गई है तो ले जाओ यार, क्योंकि फर्स्ट सैलरी से पहली बार जब घर में मिठाई जाती है तो मजा आ जाता है। क्यों अखिल भाई,
1: बिल्कुल सही कहा।
0: है ना?
1: और पता है ना, कभी कभी अगर पहले दिन सैलरी ना भी मिले ना, तो दिल हल्का करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए। एक शायरी आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा,
0: जी
1: आ
0: बिल्कुल
1: जाएगी सैलरी भी आ जाएगी, मगर उससे पहले हमारी शायरी आ जानी चाहिए।
0: बिल्कुल जी, जरूर आनी चाहिए, बताएं।
1: दिल की हर बात जुबां तक नहीं आती,
0: वाह,
1: हर खुशी आंखों में दिखाई नहीं जाती,
0: क्या बात है।
1: कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं दोस्तों
0: अजी वाह,
1: जिनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं जाती।
0: क्या बात है। और वो दर्द होता है सैलरी का, जब एक तारीख को ना आए तो वो किसी को बताया भी नहीं जाता।
1: हाँ, तो बिल्कुल भी उदास ना हो और स्माइल के साथ ना, फिर से कहते हैं ना, आगे बढ़ते रहें। तो
0: बिल्कुल
1: आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 15 तारीख तक तो आ ही जाएगी भाई
0: ये भाई,
1: साहब।
0: 1 तारीख से बंदा 15 तारीख पे ले गया है, ये तो बड़ी गलत बात है यार। लोगों को इंतजार होने लगता है। अब तो वैसे भी फेस्टिवल्स मंथ आ गए हैं, तो सैलरी तो ऑफकोर्स यार सब डिजर्व करते हैं, टाइम टू टाइम मिलनी ही चाहिए। और हर किसी की नीड भी होती है, बेसिक नीड है सैलरी, राइट?
1: अच्छा एक बात बताओ ना,
0: प्लीज।
1: अगर कोई एक दिन आपको दोबारा जीने का मिले, मतलब इस जिंदगी में जितने अपने आपने अब तक हमने और जी ली है,
0: आपने बहुत ज्यादा जी है, मेरी तो शुरुआत है। खैर ये बात
1: तो
0: मत बोलिए जी, जी प्लीज आप
1: तो वो
0: बोलिए।
1: कौन सा दिन होगा जो आप दोबारा जीना चाहेंगे, कोई ऐसा
0: यार
1: दिन?
0: ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, बट इसका आंसर हम जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो लिसनर्स के नाम मैं चाहूंगा आप इंक्लूड करें शो में, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, नहीं तो वो भर भर के टमाटर मारेंगे, आजकल महंगे हो रहे हैं।
1: एक
0: ऐसे
1: बहुत ही प्यारे से लिसनर है हमारे जो है ध्रुव,
0: ध्रुव
1: जो मतलब हमारे रेगुलर लिसनर में से हैं, और हमेशा फर्स्ट कॉल आती थी ध्रुव की। नरेंद्र जी हैं जो हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं। नरेंद्र जी के अंदर
0: एक तो
1: खास
0: मेरी
1: बात ये,
0: कॉलोनी में घर के पीछे रहते हैं वो वाले नरेंद्र जी तो नहीं है ये?
1: शायद वो ही हो सकते हैं नरेंद्र
0: मैं
1: जी,
0: पूछूंगा उनसे अभी जा
1: मगर
0: करके।
1: वो इतने हमारे इतने अच्छे और एक्टिव लिसनर हैं कि अगर उन्हें कोई बात लगती है तो वो स्टूडियो तक आके हमें बता देते हैं कि अखिल जी ये बात मेरे को जो है आज
0: स्टूडियो आ
1: ऐसे।
0: जाते हैं वो?
1: हाँ, स्टूडियो भी विजिट करके गए।
0: कब आए थे?
1: आए थे अभी थोड़े दिन पहले आए थे।
0: गोरे गोरे से हैं?
1: गोरे गोरे
0: बाल
1: से?
0: थोड़े व्हाइट व्हाइट हैं?
1: अब इतना डिस्क्रिप्शन तो मेरे को ध्यान नहीं
0: नहीं तो
1: होगा।
0: अगर वो हैं तो मेरे पड़ोसी, मैं उनसे जाके आज मिलता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल
1: क्या बताओ, आपको ढूंढते ढूंढते आ गया हूँ।
0: नहीं, मैं उनको ढूंढने जाऊंगा, आप चिंता मत करो। बिल अच्छी बात है, ये कनेक्शन दिल से दिल तक वाला है ना आपका। चलो गाइज, ऐसे ही आपके नाम भी हम जरूर शामिल कराएंगे आज, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद। ये प्रोग्राम है दिल से दिल तक, यहाँ अखिल भाई आपसे डेली कॉल के माध्यम से कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन इन्होंने आज मुझे बुला के ये मेरे को ले आए हैं कि भैया चलो थोड़ा मिलके पकाते हैं, खाने पीने की चीजें नहीं, नहीं आपको बस बातूनी वाली चीज है, मतलब आई मीन टू से। चलो कुछ गाने, उसके बाद फिर आते हैं। और अगर आप अपना नाम चाहते हैं सुनना तो भैया देखो ऐसा है, हम कभी भी आपका नाम ले लेंगे, बस आप हमें जो है कॉल वॉल कर लिया करो। रात को 9 से 10 अखिल भाई आते हैं आपका एंटरटेनमेंट का डोज लेके, आप उनको कॉल करोगे तो एक ना एक दिन जब हम ऐसा दोबारा शो करेंगे तो आपका नाम भी लेंगे, राइट भाई?
1: पक्का पक्का।
0: चलो
1: और अभी तो पता है ना कि एक्चुअली क्या है, लिसनर्स सभी हैं, मतलब होता क्या है कुछ वो जिनके सच में ऐसा कॉल्स आ जाती हैं,
0: exactly.
1: मगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई कॉल कर रहा है और एक दो बार ही उसकी कोई कॉल आ रही तो वो हमारे अच्छे वो
0: लिसनर्स नहीं है,
1: वो भी हमारे अच्छे लिसनर्स हैं।
0: एग्जैक्टली, बट वही होता है ना कि जैसे हम डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उनका नाम जुबान पे आ ही जाता है, यू नो, है ना।
1: एक हमारे जेठालाल जी हैं जो बहुत देर से भी कान लगाए सुन रहे होंगे।
0: जेठालाल वो
1: तो,
0: जो सीरियल में आते हैं वाले क्या? अच्छा तो फिर तो दया वेन
1: से कम नहीं है वो।
0: अच्छा दया बेन को मैं ढूंढ के लाता हूँ,
1: दया भी मिलेंगे भी।
0: चलिए फिलहाल अभी हम दया करते हैं लोगों के ऊपर, कुछ गाने सुनवाते हैं नहीं तो वो भाग जाएंगे। सो गाइज आप ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद अखिल और आनंद के साथ, जल्दी हम लोग वापस आते हैं, फिर और लिसनर्स के नाम भी लेंगे, और थोड़ा सा खिसकने का भी टाइम हो रहा है तो वो भी हम यहाँ से खिसकेंगे, ज्यादा देर आपको पकाएंगे नहीं। फिलहाल कुछ गाने सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप ऐसे ही मौज मस्ती के लिए ट्यून इन रहिए आपके शहर के अपने रेडियो पर, और गाड़ी चला रहे हैं तो जरा आराम से चलाइए, केयरफुली चलाइए। चलिए कुछ गाने आप एंजॉय करते रहिए।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का,
1: अरे
0: दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का।
1: क्या बात है,
0: ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का।
1: अरे वाह, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। मेरे पास है नहीं, अभी लेकर आऊंगा तो जरूर आपको फोटो शेयर करूंगा। एनीवेज, बहुत अच्छा आपने सुनाया। रात के समय में लोग हंस रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खाते पीते हंसते रहना चाहिए, मजा आ जाता है। एग्जैक्टली भैया,
0: बिल्कुल सही। और खाते पीते और शो सुनते हुए ना, हमारा तो आपको पता ही नहीं चलेगा समय कहाँ से कहाँ निकल गया।
1: 100%
0: देखो, हमें नहीं पता चला एक घंटा हो गया और हमें ही नहीं पता चल रहा कि क्या शो।
1: एग्जैक्टली, देखो जहाँ आनंद होता है वहाँ आनंदित हो जाता है माहौल, राइट? ऐसा नहीं है कि अखिल भाई आपसे आनंदित वाली बात नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। जब आप कॉल करते हो तो तब तो और भी ज्यादा पता नहीं चलता हमें समय का, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। एक शायरी जो बगल में बैठे है ना आपके, जो कह रहे हैं कि नहीं यार थोड़ी देर और, थोड़ी देर गाड़ी में बैठ जा फिर चलेंगे घर पे, तो उनके लिए भी है
1: जी।
0: वक्त बदलता जरूर है दोस्तों, बस थोड़ा सब्र रखना पड़ता है।
1: क्या बात है,
0: आज जो अपना नहीं लगता
1: जी,
0: कल वही सबसे खास हो सकता है।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत और शानदार जानदार बात आपने बोली। इस बात पे तो मेरे पास बात ही नहीं है। और एक दो लिसनर्स और जो आपको डेली लगता है कि आपके शो में जुड़ते हैं और उनको जुड़ के बड़ा मजा आता है
0: हमारे साथ। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जैसे ध्रुव हो गए और हमारे एक लिसनर हैं उस्मान जी, वो भी बहुत ही
1: छोटी सी बच्ची को भी मैंने बहुत सुना है, वो एवरीडे कॉल करती है।
0: वो हमारी गुंजन जी हैं।
1: गुंजन, हाँ, उसको कोई गाना सुनना होता है
0: उसको, और उसको ना स्पेशलिटी उसकी है कि उसे पूरा ही गाना सुनना होता है।
1: ओ माय गॉड,
0: भैया मेरा तो गाना आप पूरा ही चला था।
1: देखो गुंजन मुस्कुरा रही है कि देखो भैया मेरा जिक्र आनंद जी ने करा ही दिया है।
0: पीछे से मम्मी की डिमांड चलती है उनकी, और जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं, तो हमारे पास एक यादव फैमिली है, तो उनके तो मैसेज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज मेरा ये गाना प्ले होना चाहिए।
1: अरे वाह,
0: अच्छा और मजे की बात और है आनंद, हमारे पास एक कोहली फैमिली भी है।
1: अरे वाह, क्या बात है, विराट कोहली के यहाँ से तो
0: बस समझ ली, विराट कोहली भी एक कहीं ना कहीं से होगा उनका जुड़ाव 100%,
1: क्योंकि फैमिली विराट फैमिली में पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो हमारे मैसेज पहुंचाइएगा विराट।
0: हमारे पास इतने, हमारे इतने प्यारे लिसनर्स हैं, लीबिया जी हैं, लाइबा जी हैं, अफरोज फातिमा हैं, तो पूरा परिवार एक तरीके से ऐसा है कि कहीं ना कहीं से हमसे जुड़ा रहता है।
1: एग्जैक्टली, और ये बहुत अच्छी बात है और जुड़ना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आसपास में अच्छी चीजें चल रही तो उसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, राइट? अखिल भाई, अब जो है चलने का समय हो गया है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, मुझे सुबह भी ऑफिस आना है, तो आप कृपया करके मेरे ऊपर थोड़ी सी दया कीजिए और दया बहन को लेकर आऊंगा। आपकी जेठालाल का तो आपने जिक्र कर ही दिया है।
0: चलते तो चलते एक शायरी अपने दर्शकों के लिए
1: जरूर इरशाद,
0: और
1: प्लीज।
0: कल फिर मुलाकात होगी आपसे ठीक 9 बजे दिल से दिल तक अखिल संग में, क्योंकि आज जरा हमने सोचा थोड़ा टाइम तो आनंद और हम एक साथ स्पेंड करें, आप लोगों के साथ थोड़ी मस्ती करें।
1: ये भी सोचा कि आप जो कॉल करते हो उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों के नाम देखते हैं अखिल भाई को कितने याद हुए, तो देखो आप समझ जाओ भी ये आपको बहुत प्यारे हैं और आप इनको कितने प्यारे हो। बाकी जिनका नहीं लिया वो कल इनसे क्लास ले लेना आप कॉल करके।
0: नहीं नहीं, क्लास तो आज ही ले लेंगे, देखो अभी आ जाएगा मैसेज।
1: हाँ,
0: कश्यप जी का मैसेज आ गया,
1: मैं सुबह ही पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा शायरी सुना दो यार फटाफट।
0: कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल गए,
1: अरे वाह,
0: कुछ लोग रास्तों में बिछड़ गए,
1: गजब,
0: लेकिन दिल में आज भी वही जगह है उनकी जो कभी हमारी जिंदगी हुआ करते थे।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल करते हो पाजी। इसी बात के साथ अब मैं आपसे जो है चाहूंगा जाने की इजाजत, तो जल्दी आपसे मिलेंगे दोस्तों इसी स्टेशन पर। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए जी अखिल जी,
0: और आप सुन रहे आरजे अखिल और आनंद के साथ दिल से दिल तक, जहां होती है दिल से दिल की बातें, खूब मस्ती भरी किस्से और ढेर सारी प्यारी प्यारी यादें। तो अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा याद रखिए जिंदगी खूबसूरत है, बस इसे दिल से जीना सीखिए।
1: क्या बात है, एक मैं भी बात कहना चाहता हूँ। देखिए आज जो है पहली तारीख कंप्लीट हो गई, कल 2 तारीख है, कल सुबह 2 तारीख होगी, तो ये जो महीना है ये आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आए, प्रोस्पेरिटी लेकर आए, फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, तो ऐसे में आप जो है बस मोटिवेट रहिए, जो भी चीज आप चाहते हैं वो जरूर आपको मिले, और हमेशा जो है कोशिश करिए कि अच्छा सोचिए, जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छी चीजें भी मिलेंगी, और शुक्राना करते रहिए उनका जो आपके आसपास हैं, जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। डाउन्स जो है ना लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इनसे डगमगाना नहीं है, लाइफ में स्ट्रांग बन के आगे बढ़ना है, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो अखिल भाई
0: किसने जाना,
1: है ना, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लाइफ बहुत अच्छी है। आज की रात आराम से सोइए, कल फिर से आएंगे अखिल जी आपको परेशान करने, फिलहाल मैं सुबह आ जाऊंगा 7 से 10, अभी के लिए मैं कहता हूँ बाय बाय, टेक केयर, गुड वाला गुड नाइट। आप कुछ बोलेंगे सर?
0: मैं भी ये कहूंगा बहुत ही प्यारी सी नींद लीजिएगा, कल फिर मुलाकात होगी,
1: बाय बाय,
0: बाय बाय।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
1: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
0: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
1: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।